107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 10 जून 2026 सुबह के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

कण में राम, क्षण क्षण में श्याम, हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

100.7 FM पर मैं शिवम सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रातः के 6:02 हो रहे और प्रतिदिन की तरह भगवान

विघ्न विनाशक श्री गणेश के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज की भक्तिभाव का कार्यक्रम पुष्पांजलि के साथ दिन का शुभारंभ करते हैं।

एक बार नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए बोला कि मेरा प्रिय भक्त एक किसान है। इस बात पर नारद जी ने निराश मन से पूछा कि मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूं, फिर प्रिय क्यों नहीं?

नारद जी के ये कहने कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं आपका, फिर प्रिय क्यों नहीं? इस पर भगवान विष्णु जी ने नारद जी को एक अमृत कलश थमाया और बोले कि इस कलश को लेकर तीनों लोकों की परिक्रमा करो, पर ध्यान रहे, एक बूंद भी गिरी तो तुम्हारा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। और नारद जी यात्रा पर निकल पड़े।

आप सुन रहे हैं भक्तिभाव का कार्यक्रम पुष्पांजलि। तीनों लोकों की परिक्रमा के दौरान नारद जी का पूरा ध्यान केवल कलश पर था। नारद जी अमृत की एक भी बूंद गिरने नहीं दी। अंततः भगवान के पास सुरक्षित लौट आए और विष्णु जी ने पूछा कि इस दौरान मेरा स्मरण कितनी बार किया। नारद जी बोले, हे प्रभु, मेरा तो सारा ध्यान अमृत कलश पर था। तब जाके भगवान ने नारद को समझाया कि वही मेरा सच्चा प्रिय भक्त है जो कर्म करते हुए भी मेरा स्मरण करता रहे।

विष्णु जी की बात नारद जी से जब हुई तो विष्णु जी ने कहा कि तुम तो मेरा नाम लगातार जप करते हो, पर जब तुम्हें कर्म दिया गया तब तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं था, और किसान हर दिन काम करते हुए भी थोड़ा समय जरूर निकालता है, इसीलिए वह मेरा प्रिय भक्त है। नारद मुनि विष्णु जी के चरणों में नतमस्तक हुए और कहा, आपने मेरा दृष्टिकोण बदल दिया।

कई बार ऐसा लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। कभी अधीरता हमें विचलित कर देती है तो कभी सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है। पर सच्चा साधक जानता है कि हर विफलता प्रगति की एक मजबूत सीढ़ी होती है।

सुधार की प्रथम सीढ़ी है। स्वयं का मूल्यांकन के माध्यम से हम पहचान पाते हैं कि किन दोषों को त्याग कर हमें अपने भीतर की दिव्यता के और निकट पहुंचना है।

निस्वार्थ प्रेम करें, धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास सफलता की आधारशिला है। निस्वार्थ प्रेम से व्यक्तित्व में निखार आता है। उच्च मूल्य को अपनाते हैं तब हमारे भीतर शांति व संतुलन स्थापित होता है। और आज की पुष्पांजलि से मुझे यानी शिवम को आज्ञा दीजिए, पर हमेशा की तरह पुष्पांजलि से विदा लेने से पहले आप सभी को एक बार मेरे साथ जुड़कर अवघड़दानी भोले बाबा, जिसे कहते हैं काशी का नरेश, उसका नाम मेरे साथ जुड़िए और जय घोष करिए। दोनों हाथ हवा में ऊपर और आंखें बंद करके दिल से पुकारिए, बोलिए मेरे साथ एक बार, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महा

नमस्कार, सुबह के 7 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और एकरूप बनाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की भूमिका को और प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल यूपी कॉस की कार्यप्रणाली की प्रगति की समीक्षा करते हुए आउटसोर्स व्यवस्था को तकनीक आधारित, जवाबदेह और कर्मचारी हितैषी बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने कहा कि आउटसोर्स एजेंसियों के चयन और संचालन से संबंधित सभी मानकों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले इमिग्रेशन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने

कहा कि वाराणसी हब एंड स्पोक विमानन योजना के तहत काम करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। उन्होंने इसे भारत को वैश्विक विमानन केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व स्तरीय हवाई संपर्क को महानगरों से आगे ले जाने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ विकसित भारत जी राम जी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने पहले ही मनरेगा के तहत 30,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,652 करोड़ रुपए की इंटरिम अवलोकेशन जारी किया गया है। केंद्र से जारी धनराशि में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 9,721.48 करोड़ रुपए की व्यवस्था किए जाने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक आचार्य पदों पर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि लिखित परीक्षा के आधार पर इंटरव्यू के लिए कुल 3,155 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि सहायक आचार्य भर्ती के साक्षात्कार कार्यक्रम विषयवार और श्रेणीवार तिथियों व आवश्यक दिशा निर्देश जुलाई के मध्य तक आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: कहिए
1: सुनिए
2: सुनिए
0: कहिए कहिए ना
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
3: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

लाइफ में कई बार विफलता, कठिनाई और ऐसे वक्त में फंस के रह जाते हैं जब लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं है। उस टाइम मन में एक सवाल तो जरूर उठता है कि क्या असफलताओं के बाद जीवन फिर से शुरू हो सकता है। तो एक बात याद रखिएगा, अंत ही एक नई शुरुआत की पहली सीढ़ी है, मतलब कि शुरू से शुरू करने का वक्त बिल्कुल यही है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त और होस्ट शिवम। कार्यक्रम का नाम है सदाबहार गीत और आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो।

वहमो गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

वैसे जिसके हाँ अगर फूल बगीचा या उन्होंने गार्डनिंग की रखी है तो भाई उनके लिए तो गुल दूर तक आपको दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो सुबह का हाल है, जो आलम है, वो चमकती हुई धूप का है। फिलहाल कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो है धूप जो है और सुबह मॉर्निंग वाली जो वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी हल्की ठंडी जो होती है वो मॉर्निंग जो है थोड़ी सी स्किप हो गई है, वो थोड़ा और पहले हो गई है। तो मतलब अगर आपको लगता है कि 7 बजे के बाद तलाश है उस थोड़ी सी ठंडी का, तो मुझे लगता है कि यहाँ आप ज़रूर निराश होंगे। लेकिन हम बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास गानों की वो लड़ी है जो बिल्कुल आपको ताज़ा कर देगी हर सुबह। तो गुड मॉर्निंग, उठ जाइए, सुबह की चाय आपके लिए इंतजार कर रही है, न्यूज़पेपर आपका इंतजार कर रहा है, और हम तो यहाँ कब से आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई आप आएंगे, ट्यून इन करेंगे, सुनेंगे और एक से बढ़कर एक गाने आपको हम यहाँ से पहुंचाएंगे। तो ये लीजिए एक और बेहतरीन सा नगमा आपके रेडियो सेट पर।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

वैसे जो मैंने शुरू में बातें की थी कि शुरू से शुरू करने का अर्थ कोई भी अनुभव हो, चाहे वह कठिन और कठोर फैसले लेना हो, विफलता हो या दिल टूटना हो, आखिरकार एक अंतिम छोर की तरह दिखता है, पर असल में नई सीख और हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ने का अवसर भी बिल्कुल यही है। जैसे हर सुबह सूरज अपनी नई रोशनी के साथ, नई चमक के साथ आपको जगाने के लिए तैयार रहता है, तो आप भी हर सुबह एक नई एनर्जी के साथ खुद को जगाइए और दिन की शुरुआत करिए नए तरीके से, क्योंकि हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होता है। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर ये बेहतरीन सा गाना।

अच्छा आपसे एक ये सवाल जरूर मैं पूछूंगा कि क्या ये सच में ऐसा होता है कि लोगों ने अपने अपने तरीके से कहानियां बना रखी हैं, और क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर आपको हिचकी आ रही है तो शायद कोई आपको याद कर रहा है, या ऐसा भी होता है क्या कि आप किसी को याद करते हैं तो तब भी आपको हिचकी आती है? तो इस पर क्या मतलब कुछ है? बहुत सारे लोगों ने बोला है भाई, मुझे तो नहीं समझ में आता कि मतलब किसी को याद आ रही है तब हिचकी याद आती है, लेकिन बहुत से लोग ना इस बात को कहते हैं कि कोई याद कर रहा है आपको तो इसलिए हिचकी आ रही है। हिचकी तमाम तरीके से आती है, अपने अपने थॉट्स हैं, अपनी अपनी समझ है। वैसे ब्रजेश सिंह जी इटहुआ कैसरगंज बहराइच से इन्होंने हमें ईमेल किया है, और ये किसान है ये, और किसानों का काम क्या होता है, वो सबसे पहले जगते हैं, खेतों की तरफ जाते हैं, खेतों का सारा काम समय पर करके वापस अपने घर की तरफ आते हैं, और उनका साथ कौन देता है? उनके जो पेट्स होते हैं वो, या फिर हमारे जैसे लोग जो रेडियो पे आते हैं उनके लिए ढेर सारे गाने और बातें लेके आते हैं। लिखते हैं प्यार भरा गुड मॉर्निंग शिवम भैया जी, और इस समय ये दवा के खेत मतलब खेत में दवा का छिड़काव कर रहे हैं और ये लगातार अपने खेतों में ये रेडियो सुन रहे हैं। निधि चौरसिया जी ने हमें ईमेल किया है, हालांकि इन्होंने एड्रेस नहीं लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है और वंडरफुल डे, और इन्होंने प्रोग्राम की बड़ी ही तारीफ की है। थैंक यू निधि जी, आपका बहुत शुक्रिया। और तेज बहादुर यादव जी 5:50 पे इन्होंने ऑन किया है, और रेडियो पे जितने भी गाने भी अभी तक बजे वो सारे गानों की लिस्ट इन्होंने भेजी है और बड़ी ही तारीफ की है। फिलहाल ये गुरुग्राम हरियाणा से सुन रहे हैं और रहने वाले मऊ शरकी जिला रायबरेली।

उत्तर प्रदेश से हैं। वैसे ये बात जरूर याद रखिएगा कि हिचकी याद करने से पता नहीं आए चाहे ना आए, लेकिन अगर हिचकी आए तो पानी पीना जरूरी हो जाता है। पानी पीते रहिए और बढ़िया एकदम गाना सुनिए वाला।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ, 7:40 होने को ही है। ये देखिए 40 मिनट हो गए, वही है वक्त है। ये मुट्ठी में बंद रेत की तरह है, फिसलता जाता है जितना भी पकड़िए। वैसे मनोज बंसल जी ने हांसी हरियाणा से हमें नमस्कार बोला है और लिखते हैं कि इतने सुरीले गाने कैसे चुनते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, है ना। कई दफ़ा तो आपने ऐसा गाना सुना दिया है कि जो हम शायद गाने को भूल चुके हैं। तो इसमें सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने, हमने, सबने वो फर्स्ट लव वाला किस्सा तो ज़रूर सुना होगा। तो शायद मेरे लिए वो किस्सा यही है कि ये काला माइक, ये सिस्टम, ये गाने और आप, हम और ये लम्हे। तो मेहनत क्या, ये समझिए कि मोहब्बत है कि जब ढेर सारा भर के लेके आते हैं न्यौछावर करने के लिए। तो ये गाने ही हैं, ये शब्द ही हैं, ये अल्फाज ही हैं। तो मेरे लिए तो फर्स्ट लव यही है जो हम और आप बातें कर रहे हैं ढेर सारी। फिलहाल मोहम्मद शादाब खान साहब ने हमें ईमेल किया है संडीला हरदोई से। गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं और बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ये भी अच्छा लगा। गुलफ्सा सिद्दीकी जी हैं, ये लिखती हैं गुड मॉर्निंग शिवम भाई, कैसे हैं, और पूरा पेटी भर के आम का एक इन्होंने फोटो भेजी है। रामराज ने हमें जिला रायबरेली पहाड़ीपुर से इन्होंने ईमेल किया है सदाबहार गीत के लिए। आगे इन्होंने बड़ा ढेर सारे नाम लिखे हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। तो ऐसा लगता है ना कि जब आप अपने गीतों का गुलदस्ता बनाकर किसी को देते हैं या किसी को प्रेजेंट करते हैं, तो जब उधर से हामी हो जाती है, जब लगता है कि हाँ ठीक है उन्हें पसंद आ गया है, तो जब ये ईमेल आते हैं तो लगता है कि हाँ ठीक है मेरा प्रोग्राम बढ़िया जा रहा है, अच्छा लग रहा है। तो जब अगली बार जब आने का होता है तो वो सारी चीज़ें याद रहती हैं, तो और मेहनत करते हैं और बेहतरीन से गाने ले आते हैं। फिलहाल हम ये बातें कर रहे थे कि शुरू से शुरू कैसे करते हैं, कब करते हैं। कुछ जीवन में ऐसे पॉइंट आते हैं जब लगता है कि यही वक्त है।

शुरू से शुरू करने का। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने आप की, दिल की सुने तो बेहतर होगा, क्योंकि दिमाग हमें अक्सर उलझाने का भी काम करता है।

अच्छा, जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, वाकई में नहीं लगता कि मतलब सूर्य भगवान को भी थोड़ी सी छुट्टी ले लेनी चाहिए, या समर वेकेशन के लिए कहीं पहाड़ों पे घूमने निकल जाना चाहिए, या कहीं और थोड़ा सा टहल घुमाना चाहिए? ऐसा नहीं लगता? मतलब अगर ऐसा होता, सोचिए कि मतलब गर्मी पड़ रही है, लोग आमतौर पे जो इंसान होते हैं वो टहलने घूमने जाया करते हैं,

पहाड़ों पे जाते हैं, ठंडी जगहों पे जाते हैं। अगर ऐसे हमारे सूर्य भगवान ऐसा करते तो मतलब ऐसी गर्मी को देख के तो नहीं लगता कि मतलब उन्हें भी छुट्टी ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो 44 डिग्री वाली झुलसती हुई बिल्कुल जला देने वाली धूप है, तो मुझे लगता है सबको आराम की जरूरत है, है ना। और रात तक तो ऐसा लगता है बिल्कुल, अगर आपका ऊपर का कमरा है, छत है और एयर कंडीशन नहीं है कमरे में और सिर्फ फैन है, तो बिल्कुल वो अवन की तरह हो जाता है। और एक खास बात ये भी है कि अगर आप सुबह सुबह उठ के टंकी के पानी से ब्रश कर रहे हैं या मुंह धुल रहे हैं, तो भाई साहब उबला हुआ पानी आता है, तो मतलब अगर आपको चाय बनानी है तो एक तरफ मुंह धुल लीजिए, उसी पानी में हल्की सी चाय डाल दीजिए, तो लाल वाली चाय तो रेडी ही हो जाती है। मतलब ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, इस वजह से आप सबको बता रहे हैं। फिलहाल खट्टी मीठी बातें और हंसी मजाक चलती रहती है। गुड मॉर्निंग, उठ जाइए, 7:47 हो गया। प्रोग्राम सदाबहार गीत में ढेर सारे गाने बजा दिए हमने, बहुत सारी बातें और भी बाकी, एक और गाना सुनिए।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

जी हाँ, 7:54 हो गए और गाना सुन के आप जान ही गए होंगे कि भाई कौन सा गाना हमने प्ले कर दिया है। फिलहाल हम आपको बताते चले कि अब इस प्रोग्राम यानी सदाबहार गीत से शिवम को दीजिए अनुमति। मिलते हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ में एक और बेहतरीन आवाज के साथ, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि संजय वर्मा लखनऊ से हमें ईमेल कर रहे हैं, कुलदीप मौर्या जी ने भी हमें ईमेल किया है और योगेंद्र वर्मा जो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं वो भी एप्लीकेशन के माध्यम से सुन रहे हैं, और सोनू भैया ने हमें जय महाकाल भेजा है और संस्कृत में भी बोला है कि भाई पिछले प्रोग्राम की तारीफ की और बड़ा ही अच्छा इन्हें प्रोग्राम लग रहा है, लेकिन अब चलने के समय हो गया है तो अब बढ़िया वाला गाना सुनिए और अपनी कॉफ़ी या चाय इंजॉय करिए और उठ जाइए। बिल्कुल अब टाइम हो गया ऑफिस जाने का।

0: लगाने, बिजली बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए और क्रिकेट

0: में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेत्रित्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे

0: ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन

0: एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। उमान

0: अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
1: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
0: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 225,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डैडी।
1: वेरी गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग टीचर।
2: गुड मॉर्निंग बेटा।
3: गुड मॉर्निंग बॉस।
4: गुड मॉर्निंग मम्मा।
5: गुड मॉर्निंग।
6: गुड मॉर्निंग।
7: गुड मॉर्निंग।
8: गुड मॉर्निंग।
9: गुड मॉर्निंग।
10: Current affairs, history, birthdays, traffic, weather, music or entertainment. Sab kuch milega Morning Breakfast Show, Good Morning Lucknow mein. Har subah 8:15 se, only on Rainbow, Dhadkan Lucknow ki.
11: Yeh hai 100.7 FM Rainbow, Dhadkan Lucknow ki.

0: मुझे लग रहा है कि ये जो लोग आलस में बिस्तर में पड़े हुए हैं अभी भी, वो लोग होते हैं ना जो लास्ट में बिल्कुल एकदम लास्ट मोमेंट में जगते हैं, वो लोग भी बिल्कुल बिस्तर से यूं खड़े हो गए होंगे बिल्कुल।
1: अब ये है कि अब आप लोग आए हैं हमारी महफिल में, मतलब हम भी तो शामिल हैं, आप तो सुबह से शामिल हैं इस महफिल में, हम भी आ गए हैं, तो हम अब जो हमारा जमावड़ा होगा है ना वो होगा शानदार, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है गुड मॉर्निंग लखनऊ, और दो दोस्त आपसे जुड़ चुके हैं।
0: जी हाँ, मेरा नाम शिवम है और इनका नाम तरुश्री है।
1: हाँ जी, और मेरे ख्याल से जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे कि अब जो है ना वो मौका है, दस्तूर है, अब प्रोग्राम शुरू करते हैं। अच्छे अच्छे गानों का सिलसिला अभी होगा और बहुत ढेर सारी बातें भी होंगी, जानकारी भी होगी, अपडेट्स होंगे और
0: मिर्च मसाला लपेट के
1: तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जुड़ते हैं इस खूबसूरत गानों को इंजॉय करते हैं।

0: दिन की सकारात्मक शुरुआत विद आज का मॉर्निंग मंत्रा।
1: आठ बजकर 25 मिनट हो गए और अब वक्त है एक बेहतरीन सी बातें आप तक पहुंचाने के, जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग मंत्रा। तो आज का मॉर्निंग मंत्रा क्या कहता है तरु?
2: तो शिवम, आज का मॉर्निंग मंत्रा बोलता है कि कल की गलतियों को भूल जाओ, आज की कोशिशों को गले लगाओ, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है वो रीटेक नहीं सिर्फ नए टेक्स देती है।
1: बिल्कुल सही कहा। ये होता है ना कहीं कि आप पुरानी चीजों को भूल के नए तरीके से नए रिश्तों को नई शुरुआत करिए, है ना?
2: बिल्कुल। और ये जो रीटेक का टाइम है ना, वो नहीं, नया टेक लीजिए। क्यों पुरानी गलतियों को दोहराना, नई चीजें सीखिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, है ना? आज की कोशिशों को जारी रखिए।
1: बिल्कुल सही कहा। वैसे जो अगला हम लोग जो अभी पिछला गाना सुन रहे थे, छैया छैया वाला, इसमें आपको नहीं लगता कि जो गाना का वीडियो सॉन्ग है, इस गाने में ट्रेन चलती रहती है, कोई ना स्टेशन आता है,
2: कोई स्टेशन नहीं आता है, और पूरे गाने में आप और हम भी ऐसे ऐसे झूम रहे थे जैसे लग रहा था ट्रेन में
1: बैठे हुए। तो मुझे लगता है सभी लोग इस गाने को वो जब सुनते हैं तो वो उसी माहौल में उसी फील में चले भी जाते हैं, चल छैया छैया, तो मतलब वो गाना जस्ट चलती ही जाती है भाई साहब, छैया छैया।
2: बिल्कुल। और हमारे जो गाने होते हैं ना हमारे प्रोग्राम में, वो इसी तरह से ही आते रहेंगे। तो चलिए एक और बार झूमने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो मॉर्निंग है ना, ये ऐसी इंटरेस्टिंग बनी रहे और ऐसी ही खुशगवार बनी रहे, आपकी भी और हमारी भी।

0: आई गेस सब झूम गए होंगे.
1: बिल्कुल
0: हम
1: भाई,
0: लोग ने तो बहुत एंजॉय किया स्टूडियो में.
1: बहुत बहुत बहुत. और सबसे बड़ी बात वही वाली बात जो हमने आपसे बताई कि भाई जितने भी 90 के दशक के बच्चे हैं तो इसमें जो डांस है ना वो वाला डांस, हाँ स्टेप, वो सबको आता होगा. और चाहे कोई डांस आए चाहे ना आए, लेकिन वो वाला डांस सबको सबको सबको आता है.
0: जी बिल्कुल सही कहा. और इसी प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम का रंग ही यही है कि आपकी जो सुबह है ना वो इसी तरह से खुशगवार बनाते हैं. और जिस तरह की म्यूजिक होती है ना उस तरह का आपका दिन होता है. तो म्यूजिक अगर आप एंजॉय करते हैं तो पूरा दिन आप एंजॉय करने वाले हैं.
1: बिल्कुल है, क्यों भारी भरकम मूड में सुबह उठना, हल्के फुल्के हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते एकदम उठिए. हाँ ऑफिस जाइए तो मतलब लोग आपको देख के मतलब सोचे भाई साहब ये आज क्यों खुश है.
0: हाँ और कहते हैं ना आप खुश हैं तो आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे.
1: बिल्कुल
0: माहौल, आप वो खुशी का जो होता है ना ऑरा वो आप बढ़ाते रहेंगे.
1: बिल्कुल माहौल बनाए रहिए एकदम. मुद्दा आज का.
0: हाँ जी दोस्तों, तो आज अब बात कर लेते हैं आज के मुद्दे की. लेकिन मुद्दे पर आने से पहले हम आपको कुछ चीज़ों से अवगत कराएं कि आज है 10 जून और 10 जून कई मायनों में बड़ा खास दिन है. क्योंकि आज ना हम कई सारे विषयों पे, ऐसे विषयों पे चर्चा करते हैं क्योंकि आज को दिन इस तरह से निर्धारित किया गया है ऐसे विषयों पर बात करने के लिए जो हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर हिचकते हैं कहीं ना कहीं. तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ आती है.

0: नेत्रदान।
1: बिल्कुल,
0: आपको पता है ना शिवम?
1: जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं यही पूछने वाला था कि वो जो नजर की वाली बात की, तो नजर की ही बात कर रहे थे कि अक्सर, ये बताइए आप भी हम भी, अक्सर जो मतलब रेगुलर चश्मा नहीं लगाते हैं,
0: हाँ,
1: वो अपने आंखों का ख्याल कैसे रखते होंगे? और जो लोग धूप में सिर्फ चश्मा लगाते हैं, बहुत से लोग धूप में बचने के लिए भी चश्मा लगाते हैं कि भाई धूप है तो हम चश्मा लगा ले, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अपने आंखों को बचाने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए लोग जो हर रोज करते हैं। इसमें वो लोग होते हैं जिनकी आंखें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो लोग रेगुलर चश्मा इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें आंखों को लेकर होती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो चीजें जब जिन आंखों से आप देख रहे हैं, जिन आंखों से आपने, आपको भगवान ने दिया है ये दुनिया देखने के लिए, रंग देखने के लिए, उन आंखों से और भी चीजें की जा सकती हैं, उन आंखों से भी कुछ स्पेशल किया जा सकता है?
0: जी, आप ये सोचिए कि आप रंग देख रहे हैं, आप रूप देख रहे हैं, आप ये नेचर देख रहे हैं, आप ये धूप देख रहे हैं, ये बारिश देख रहे हैं, लेकिन उनका सोचिए जो ये देख नहीं सकते।
1: जी,
0: उनका सोचिए जो ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं, मगर हमेशा उनके अंदर ये ख्वाहिश रहती है कि काश मैं ये देख पाता या देख पाती। तो ये आज का दिन जो है नेत्रदान, तो नेत्रदान कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा पुण्य है, और हम अपने जीते जी तो हमने ये सब कुछ देखा, लेकिन हमारे जाने के बाद कोई और भी देख सकता है। ये एक जो भावना है आपके अंदर अगर है, तो ये नेत्रदान एक बहुत ही बड़ा पुण्य आपके जीवन के लिए हो सकता है। और कहते हैं कि जीवन रहते रक्तदान और जीवन के बाद नेत्रदान।
1: नेत्रदान,
0: तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज के मुद्दे पर, कि आज भी समाज में नेत्रदान करने से लोगों के अंदर ये हिचक जो है वो अभी भी नहीं जा रही है।
1: बिल्कुल, तमाम तरीके की भ्रांतियां जो है समाज में फैली हुई हैं, किस तरीके के विचार हैं, क्या हैं, और नेत्रदान को लेकर आपका क्या सोचना है, आप किस तरीके से नेत्रदान को लेते हैं, और हाँ, आप अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखते हैं, ये भी अपने सुझाव में हमें लिख के भेजिएगा। आपको अपने सुझाव fmakashwani.lucknow@gmail.com पर लिख भेजना है। तो आज का मुद्दा सीधा सीधा सिर्फ यही कहता है कि नेत्रदान को लेकर आपके अपने क्या विचार हैं, और अपनी आंखों का ख्याल आप कैसे रखते हैं, और क्या सुझाव दूसरों को देते हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, तो फटाफट फोन उठाइए, मेल भेजिए कि आप नेत्रदान करने से क्यों हिचकते हैं, या आपको क्यों लगता है कि लोगों के बीच में ये नेत्रदान की भ्रांतियां जो फैली हैं नेत्रदान को लेकर, ये किस तरह से मिटाई जा सकती हैं, और अपनी आंखों का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं।
1: जी हाँ।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत के मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: वेलकम बैक दोस्तों, 8:40 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ। और साथ ही आपको बता दें कि मैंने कहा जैसे कि आज का दिन बड़ा खास है, 10 जून, और हमने एक विषय पे तो बात करी कि आज है विश्व नेत्रदान दिवस, और साथ ही साथ एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है आज जो हम पानी से जुड़ा हुआ है आज का दिन।
1: जी हाँ, तो आज का दिन पानी से या यूं कहिए कि बिल्कुल जीवन से जुड़ा हुआ है तर्शी।
0: बिल्कुल,
1: इसे कहते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, विश्व जल संरक्षण जागरूकता दिवस के रूप में। मतलब आज का जो दिवस है वो है विश्व भूगर्भ जल दिवस है आज। कहने का मतलब ये है कि जो हम पानी वेस्ट करते हैं वो क्या पानी रिसाइकल करके वापस हमें मिलता है, या वो धरती में जाता है, या बस यूं ही नदियों नालों से वो बाहर निकल जाता है, वो वापस मिलता नहीं है
0: जी।
1: तो कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है तरुषी कि हमारे यहाँ पानी जो है, जैसे पौधों में पानी डाल दिया जा रहा है, गाड़ी धुल दी जा रही है, पोछा लगाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि हम एक पानी को रियूज कर लें या उसका अलग अलग मायने से इस्तेमाल कर लें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने शिवम। और जैसे कि हम जब जल संरक्षण की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो विषय है ये कि हम जो ग्राउंड वाटर जो है, हमारा जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो कम हो रहा है, उस पर कई लोगों का ध्यान जाता है, लोग नदियां बचा रहे हैं, बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो बात है भूगर्भ जल, इसको हम कैसे बचा सकते हैं, इसको फिर से कैसे कहते ना, हमारे जो हम पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कई जगह पे ऐसी जगह लगे हैं कि लोग वाटर पंप इस्तेमाल करके भूगर्भ से जल निकालते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको वापस वहां डालने का क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं, वापस उसको संरक्षित करने का क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं। कई सारे ऐसे विषयों पर भी हम लोग ने चर्चा की है, और इससे पहले भी अभी भी बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम और आप भी

0: अगर ये चीज सोचे और हर एक इंसान अगर इस पे सोचने पर आतुर हो जाए ना, तो सच में ये समस्या ही हल हो जाएगी।
1: बिल्कुल, वाटर रिचार्ज वाली बात होती है कि भाई अगर देखने को आप लोग भी सोशल मीडिया हैंडल इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, देश के तमाम हिस्सों में अभी से ही खबरें आने लगी है कि यहाँ का पानी कम हो गया, वहां पानी नहीं है, बूंद बूंद को तरसे लोग, तमाम तरीके की हेडिंग हेडलाइन न्यूज ब्रेक आप सुनते रहते हैं। लेकिन ऐसे में नहीं लगता कि हमारे यहाँ जहाँ पानी है, पर्याप्त मात्रा में पानी है, तो उसका दोहन कितने हद तक सही है?
0: बस यही बात है, दोहन करना ही क्यों है हमें इसको, अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उसको वापस भी तो देना चाहिए ना।
1: बिल्कुल सही,
0: जो आप ले रहे हैं उसको, उस प्रकृति को हम, प्रकृति से हम बस लेते चले जा रहे हैं, उसको देने का प्रयास कब करेंगे हम?
1: बिल्कुल,
0: तो ये सोचने की जरूरत है, इस विषय को सोचने की जरूरत है। तो आज का दिन इसी विषय के लिए ही बनाया गया है कि आप इस पर एक बार गौर फरमाएं कि अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे छोटे छोटे स्टेप्स भी लेते हैं तो भी हम इस प्रयास में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो इसलिए आप भी ध्यान दें कि हम किस तरह से ये जो भूगर्भ जल है उसको संरक्षित कर सके। ये जो अदृश्य जल है जो हमें दिखता नहीं है, मगर ये जो पृथ्वी का सबसे बड़ी पूंजी है, हम उसे धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और हम ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर ये खत्म हो गया ना तो हम इस पृथ्वी पर रहेंगे कैसे, क्योंकि यही तो उसको स्थायी बनाए हुए है।
1: बिल्कुल सही कहा। कहने का मकसद ये भी होता है कि प्रकृति ने जब आपको इतना कुछ बिना टैक्स के निस्वार्थ भाव से दिया है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रकृति के दिए हुए आशीर्वाद, उसके हर एक चीज का बहुत संभल के इस्तेमाल करे, बहुत ख्याल करे, ना कि उसका अत्यधिक उपभोग करे या सिर्फ स्वार्थ के लिए उपभोग करे, है ना तर्शी?
0: बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह की बातों को हम आप तक पहुंचाते हैं, आप भी हमको अपने विचार पहुंचाइए। मेल आईडी आपको पता ही है, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से
3: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
2: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
3: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
2: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
3: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
2: fmrainbowhelpline@gmail.com।
3: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

0: अच्छा शिवम, हम लोग हमेशा वैसे तो कोशिश यही करते हैं कि आपको हमेशा नए विषयों पर या जो ऐसे गंभीर विषय हैं उनकी जानकारी हमारे श्रोताओं तक हम पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और इसी सिलसिले में हम कई सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम और कभी कभी विशेष प्रोग्राम भी लेकर आते हैं, विशेष कार्यक्रम लेकर आते हैं
1: जी।
0: और जब बात होती है हेल्थ से रिलेटेड, हमारे जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो आकाशवाणी FM रेनबो कहीं पीछे नहीं रहता।
1: बिल्कुल नहीं रहता।
0: और अगर इसी तरह के जो प्रोग्राम्स आते हैं, आपको कई बार ऐसी विषयों पर जानकारी हम लोग देते हैं जो आपने कभी सुनी भी नहीं, अभी आपका कभी ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन अब जब आप विचार करते हैं तो कहते हैं कि ये तो रोजमर्रा की बात थी।
1: बिल्कुल, उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल चीजें थी, ये मतलब ये बहुत गंभीर बात नहीं है, बहुत साधारण है।
0: हाँ, लेकिन कभी कभी जब आप ये चीजें हम बताते हैं आपको, तो आप ध्यान देना शुरू करते हैं। तो इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी प्रयास को हम आगे बढ़ाते हैं, और आपको आज एक जानकारी और देते हैं कि आज 10 जून को हम 11 बजे से एक विशेष कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, और उसमें आपको हम बताएंगे कि अगर आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते या पीते समय बार बार खांसी आती है, तो आपको हम बता दें कि ये डिस्फेजिया के संकेत हो सकते हैं। अब ये डिस्फेजिया क्या है?
1: जी हाँ, डिस्फेजिया का कारण ये होता है कि भाई जब गले में जब खाना खाते समय आपको परेशानी हो या बार बार खांसी आती हो, तो ये उसके लक्षण है कि जैसे डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में, यही सब बारे में जानकारी के लिए आज 11 बजे से जो प्रोग्राम होने वाला है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन रहेंगे हमारे साथ।
0: जी दोस्तों, तो इसकी ये आपकी जिज्ञासाओं को सरल और उपयोगी तरीके से उत्तर देंगे। और ये जो विषय मैंने आपको बताया ना, डिस्फेजिया के बारे में अभी तक मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था, और ये भी कोई गंभीर समस्या हो सकती है और ये इतनी बड़ी चीज़ों का कारण बन सकती है, ये तो मुझे आज ही जानने को मिलेगा जब हमारे सामने एक्सपर्ट होंगे। और कहते हैं ना कि बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं हमारे मन में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, कि आप खुद सोचिए कि कई बार ऐसा होता है कि खाना निगलने में बड़ी परेशानी होती, दिक्कत होती, तो हमें भी जानने की जरूरत है कि क्या ये कहीं डिस्फेजिया के लक्षण तो नहीं है।
1: सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि लोग इसको नॉर्मल समझ लेते हैं कि अरे ठीक है, पानी पी लेंगे या कुछ प्रॉब्लम होगी, गर्म पानी से गरारा कर लेंगे तो वो चीजें सही हो जाएंगी, और ये लेकिन लंबे समय तक बना रहता है तो ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि आपको सावधानी बरतने की जरूरत है।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए FM रेनबो 107 मेगाहर्ट्ज़ पर ये जो नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस पर ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, आज सुबह 11 बजे से आप सुनेंगे ये प्रोग्राम, और इसमें आप हमसे जुड़ भी सकते

0: हैं, अपनी समस्याओं का हल भी पा सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है, फोन मिलाना है। और आपको फोन नंबर पता है, मैं आपको बता देती हूँ फिर से, 0522-2238-0552 और इसके साथ ही आप मेल भी कर सकते हैं।
1: जी हाँ, और हमारी ईमेल आईडी तो आप जानते ही हैं, fmakashwani@gmail.com।
0: जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रोग्राम को सुनना मत भूलिएगा, हमसे जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि ये कई बार आपकी जो रेगुलर समस्या है ना, उसका हल आपको बताएगा। तो इस कार्यक्रम में हमसे जुड़िए, और जो हमारे साथ स्पेशलिस्ट होंगे, ENT स्पेशलिस्ट हैं KGMU के, और डॉक्टर रजत जैन जी आएंगे, और उनके साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं, फ़ोन इन द्वारा भी और हमसे मेल द्वारा भी जुड़ सकते हैं।
1: जी हाँ, सही जानकारी, बेहतर स्वास्थ्य आकाशवाणी के साथ। तो सुनना न भूले, आज ही आएगा 11 बजे, और दोस्तों को भी बताएं और लोगों को ये जानकारी जरूर शेयर करें।

0: को इतना आकर्षित कर लेता है जैसे बिल्कुल चाय में शक्कर।
1: वाह क्या बात है, चाय में शक्कर, बहुत सारे लोग चीनी नहीं लेते अब।
0: अरे तो शुगर फ्री हो जाएगा फिर।
1: सही कहा आपने। और आपको बता दें 8:57 का वक्त हो गया। देखिए बातें करते करते समय का कहाँ पता चलता है। और आपको बताएं कि अभी हम ये प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं, लेकिन हाँ ये घंटा वाइंड अप हो रहा है। 9 से फिर से हम आपसे जुड़ते हैं न्यूज ब्रेक के उस पार, तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो,
0: धड़कन लखनऊ की।
2: उस साल का लोकप्रिय गीत ये ले जाता हुआ उड़न खटोला और टीम बजाती हुई नागिन।

नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल कल पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही श्री मोदी देश में सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे संबंधित खबरें आज कई अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। दैनिक जागरण ने लिखा है, चुने पीएम के रूप में मोदी ने नेहरू कालखंड किया पार। 4,399 दिन के कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले निर्वाचित पीएम बने। हिंदुस्तान ने खबर पर शीर्षक दिया है, मोदी ने निर्वाचित पीएम के रूप में नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा, देश में प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों प्रोजेक्ट गंगा के शुभारंभ की खबरें भी आज कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी हैं। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, यूपी में गांव-गांव बहेगी डिजिटल गंगा। अमर उजाला ने इस खबर पर शीर्षक दिया है, 57,000 गांव होंगे डिजिटल, गांव-गांव पहुंचेगी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, अभी 21 जिलों में शुरुआत। अमृत विचार ने प्रदेश सरकार की ओर से पीड़ित महिलाओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए हो रहे सर्वे की खबर को शीर्षक दिया है, 3 तलाक और एसिड अटैक पीड़िताओं को मिलेगा पक्का घर, आयुष्मान और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं को भी दिया जाएगा लाभ। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी हिंसा की खबरें भी आज समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर हैं। नवभारत टाइम्स ने इसे मुख्य खबर बनाते हुए लिखा है, पीओके में हिंसा, भारत बोला पाक को जवाबदेह ठहराएं, उपशीर्षक है 20 से ज्यादा लोगों की मौत पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील। दैनिक जागरण ने लिखा है, गुलाम जम्मू कश्मीर में मुनीर की सेना की फायरिंग में दर्जनों मरे, आंदोलन कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना रेंजर कर रहे हैं बल प्रयोग। हिंदुस्तान ने इस खबर पर भारत की ओर से दी गई प्रतिक्रिया को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पाकिस्तानी सेना पीओके में बर्बरता कर रही है।

राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने की खबर ने आज समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर जगह बनाई है। अमर उजाला ने लिखा है, कांग्रेस को झटका, मीनाक्षी का नामांकन निरस्त। हलफनामे में आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप। हिंदुस्तान लिखता है, मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द, कांग्रेस आयोग पहुंची। मध्य प्रदेश में 18 जून को राज्यसभा सीट के लिए होना है चुनाव। स्वतंत्र भारत ने जोजिला सुरंग में किए गए ब्रेक थ्रू ब्लास्ट की खबर को प्रमुखता से छापते हुए लिखा है, 15 मिनट में पूरा होगा एक घंटे से अधिक का सफर। और इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा, तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: दोस्तों 9:04 का वक्त और हम आ गए हैं वापस आपके पास, आपके साथ बने रहने के लिए और ढेर सारी बातें और अच्छे अच्छे गानों के साथ।
1: बिल्कुल वही जगह, वही जहां हमने पहले बात की थी, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर और चैनल नेम 100.7 FM रेनबो पर शिवम और तरुषी हैं। 9:04 कहने का मतलब ये है कि हम फिर से एकदम आ गए हैं फिर से धमाका मचाने और गाना सुनाने के लिए। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये जो टिमटिमा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं ईमेल, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो गाना बज रहा है ना, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बजा ही।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
2: जी हाँ दोस्तों, 9:10 का वक्त, और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, और मतलब ये देख रहे हैं कि कितने सारे मेल्स हम तक पहुंच चुके हैं।
3: बिल्कुल, वो टिमटिमा रहे हैं बिल्कुल एकदम, भाई साहब मुझे।
2: हाँ जी, तो बिना देर किए चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और लोगों के मेल्स जो हैं वो शामिल करते हैं। कई सारे लोगों ने मुद्दे पर तो लिखा है, साथ ही साथ और भी विषयों पर लिखा है, तो चलिए शामिल करें मेल।
3: जी हाँ, तो पहला मेल मैं पढ़ रहा हूँ सोनू परवाना मेल का। इनका ऊंच गांव अमेठी से मेल आया है और इन्होंने पिछले दोनों प्रोग्रामों की बहुत ही तारीफ की है और अभी तक मुद्दों पर इन्होंने नहीं लिखा है। उम्मीद करेंगे कि ये मुद्दे पर भी हमें जरूर लिख के भेजें।
2: जी, और अगला मेल गीता जी का आया है और सुबह की चाय उन्होंने दोनों के लिए ऐसे कप बना के भेजा है, तो देख के बड़ा मजा आ गया।
3: क्या? और ग्रीन टी है।
2: ओ माय गॉड,
3: क्या बात है, लिखते
2: हैं। आकाशवाणी ने रिश्तों को मजबूत किया है। जिस प्रकार पौधों को पानी की जरूरत होती है, हम लोगों को मनोरंजन जानकारी के लिए रेडियो आकाशवाणी की जरूरत होती है। हम घर में पकवान बनाते रहते हैं और घर के काम भी निपटा लेते हैं और हम रेडियो भी सुना करते हैं, हम सभी को इसीलिए ये आकाशवाणी की दीवानी है।
3: क्या बात है। उन्होंने लिखा भी है, मिस्टर गीता सेठ FM दीवानी।
2: चलिए बढ़िया है। अगला मेल
3: घनश्याम सिंह जी का है, ये लिखते हैं गुड मॉर्निंग FM रेनबो धड़कन लखनऊ की, ये नारायण नगर ए फैजाबाद रोड लखनऊ से हैं और लिखते हैं शिवम भैया जी मैडम जी को नाम मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, इनका आपका अच्छा। नाम भूल गए हैं, तो भाई हमारे साथ हैं तरुश्री। एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, क्या नाम है आपका?
2: तरुश्री। अरे हाँ। वो हमें जानते हैं, अभी उन्होंने सुना नहीं होगा।
3: हाँ, तो ये लिख रहा है कि आप सभी को श्रद्धा पूर्वक शुभ प्रभात और नमस्कार, आप दोनों कैसे हैं? मैं अपने हृदय से आदरणीय लोगों को, हाँ ठीक है।

0: बहुत सारी बधाई इन्होंने दी है कि भाई आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा है।
1: चलिए बहुत बढ़िया है, आगे भी हम मेल, अब लोगों को ना मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, कृपया मुद्दे से रिलेटेड भी मेल्स आप भेजिए तो हम आपके मेल जरूर शामिल करेंगे।
0: जी हाँ,
1: आंचल सेठ जी ने भी मेल भेजा है और सुगंध माटी की उम्मीद कर रहे हैं तो वो बिल्कुल आपको सुनने को मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। जनवेश कुमार जी मेल कर रहे हैं और लिखते हैं कि शिवम मैं आपको कल याद कर रहा था, ऊपर वाले कृपा से आपका प्रोग्राम सुनने को मिल गया, क्या बात है।
0: ओह माय गॉड।
1: मुद्दे पर ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी आंखों को दिन में 3 बार धुलता हूँ, मतलब 3 बार ये आंखों की सफाई करते हैं, ये भी बहुत जरूरी चीज है कि हमारी आंखें थक जाती हैं, इनको भी विश्राम की जरूरत है ना।
0: बिल्कुल सही कहा, और जरूरत और भी चीजों की है, और भी अवेयरनेस है तो उसके बारे में भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। टाइगर खान साहब लिखते हैं विलेज बेलाई संडीला से, हरदोई से मेल कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग में और पिछला प्रोग्राम इन्हें बहुत अच्छा लगा और आप दोनों अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, नाइस प्रोग्राम, नरगिस करके इन्होंने आगे लिखा हुआ है, हालांकि इन्होंने भी मुद्दे से कुछ अभी तक नहीं लिख के भेजा है।
1: देखिए घनश्याम सिंह जी का मेल

0: हाँ दीजिएगा। टाइगर खान साहब लिखते हैं विलेज बेलाई संडीला से, हरदोई से मेल कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग में और पिछला प्रोग्राम इन्हें बहुत अच्छा लगा और आप दोनों अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, नाइस प्रोग्राम नरगिस करके इन्होंने आगे लिखा हुआ है। हालांकि इन्होंने भी मुद्दे से कुछ अभी तक नहीं लिख के भेजा है।
1: देखिए घनश्याम सिंह जी का मेल दोबारा आ गया और मेरा नाम उन्होंने देखिए लिख दिया, तनुश्री। तनुश्री तो नहीं, तनुश्री ही लिखा है, प्यार से आपने तनुश्री बना दिया, मैं कोई बात नहीं। और लिखते हैं कि सदाबहार गीत ने अच्छा लगा, आंखों की रोशनी सही रखने के हरे पौधों को लगातार नजर पर देखता हूँ। नेत्रदान महान दान है, लोगों को किसी की दुनिया रंगीन करने के लिए नेत्रदान जरूर करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। मगर अभी भी जो हिचक है लोगों के अंदर, उसको मिटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये भी हमें लिखकर बताइए।
0: बिल्कुल, सुनील कुमार जी ने हमें बड़ा ही बेहतरीन सा ईमेल भेजा है। सुनील प्रांजल विकास नगर लखनऊ से, आज का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंखें तो पूरी जहां का दृश्य देख सकती हैं, दिन भर आंखों में धूल मिट्टी पड़ती रहती है, इसलिए बिना आई ड्रॉप डाले मुझे नींद नहीं आती है। 63 साल की उम्र है, कोई चश्मा नहीं लगाता हूँ, राम जी की कृपा है। हाँ अभी नेत्रदान नहीं किया है, बहुत जल्दी नेत्रदान भी करने वाला हूँ।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस बात से इंस्पायर होते हैं तो आप लोगों को भी जागरूक कीजिए, नेत्रदान करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो जो मैं कहती हूँ ना, मैंने भी कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के और पढ़ के भी बहुत अच्छा लगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि जिनसे भी मैं मिलूँ, मैं उस चीज़ के लिए उनको प्रेरित करूँ कि जीते जी रक्तदान और जीने के बाद नेत्रदान, ये आप जो कर सकते हैं तो ये इस दान से बड़ा कोई दान नहीं है। आपके जाने के बाद भी आप जिंदा रहेंगे किसी की नज़रों में, तो आप सोचिए कि आप अपने जाने के बाद भी किसी की आप जिंदगी रोशन कर दी, इससे बड़ा पुण्य क्या है।
0: बिल्कुल नहीं भाई, आप जो अभी इतना बढ़िया काम कर ले रहे हैं, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता कि आपने अपने जाने के बाद अपनी आंखें दूसरों को दे ली और वो पूरी दुनिया देखेगा अपनी नजर से।
1: जी महेंद्र दीपन जी का भी मेल आया है और ये हमें राजस्थान नागौर जिले से मेल कर रहे हैं और ये गुड मॉर्निंग लखनऊ के नियमित श्रोता भी हैं। तो आज के मुद्दे पर इन्होंने कहा है कि नेत्रदान के प्रति मेरी सोच बिल्कुल स्पष्ट है, जब हम दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो शरीर तो मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन अगर हमारी आँखें किसी और की जिंदगी को रोशन बनाकर जीवित रख सकती हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है। दुर्भाग्य से आज भी हमारे समाज में, विशेषकर हमारे बड़े बुजुर्गों के मन में, लेकर कई सारी पुरानी भ्रांतियां हैं, वे इसे किसी के डर या अंधविश्वास से जोड़ कर देखते हैं, जबकि हमें उन्हें ये समझाने की जरूरत है कि ये कोई दान नहीं है बल्कि जीवन का उपहार है। अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए मैं खुद भी बहुत सचेत रहता हूं, आजकल की भागदौड़ और डिजिटल स्क्रीन के दौर में मैं कोशिश करता हूं समय समय पर अपनी आंखों को विश्राम दूं, धूप से बचने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करता हूं और प्रकृति के करीब रहता हूं। तो ये एक बहुत अच्छे प्रयास है, बहुत अच्छा मेल आपका मुझे पढ़ के लगा और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने ये जो जिस तरह की आपकी सोच है, इसी तरह की सोच हमारे समाज में सबकी होनी चाहिए। ये जो भ्रांतियाँ है ना, मैंने तो कुछ भ्रांतियाँ पढ़ी कि लोग ऐसा सोचते हैं तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये कैसे सोच सकते हैं। मैंने सुना, आपको पता है शिवम, कि लोग इसलिए नहीं नेत्रदान करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जब नेत्र निकाली जाती है, मतलब जब आप नेत्रदान करने के लिए, तो जब तो आंखें निकाल ली जाती हैं, आंखों में गड्ढे हो जाते हैं, ऐसा किसने कहा है?
0: वही
1: अगर
0: है
1: आप सच से वाकिफ नहीं है तो कृपया आप एक्सपर्ट से जुड़िए, आप इस बारे में जानकारी हासिल कीजिए, मगर इस तरह की भ्रांतियां ना फैलाइए।
0: बिल्कुल,
1: ये भी सुनने को मिला है कि अगर आप नेत्रदान इसमें कर देते तो आपके अगले जन्म में आप नेत्रहीन पैदा होते हैं।
0: हाँ।
1: मतलब लॉजिक क्या है इसका?
0: बिना कोई लॉजिक के इसीलिए तो आपको ये जागरूक रहना है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, नेत्रदान बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरों के लिए। अच्छा तरुषी, आपको पता है जो पहले के लोग थे, मतलब जो बुजुर्ग थे, जो पूर्वज थे, जो गांवों में रहते थे लोग, भाई भारत की 70% जनसंख्या जो है भारत की गांवों से ही बसती है, गांवों से ही निकल के आई है, तो उनके जो लोग होते थे ना पहले, वो लोग जो धोती कुर्ता पहनते थे, वो लोगों की आंखें बड़ी तेज हुआ करती थी, वो लोग बहुत टाइम तक उनको चश्मे की जरूरत नहीं होती थी। तो ऐसा क्या खास था, कभी सोचा है आप लोगों ने दोस्तों, कि ऐसा क्या खास था कि जो हमारे बुजुर्गों को चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं थी? हाँ मानते हैं कि डिजिटल स्क्रीन नहीं हुआ करती थी, लेकिन तब भी उस वक्त भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि उस समय इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी।
1: हाँ।
0: बावजूद आंखें लोगों की बहुत ही तंदुरुस्त रहा करती थी।
1: जी बिल्कुल,
0: ये सोचने वाली बात है। तो अगर सोचने वाली बात है तो यही आता है एक चीज जिसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप खाली टाइम में बैठिएगा तो उनकी दिनचर्या के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि
1: बिल्कुल सही,
0: आंखों की जो रिलैक्सेशन है, जो स्वास्थ्य है, वो हमारी दिनचर्या पे भी निर्भर करता है।
1: बिल्कुल सही। और

इसी तरह की मेल्स हम और शामिल करेंगे, अभी बहुत सारे मेल्स बाकी हैं, तो आप हमें लिख भेजिए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर कि नेत्रदान करने में अभी भी हिचकिचाहट क्यों है।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों 9:23 का वक्त, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, और आपके साथ है आपके दो दोस्त, मैं तरुश्री, मेरे साथ है शिवम। और शिवम, चलिए आप बात कर लेते हैं कि आज के ट्रैफिक का क्या हाल होने वाला है, और इसके लिए हमसे जुड़ चुके हैं विकास सिंह जी, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज मैम वर्तमान में लखनऊ शहर में सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है। आज जैसा कि आप सभी को विदित है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम चल रहा है।
2: हाँ।
3: और ये एग्जाम दो पालियों में हो रहा है, 10 से 12 और 3 से 5।
2: जी।
3: 10 से 12 के समय में लगभग 9 बजे से 10 और 12 बजे से 1 बजे के बीच, तथा 3 से 5 में हमारा 2 से 3 और 5 से 6। ये समय होता है कि जब जो परीक्षार्थी होते हैं वो रूट ट्रैफिक मतलब रोड पर रहते हैं, और इस समय जो है ज्यादा भीड़ रहती है। तो ये इस समय लगभग जो हमारा सबसे ज्यादा कंजेशन का पॉइंट रहता है वो हमारा चारबाग रेलवे स्टेशन के पास, आलमबाग बस अड्डा और अवध बस अड्डा, कैसरबाग बस अड्डा। तो यहाँ पर आप लगभग ये अगर टाइम पर आपको आवश्यकता नहीं है तो इन एरिया में जाने से अवॉइड करें आप। और दूसरी बात, अगर जैसे कोई परीक्षार्थी है और उन्हें मतलब कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो आपके माध्यम से हम उन्हें अवगत कराना चाहेंगे कि हम लगातार ट्रैफिक पुलिस जो है हेल्प कर रही है। अपना हमारा हेल्पलाइन नंबर 94 54 41 51 55 है, जिसके माध्यम से हम सुगमता से उनके ट्रैफिक जो उनका सेंटर है एग्जाम सेंटर, वहां पर हम पूरे सुगमता से पहुंचा रहे हैं लोगों को। तो ये दो बातें हो गई। एक दूसरी बात ये है कि स्कूटर इंडिया और बंथरा के बीच में अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रक और कार में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, जिसके कारण जो है थोड़ा सा वहां पर सिंगल लेन में यातायात चल रहा है। तो लखनऊ कानपुर मार्ग पर स्कूटर इंडिया से बंथरा के बीच में ये मार्ग थोड़ा सा सिंगल लेन में है। यदि आप लखनऊ कानपुर मार्ग का सफर कर रहे हैं तो अपना थोड़ा समय से पहले घर से निकलें ताकि आपको कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। और मैम कहीं अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है और कोई विशेष डायवर्जन नहीं है।
4: जी।
3: यही था जो आपके माध्यम से हमने श्रोताओं तक पहुंचा।
4: सर अभी हाल फिलहाल में सर देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग गाड़ियों में अवैध तरीके के मॉडिफिकेशन करा ले रहे हैं, हाई बीम या बहुत तेज रोशनी वाली लाइट या बहुत तेज आवाज वाली जो गाड़ियां चल रही हैं उनके बारे में सर कुछ।
3: आप बिल्कुल सर आपने सही बताया, और ऐसे लोगों के विरुद्ध लगातार यातायात पुलिस लखनऊ पुलिस कार्रवाई कर रही है।
4: जी।
3: और हम लगातार इन जागरूकता भी का कार्य भी कर रहे हैं।
4: जी।
3: साथ ही जो ऐसे दुकानें हैं जहां पर ये चीजें लगती हैं वहां पर भी हम उनका खोजबीन करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहे हैं।
4: जी।
3: तो हम प्रभावी प्रवर्तन की कार्रवाई कर रहे हैं। बस श्रोताओं से अनुरोध है कि वाहन में मॉडिफिकेशन ये आपके जीवन को दुर्घटनाओं में जो है सबसे ज्यादा ये संलिप्तता पाई जाती है मॉडिफिकेशन का। अगर देखा जाए, अगर मॉडिफाइड साइलेंसर की बात करें तो नॉइज पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। दूसरी तरफ अन्य मॉडिफिकेशन से जैसे कि पीछे बंपर आदि लगा लेने से जब सड़क दुर्घटना होती है तो सीट बेल्ट का ना खुलना और इससे जान जोखिम में रहता है। तो मेरा यही अनुरोध है कि मॉडिफिकेशन, वाहन में मॉडिफिकेशन ये यातायात नियमों के विपरीत है और इससे आपके और दूसरे व्यक्ति के जीवन को खतरा रहता है। तो कृपया आप जो है ऐसा कोई मॉडिफिकेशन ना कराएं जिससे कि जो है आपको और दूसरे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। जी
4: सर, ये 40 डिग्री के पारे में आप और आपकी पूरी टीम सुचारू रूप से ट्रैफिक संचालन के लिए हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।
3: जी धन्यवाद, आभार आपका।
2: सो श्रोताओं, जैसे कि आपने अभी हमारे साथ हैं विकास सिंह जी, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर।

0: उन्होंने जिस तरह से बताया है कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ पर उन्होंने बताया कि ये रोड ब्लॉक रहेगी या यहाँ पर असुविधा है और ख़ासकर एग्ज़ाम की वजह से कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं अगर आपको ट्रैफिक में, तो कृपया उस मार्ग को अवॉइड कीजिए ताकि आप अपने गंतव्य तक ठीक से पहुंच सकें।
1: बिल्कुल। और तनुश्री, ऐसा देखा गया है यहाँ पे लखनऊ में कि बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो लोग अपने बच्चों को गाड़ी चलाने की मतलब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, लेकिन वो जो बच्चे बहुत छोटे हैं उनको वो गाड़ी दे रहे हैं मोहल्ले में, मतलब जो लोकल गली हैं जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, मैंने देखा है वहाँ वो बच्चे बिल्कुल फुल स्पीड में एकदम धर्राटे काटते हुए नागिन वाली डिजाइन से वो बिल्कुल चला रहे हैं। एक तो खुद वो छोटे हैं, खुद भी चोट मतलब लग सकती है और दूसरों को भी वो चोट पहुँचा सकते हैं। तो ऐसे में उन लोगों से भी ये अनुरोध है कि भाई इस बात का कम से कम ख्याल रखें कि वो आपका बच्चा है, दूसरों को भी चोट लग सकती है, उनको भी चोट लग सकती है, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि उनको समय से पहले, जो एक एज होती है उससे पहले गाड़ी ना दें, और अगर दे रहे हैं तो प्रॉपर सुरक्षा संबंधी नियम समझा के ही उनको वाहन चलाने के लिए दें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने शिवम, और इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें के साथ हम अभी फिर से लौटेंगे, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद, उसके बाद फिर हम आते हैं वापस।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी, आप सभी को जिनका भी आज जन्मदिन है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे एफएम परिवार की ओर से, उनको ढेर सारी बधाइयां आज के दिन की।
1: वैसे मेरे खुराफाती दिमाग में कुछ चल रहा था कि अगर मान लीजिए कि आपका जन्मदिन भंडारे वाले दिन पड़ जाता है
0: तो सोने पे सुहागा हो जाता है।
1: बिल्कुल, मतलब आप केक लेने के लिए निकले हैं, साथ में पूरी छोले भटूरे और बूंदी लेके आते हैं।
0: हाँ, क्या बात है। तो कहते हैं ना, एक आपने कोशिश करी कि हम अपना दिन बनाएं और इसी के साथ साथ सबने कोशिश करी कि आपका दिन बनाएं, है ना।
1: हाँ, वैसे मतलब ये मतलब बड़ा मतलब खलबली वाली बात है ना, मतलब कि मतलब बहुत इंतजार रहेगा, मतलब कि ऐसे जब बर्थडे होता है तो लोग कहते हैं घर पे रहना है, लेकिन अगर उसी दिन भंडारा पड़ जाए।
0: अच्छा ये बताइए कि आपका जो जन्मदिन है वो किस महीने में आता है?
1: मेरा अक्टूबर में आता है।
0: हाँ, तो भंडारे का कोई चांस नहीं, आई एम सॉरी।
1: तो इसलिए
0: स्पेशल ओकेजन सिर्फ और सिर्फ जो जून और मई में पैदा हुए हैं उनके
1: तो
0: लिए।
1: इसीलिए तो मैं दूसरों की खुशी में खुश हो लेता हूँ, मैं खुद ही भंडारा ले आता हूँ।
0: ये बढ़िया है, आप कोशिश करिए। वैसे तो कल आपने भंडारा पक्का खाया है।
1: बिल्कुल,
0: हाँ देखिए, इसीलिए तो इतना भंडारे की
1: मतलब भंडारे वाले भैया पहचान गए थे, ये लड़का उधर से घूम के दोबारा चला आया, लाओ लाओ तुमको दे दो।
0: अच्छा, कभी आपने, मैं ये अपने श्रोताओं से पूछना चाहती हूँ, कभी आपने ये किया है कि आप भंडारे में गए और आपने फिर उसके बाद एक बार एक लॉट आपने ले लिया अपने पास, उसके बाद फिर घूम के दोबारा इधर से आए और उसके बाद फिर से दोबारा आप लाइन में लग गए?
1: हाँ, बेचारी वाली शक्ल बना के भैया एक और दे दीजिए।
0: भैया वो एक और दे दीजिए प्लीज। वैसे भंडारे वाले कभी मना नहीं करते।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो इसीलिए ये एक अच्छा तरीका है अपनी मेमोरीज को, कहते हैं ना, फिर से याद करने का। जब हम वैसे जब बचपन में जब भंडारे में जाया करते थे तो ये तो जरूर कभी किसी ने भेज दिया जाओ भैया वहां से ले आओ, फिर दूसरा चाची ने भेज दिया जाओ भैया वहां से ले आओ, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मौसी की आवाज आई भैया वहां से ले आना फिर से एक बार।
1: और
0: तो ये जो कल्प्रिट होता है वो बच्चा होता है।
1: बिल्कुल, और सारे जगहों के भंडारे की सब्जी जो है बिल्कुल चखी जाती है, भाई साहब कौन चटपटी कौन सादी कौन मसालेदार कौन कड़वी।
0: जी, तो ये है कि आप आज आपका अगर जन्मदिन है तो आपने अगर कल भंडारा खाया है तो आज उसकी फिर से उस स्वाद को फिर से याद कर लीजिए शिवम के अनुसार।
1: बिल्कुल, और अगर आपकी है एनिवर्सरी तो उसको भी देखिए ध्यान कर दीजिए, फटाफट उठा के मैसेज और बोल दीजिए, कर दीजिए समस्या का समाधान।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। वैसे तो समस्या का समाधान हो जाएगा जैसे ही आप एक बार याद दिलाएंगे कि अरे आज तो एनिवर्सरी है, लेट्स सेलिब्रेट।
1: तो ऐसे ही हम चटपटी बातें करते रहते हैं, जैसे सुबह सुबह बोला था मैंने कि मसालेदार चटपटी और खट्टी मीठी बातों के साथ शिवम और तरुषी हैं आज गुड मॉर्निंग लखनऊ में। एक बेहतरीन सा गाना आपके रेडियो सेट पर बज ही गया।

0: तो 9:40 हो गया है, सूट सूट तो करेगा ही, लेकिन ये धूप आपको सूट कर रही है कि नहीं ये तो आप जानते हैं, ख्याल रखिए। तो धूप का आगे क्या माहौल रहने वाला है, गर्मी होगी, उमस होगी या बारिश करेगी तर बतर, इन सारी जानकारियों के साथ बिल्कुल आज हम तैयार हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी के साथ।
1: जी सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: जी गुड मॉर्निंग।
1: तो सर बताइए जरा कि कल तो जैसा ऐसा लगा कि बारिश तो के आसार तो नहीं लग रहे थे, लेकिन अचानक से टिप टिप बरसा पानी और अचानक से फिर से धूप का आगमन, ये समझ नहीं आया सर।
2: जैसा कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन वेस्टर्न यूपी में है, तो जिसके वजह से बीच बीच में पासिंग टाइप का बादलों की आवाजाही
1: जी
2: होने की संभावना रहती है, तो कहीं ना कहीं आज भी कुछ इसी तरीके का बादलों की आवाज है बीच में रह सकती है। बाकी कल से मौसम थोड़ा अनुकूल होगा, कल से धीरे धीरे तापमान में गिरावट होगा आने वाले अगले 4-5 दिन, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में थोड़ी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है
1: जी।
2: तो कुल मिला के कहें तो आज ऐसे ही थोड़ा धूप रहेगा, बीच में थोड़ी बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन कल से बादलों की आवाजाही के साथ छिटपुट वर्षा होने की भी संभावना है कल से लेकर आने वाले दिनों में। तो परसों नरसों एक अच्छी बारिश का स्पेल लखनऊ के आसपास मिल सकता है
0: जी। मतलब बहुत बड़ी ये राहत की खबर है, अगर देखा जाए पिछले हफ्ते भर का तापमान देखा जाए 44 डिग्री का झुलसती जो धूप थी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी बहुत ही राहत मिलने वाली है
2: जी। बिल्कुल आने वाले दिनों में राहत की पूरी उम्मीद।
1: ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, और आपकी भी जो ये जब आप बात बताते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये गर्म तवे पे ऐसी छींट पड़ी है, थोड़ी सी राहत मिली है।
0: बिल्कुल सही सर। और मुझे लगता है जितने भी लोग सर सुन रहे हैं आपकी बातों से, ये सुन के मुझे लगता है वो बहुत सारी चीजें प्लानिंग करते हैं, तो आपका ये सूचना देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।
2: ओके धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं जैसे कि आपने सुना हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश, और उन्होंने बताया कि कुछ राहत मिलने वाली है, तो देखते हैं अब कब तक ये मेहरबानी होगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप तैयार रहिए एक प्यारे से गाने के साथ और अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों 9:47 हो गए और अब शामिल कर लेते हैं कुछ मेल्स, क्योंकि बहुत सारी मेल्स हम तक पहुंच चुकी हैं और उन्हें शामिल करना तो बनता ही है. तो चलिए शामिल करते हैं. इसके बाद राम मोहन गुप्ता जी का मेल जो है वो हमेशा की तरह पंक्तियाबद्ध है. कुछ अच्छी अच्छी पंक्तियाँ उन्होंने लिख के भेजी हैं, तो चलिए उसको शामिल करें. लिखते हैं, अपने सदर विधायक की देख रेख में मिल कर हम नित्य कर रहे हैं नगर की नदी उल का संरक्षण. यही नहीं, सेठ घाट के तट पर हमने वृक्ष लगाए. नित्य प्रति देते हैं पानी करते देखभाल ये लहराएं. नदी की साफ सफाई संग लोगों को भी समझाते. कूड़ा करकट झिल्लियां ना डालें रह विनम्र बताते. धीरे धीरे जीवनदायी नदी हो चली है सुथरी साफ. विभिन्न सेवियों संगठनों के भी जुड़ रहे हैं संघ हाथ. बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपने ये जो आपने प्रयास किया है ये जरूर सफल हो और आगे भी इसमें आपको सफलता प्राप्त हो. और जो आपने

0: गंतव्य चुना है कि आप अपनी नदी और पेड़ पौधों की रक्षा करें, ये बहुत अच्छी बात है
1: जी। और उन्होंने एक पिक्चर भी भेजी है जिसमें नदी की सफाई करते हुए दिखाया गया है। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे चित्र जब दिखाई देते हैं जो धरातल पर देखने को मिलते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऐसा कह रही हैं यस्मीन भानो और लिख रही हैं, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। आंखों की देखभाल मैं ऐसे करती हूँ, प्रॉपर नींद लेती हूँ, मोबाइल कम देखती हूँ, और अगर मैं बाइक से सफ़र करती हूँ तो चश्मा ज़रूर लगाती हूँ जिससे आंखों में धूल मिट्टी नहीं पड़ती है। और इनकी एक राय है कि जो लोग सोने का टाइम मोबाइल देखते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी आँखें थकी थकी सी लगती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। विश्वा सीतापुर से ये प्यारा सा ईमेल हम तक पहुँचाया है।
0: और एक और मेल शामिल करते हैं, पवन कुमार जी हमें सीतापुर से सिंहपुर सिधौली सीतापुर से मेल कर रहे हैं और लिखते हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, नेत्रदान महादान, जल बचाएं कल बचाएं, हम आँखों को चार बार धुलते हैं और धूप में चश्मा लगाते हैं, सभी अपने आँखों का ध्यान दें और नेत्रदान जरूर करें।
1: क्या बात है। और मुनेश कुमार राज गांव भानपुर हरहुआ जिला लखीमपुर खीरी लिखते हैं, शिवम सर और तर्शी मैम को गुड मॉर्निंग, हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते हो गए कई साल।
0: क्या बात है, शॉर्ट एंड क्रिस्प, अच्छा लगा।
1: और इन्होंने मुद्दे से जुड़ा कुछ नहीं लिखा है। और अगला मेल जो है हमारे मोनू भैया लिखते हैं, मैं नेत्रदान करना चाहता हूँ, नेत्रदान करते के समय पहला कदम अपने परिवार को बताने की इच्छा है ताकि अपने सही समय पर नेत्र बैंक से संपर्क कर सके, और 6 घंटे के भीतर आंखों को दान करना जरूरी होता है, मतलब जब एक्सपायर होता है, तो आप नज़दीकी नेत्र बैंक जाकर या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए गांव में जागरूकता अभियान चले अस्पतालों के माध्यम से, तब जाकर चीज़ें सही हो सकती हैं। आगे लिखते हैं, मोबाइल को हमने 10 घंटे अपने आप से दूर रखा है, हमारे बुजुर्गों के ज़माने में अच्छा खान पान दूध दही फल फ्रूट और प्योर था, चना गुड़ बाजरे की रोटी, इसलिए उन लोगों की आंखें सही रहती थी, और आजकल जो है नूडल्स और चाउमीन में उलझे, इस वजह से आंखें खराब हो जाती हैं।
0: ये भी बात सही है कि जो फास्ट फूड है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करता है, तो ध्यान देने की जरूरत है कि आप जो भी खाएं वो आप सही खा रहे हैं कि नहीं, ये भी ध्यान देने की जरूरत है हमारी और आपकी। रोशनी रावत जी हमें मेल कर रही हैं और लिखती हैं, ये हमें आज के मुद्दे पर बोलती हैं कि मैं भी अपनी आंखों को दान करूंगी, दुनिया से जाने के बाद सब कुछ देख सकूंगी। तो ये जो एक सच में एक ये ऐसी भावना है ना, ये अगर आपके मन में आ जाती है तो आपको भी सच में अच्छा लगने लगेगा,
1: बिल्कुल लगने,
0: क्योंकि जाने के बाद कोई जीवित रहे किसी के जरिए तो ये बहुत बड़ी महान बात है।
1: बहुत। और आगे उन्होंने नाम लिया है बाबूराव, नीलू शर्मा, गुलफशाह दीदी को राधे राधे बोल दीजिए, और ये बेहतरीन सा प्रोग्राम के लिए बहुत शुभकामनाएं भेजी हैं।
0: और अगला मेल है जावेद पटेल जी, लेकिन जावेद जी ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है तो आप कृपया ध्यान रखें, लेकिन इन्होंने लिखा है कि मैं आपके ऑनलाइन ऐप से सुनता हूँ, बहुत अच्छे प्रोग्राम है आपके स्टेशन के, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मेल के लिए। ये हमें डिस्ट्रिक्ट सोलापुर से मेल कर रहे हैं।
1: शकील अहमद जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग तशरी और शिवम सर, जायस जिला रायबरेली से मेल कर रहा हूँ। सबसे पहले बता दूं कि पिछले 2 प्रोग्राम मैं हमेशा सुनता हूँ और होने वाले जितने भी उसमें गाने होते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ और अपनी आँखों का थोड़ा थोड़ा अंतराल पर थोड़ी देर बंद कर लेता हूँ, इससे मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। इसके अलावा मैं दिन में 5 बार आँखों को पानी से धोता हूँ, अभी तक मेरी आँखों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शकील अहमद जी बहुत अच्छा किया आपने, आप अवेयर हैं, आप आंखों का ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं
0: जी। अगला मेल वारिस अली जी का है और मुद्दे पर कहते हैं कि मेरा मानना है कि लोगों में जानकारी और जागरूकता की कमी है, लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि नेत्रदान के लिए कहाँ संपर्क करना है, मृत्यु के कितने समय के अंदर नेत्रदान करना है, लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि नेत्रदान के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता, इसीलिए लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ये हमें संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से मेल कर रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सही कही कि जागरूकता की कमी ही एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग नेत्रदान करने से अभी भी झिझकते हैं, तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं अपने नज़दीकी जो अस्पताल है वहाँ पर जाके संपर्क कर सकते हैं, किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके आप संपर्क करिए, वहाँ पर नेत्रदान के लिए आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी, और इसके लिए आपको सच में कहीं भी कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो जो आंकड़ा है, एक लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से पता चला कि भारत में लगभग 1,25,00,000 लोग दृष्टिहीन हैं, जिसमें करीब 30 लाख व्यक्ति नेत्र प्रत्यारोपण के माध्यम से नई दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, और आकलन ये बताता है कि एक

0: वर्ष में देश में जितने लोगों की मृत्यु होती है, अगर सभी के नेत्रों का दान हो जाए तो देश के सभी नेत्रहीन लोगों को ही एक ही साल में आंखें मिल जाएंगी। तो सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है और हम कितना ज़्यादा, जो मृत्यु के बाद भी हम अगर जीने का हौसला रखते हैं या जीने की भावना रखते हैं, तो इस कदम को आप मत रोकिए। अगर आप नेत्रदान करना चाहते हैं तो मैं जानती हूँ कि समाज से लड़ना पड़ता है, क्योंकि कई भ्रांतियाँ अभी भी हैं, आपको अपने परिवार से लड़ना होगा, लेकिन ये एक प्रयास अगर आप करते हैं तो आपसे प्रेरित होकर कई और लोग प्रयास करेंगे।
1: बिल्कुल, और ये बड़ी तादाद है जिसे आप अपनी आंखों से रोशनी जीवन प्रदान कर सकते हैं। सोनू परवाना मेल लिखते हैं, ट्रैफिक वाले सर से जो आपने सवाल किया, मतलब कि मैंने पूछा था उनसे कि ये जो प्रेशर हॉर्न गाड़ी का मॉडिफिकेशन है उसके बारे में, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसके लिए ये लिखते हैं, बहुत शुक्रिया कि आपने सवाल किया और उसका आंसर मिला। बहुत से लोग प्रेशर हॉर्न गाड़ियों को तेज आवाज में चलाते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। सोनू परवाना मेल अमेठी से
0: जी। और आपको बताएं 9:54 का वक्त हो गया है और अब इस प्रोग्राम को हम वाइंड अप करते हैं, गुड मॉर्निंग लखनऊ को वाइंड अप करते हैं, लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
1: जी हाँ।
0: जी, आपकी शिवम भैया जो है ना अभी आपको लेकर आ रहे हैं एक आपका सबसे फेवरेट प्रोग्राम सुगंध माटी की 10 बजे से न्यूज ब्रेक के उस पार, और उसके बाद मैं आपसे जुड़ूंगी 11 बजे से। और प्रोग्राम आज बहुत विशेष होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्फेजिया के बारे में आपको बहुत ढेर सारी जानकारी मिलेगी, और हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ेंगे प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन जी, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं KGMU से, और वो आपको बताएंगे कि ये क्या है डिस्फेजिया और इसके लक्षण क्या हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं या बहुत सारी जो सिम्टम्स हैं आप नज़रअंदाज कर देते हैं वो क्या हो सकते हैं और आप एक बड़ी समस्या से बच सकते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए, सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन
1: लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें स्वच्छता अभियान, फलों और मिठाइयों का वितरण और दिन भर विभिन्न मंदिरों में भंडारे शामिल हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इस मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने वाले जन नेता बनने पर बधाई दी है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र का यह अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास और स्नेह आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसे अवसर विरले ही देखने को मिलते हैं जब कोई नेतृत्व केवल सरकार का नहीं बल्कि एक युग की चेतना का प्रतीक बन जाता है। यह सम्मान उसी तप, त्याग और दूरदृष्टि राष्ट्रनिष्ठा का अभिनंदन है जिसने करोड़ों देशवासियों को विकसित भारत के स्वप्न से जोड़ा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का आज तीसरा और अंतिम दिन है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई जा रही है। सॉल्वर गिरोह के पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ, लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस भी सक्रिय है। इसी क्रम में जौनपुर में भर्ती परीक्षा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी इंस्पेक्टर सुनील कुमार गौड़ ने नेतृत्व में स्टेशन परिसर में सघन चेकिंग की गई। परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों को जीआरपी टीम ने सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही परीक्षार्थियों को भीड़भाड़ के दौरान असामाजिक तत्वों से सतर्क रहने के लिए जागरूक किया है। अमरोहा में पुलिस द्वारा कल से 12 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटीज इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 का आयोजन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 10,000 प्रतिभागियों की ऑनलाइन स्क्रीनिंग की गई है, जिसके बाद 850 अभ्यर्थियों को चुना गया है। इस प्रोग्राम में देश भर से साइबर एक्सपर्ट और पुलिसकर्मी साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए साइबर योद्धा तैयार करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

तो भैया सब लोगों ने आप सभी के एक बार फिर से राम राम प्रणाम बा, हमार नाम शिवम बा। आप सबका फेवरेट प्रोग्राम जो ना कि आप सभी अपने भाषा में और सबकी भाषा में कहल जाला जेकर नाम बा सुगंध माटी के। अब बात जब सुगंध माटी को होला तो तरह तरह का बात, तरह तरह का भाषा, तरह तरह का गाना इस प्रोग्राम में जरूर बाजी। आ जब गाना का बात बाटे तो एगो गाना हम बड़ा दिन से के जोगा के धैले रहनी है तो हम लोग को सुनावे खातिर, तो ये गाना का सुनल जाओ। आ ये गाना का बहुत पहले जोन गायक बना बड़ा सब बात कह के गई रहना वह बात पर हुई, आ गाँव गिराव का बात हुई, तो ये गाना का सुनल जाओ, आनंद लिहल जाओ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
2: भाई अब मैच का क्या होगा?
1: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
3: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
4: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
3: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

10:13 हो गए बटे जैसर की एक गाना में एगो लाइन रह लिया कि बलिया के सतुआ देवरिया के मर्चा। तो बहुत कमे लोग इस बात से इत्तेफाक रखत हुए हैं जहाँ कि आज के समय में तो तमाम तरीके का ड्रिंक आ गए पिए वाला, ठंडा केहू पियता, केहू दही लच्छी पियता, खैर तो वो पुराने वाले, लेकिन तमाम तरीके का जो एनर्जी ड्रिंक नाम से जो कहल जाता है समय मार्केट में आई। लेकिन एगो समय रहे कि बलिया का सतुआ बहुत फेमस रहे, आ यो समय फेमस बाटे ऐसा बात नहीं के। तो उस समय क्या होके कि दोपहरिया में हाई मैं लूही बहुत ये इतना एकदम देह जरावे वाली, वैसा लूही में जे पुरानिया रहे जे घर का रहे जे उ सतुआ घोरा आ बढ़िया एकदम जोन माटी के कुंडा में जोन कहल जाला कि राब धरा गुड़ धरा दानेदार वाला ओकर रस घोरा सतुआ सनाओ आ भर दोपहरिया आदमी खा आ हई जोन दवाई तमाम तरीके के चावल बटे के लोही से बचावे कहती हई दवाई खा ला हाउ दवाई खा ला हई जोगत लगा लो। तो वो समय कुल ना रहे कहला मतलब ये बटे कि जे वो पीढ़ी के देखले बा जे वो पीढ़ी के समझले बा सतुआ का पिसाने का जे जौ का आटा खैले बा जे मकई का आटा खैले बा

जोन माटी के कुंडा में जोन कहल जाला कि राब धरा गुड़ धरा दानेदार वाला ओकर रस घोरा सतुआ सनाओ आ भर दोपहरिया आदमी खा आ हई जोन दवाई तमाम तरीके के चावल बाटे के लोही से बचावे खातिर हई दवाई खाला हाउ दवाई खाला हई जोगत लगा लो तो वो समय कुल ना रहे। कहला मतलब ये बाटे कि जे वो पीढ़ी के देखले बा जे वो पीढ़ी के समझले बा सतुआ का पिसाने का जे जौवे का आटा खैले बा जे मकई का आटा खैले बा ओकर स्वास्थ्य आ जे आज के स्वास्थ्य बाटे ओकरी में या पहले के समय में बहुत अंतर रहल बाटे। फिलहाल एगो और भोजपुरी सॉन्ग जौन हालांकि चैत में सुनल जाला लेकिन एहू समय वो गाना के सुन सकत बानी जा आप सबे तो ये गाना सुनल जाओ आ बढ़िया से बढ़िया गाना शानदार शानदार गाना बहुत सारा ईमेल भी आ गया बा आप सबका पढ़ल जाए ईमेलो पढ़ल जाए ढेर सारे बातियों हुई लेकिन गनवो चलल बहुत जरूरी बा तो लिहल जाओ एगो पवन सिंह की आवाज़ में बेहतरीन गाना।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: दस बज के 20 मिनट हो गए बटे। अच्छा आप सभी के एक बात और बतावल चल जाओ कि ये समय है जो नौका नौका घर बनत बटे, सब अपनी घर में एसी कूलर पंखा लगोले रहत बटे, लेकिन एक समय रहे कि जौन समय घर थपुआ नरिया के बने, जने के कहला मतलब खपरैला के घर कहल जा। बहुत आदमी जौन बटे थपुआ नरिया के घर देखल ना हुई, नौका पीढ़ी तो बिल्कुल ना देखल हुई, लेकिन जो रहल हुई वह जाना तटे वो घर का स्वाद। कहे कि थपुआ नरिया का घर वो समय वो रहे कि जोन ऑटोमेटिक टेम्परेचर चेंज कर ले अपने हिसाब से, समय के हिसाब से। जैसे गर्मी का ये समय जोन है मैं लू बहुत एटे मैं आदमी धरती सिवान बगीचा मैं जरत रहल बा, ये समय वो घर जोन रहे थपुआ नरिया का छान मड़ई रहे वो ठंडा रहे, आ ठंडा के दिन में वो घर गर्म हो जा। तो देखो सोचल जाओ कि हमहन के पूर्वज वही समय वो टेक्निक बना दे रहे कि भैया हमार जो आने वाली पीढ़ी रही ओके गर्मी न लागे, जाड़ न लागे, बतास न लागे। लेकिन जब हमन का नया पीढ़ी आई वो अपन कल्चर अपन संस्कृति अपन भाषा अपन जोन स्वाद बाटे ओके छोड़ के आधुनिकता में पीछे इतना पागल हो गए, आ भोजपुरी में कहल जाए कि इतना बौराहा हो गए कि वो चीज़ के आदमी छोड़ ही दिया। तो अब वो बात के आदमी धीरे धीरे समझाते, लेकिन एगो बात तो होकर बतावल जाए वो समय जब थपुआ नरिया जब फूट जाए तब वो के फेरावे के रहे तो दूसरा दूसरा गांव से जाके वो कुम्हारे के साइकिल पर बैठा के ले आवल जा, आकर पैसा देवे कर पड़े ओके धोती कुर्ता पहनावल जाओ तब तो जाके वो बनावे तुहार तो थपुआ नरिया जोन बाटे खूब बढ़िया से सजा के जोगा के घर बने। आई जितना है कुल लागे लकड़ी मूज कूस उ कुल लगा के बढ़िया से रंग पोता के एकदम जौन आज के समय में जौन घर द्वार बाटे वो समय वो घर द्वार मैं माटी से लिपा, नहरी नाला से माटी निकाल के ले आओ जो स्पेशल माटी रहे वो लिपाओ आ एकदम गेर से रंग के पोत के खूब बढ़िया सुंदर सुंदर घर एकदम बनल जा। जे समय आज तो दुनिया तमाम तरीके के पेंट आ गिल बा, वाल पेपर आ गिल बा, प्लास्टिक सीट आ गिल बाटे, तमाम तरीके के कुल सुविधा चलल बाटे। अच्छा भोजपुरी में दोस्तों ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत ही पुराने समय के होते हैं और जो प्रचलन में बहुत कम हो जाते हैं, आमतौर पे जब हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो वर्ड बहुत ही कम होते हैं। जैसे हमने अभी एक इस्तेमाल किया वर्ड थपुआ और नरिया, तो जो खपरैल में जो पार्ट लगते थे जो इस्तेमाल होते थे उसे थपुआ नरिया बोला जाता था। जैसे मैंने बोला था एक निहोरा है, तो निहोरा शब्द का अर्थ ये होता है कि अनुरोध करना। तो ऐसे शब्द जो है हमारे गाँव में जो जो पुराने हैं कहला का मतलब ये धोती कुर्ता पहन ले बा, नौका वाला नहीं हाउ पैंटा वाला स्टाइल की जोन बा धोती इन्हें पहनला पेंट नियर लगौला चल दिया ऊ ना ही जे पुरानका लोग जो रहे जे कपारे पर गमछी बांध के चले आ खादी का कुर्ता आ 3 मीटर का गमछा लगा के चलो सा लूँ ऊ लूँ जो धोती पहने कई स्टाइल है पहन लगा ऊ लूँ भाषा के समझत हो कम जा। एगो और गाना बटे सुनल जाओ आई भर दोपहरिया एकदम बढ़िया गाना चली सुनल जाओ न लिहल जाए बड़ा तारीफों मिला तो प्रोग्राम कहो बड़ा ढेर सारा ईमेलो आएल बा पढ़ल जाई सभी पढ़ल जाई लेकिन वो गनवो सुन लिया जाओ तब तो तनी आनंद आवे। जैसे कि आमे का टिकोरा बटे आमे का चटनी है सतुआ बढ़िया दोपहरिया में एकदम खाइल जाओ और पच आराम करे।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से महकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: और अब भोजपुरी से थोड़ा सा टेस्ट बदलते हैं, आते हैं इस गाने की ओर। हम चल रहा है सुगंध माटी के 100.7 FM रेनबो पर। शिवम है आज आपके साथ।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: तो एक बार फिर से आपका स्वागत है, 10:34 और ये भागते हुए सेकंड। बहुत सारे ईमेल आ गए, जल्दी से ईमेल पे भी हम नजर दौड़ा लेते हैं। ब्रजेश सिंह इटहुआ दीपू कैसरगंज से इन्होंने हमें ईमेल किया है, लिखते हैं, राम राम शिवम भैया जी, और टाइम नहीं है फिर भी हम ईमेल कर रहे हैं, 6 बजे से लगातार कार्यक्रम सुन रहे हैं, और ये खेत में गन्ने में दवाई छिड़क रहे थे, उसे अब छोड़कर ये सुगंध माटी का आनंद लेने के लिए कुछ टाइम तक रुके हुए हैं। ब्रजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए। तेज बहादुर यादव सुगंध माटी का लिए ने लिखा है, शिवम भैया जी को मेरा नाम कैसन है, बहुत ही गजबो गजब कार्यक्रम चलता, बहुत सुंदर गीत सुनवा रहे हैं आप और फुल मस्ती हो रही है, बहुत शुक्रिया। मऊ गांव का नाम इनका, मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से, और अभी ये फिलहाल में हरियाणा से हमारा प्रोग्राम एप्लीकेशन के माध्यम से सुन रहे हैं। इंद्रपाल मिश्रा जी ग्राम अमृता महोली सीतापुर से, इंद्रपाल मिश्रा जी ने कार्यक्रम की बहुत बहुत तारीफ की है, बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए। विजयपाल यादव ललहुआ लखीमपुर खीरी से लिखते हैं, आदरणीय शिवम भाई नमस्ते, और बहुत गाने की जो है चॉइस बहुत अच्छी है, गन्ने की सिंचाई कर रहे हैं, आम के पेड़ के नीचे ये बैठे हुए हैं और सुगंध माटी का आनंद ले रहे हैं, बेहतरीन है। गाने का मतलब कि अगर आप खेतों में बैठ के ले रहे हैं तो वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो जाना, तो बिल्कुल एकदम लगे रहिए, सुनते रहिए और बहुत अच्छा लग रहा है। आपका ईमेल आ रहा है गुलफसा सिद्दीकी, हेलो गुड मॉर्निंग, आप प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रोग्राम की सारी तारीफें हैं और गाने की फरमाइशें हैं। राज कमल यादव का ईमेल पढ़ेंगे लेकिन कुछ देर बाद, क्योंकि गाना है बिल्कुल तैयार। 10:35 शिवा में आपके साथ सुगंध माटी में।

इंदु सोनाली को आप सुन रहे थे, और ये जो लास्ट में जो तान बजो जो छेड़ी है, ये भोजपुरी की एक बहुत पहचान है अलग से, कि बिल्कुल एकदम मतलब अभी अभी हमें एक पर्सनल फोन पे मैसेज आया है कि कहा चाहता है भैया कि हम के जाए करल अगला महीना में गावे, यही महीना में अजुए गावे भेजवा दे बका, मैं ट्रेन में भीड़ चल देते हम कहूँगा ने अब गावे पहुँचल जाओ। कहला का मतलब ये बा कि जब गाना आ भोजपुरी का स्वाद भाव जब तनी लागे ला कि हाँ अब गाँव से दूरे आ गए बन जा, कमाई धमाई के चक्कर में, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में जब गाँव से आदमी दूर हो जाला, तो गाँव को ये कुल बात सुन के याद तबे करे ले। तो जना कहता ना कैसन में कि लागत कि आज साझी का ट्रेन धरे के परी गाँव में जाहे के परी। फिलहाल अब भोजपुरी से थोड़ा सा चेंज करते हैं, आते हैं हरियाणवी सॉन्ग सुनते हैं, बढ़िया सा इंजॉय करिए। 10:46 शिवम है आज आपके साथ सुगंध माटी में।

और एक बार फिर से भोजपुरी में लौट रहे हैं वापस, क्योंकि भोजपुरी गानों का भी बहुत सारा स्टॉक बचा हुआ है। लोग कह रहे हैं भाई भोजपुरी गाना में सुना दीजिए। आंचल सेठ लिखती हैं, शिवम भैया जी नमस्ते, हमारे मन की मुराद पूरी कर दी, बहुत दिनों बाद इस प्रोग्राम में आए हैं और हमारे घर में सास ससुर जी और हमारे वो भी मतलब इनके हस्बैंड भी सुन रहे हैं, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। और आपके आने से प्रोग्राम में 400 चांद लग जाते हैं, ऐसा आंचल सेठ का कहना है। रोशनी रावत जी लिखती हैं कि राम राम भैया जी, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, बहुत ही तारीफ की है, इनके पास शब्द नहीं है। गांव बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, फिलहाल ये चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हैं। बबीता राव, नीलू शर्मा, गुलफशा दीदी सब लोगों के साथ में ये सुन रहे हैं और सभी लोग डांस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा इनको प्रोग्राम लग रहा है। विजय पाल यादव जी लिख रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ छोटी बच्ची है और वो डांस कर रही है, लग रहा है कि मतलब चोट लग जाएगी उसको, इसलिए पकड़े हुए हैं उसको। राजकमल यादव, सोनू परवाना मेल, आंचल सेठ, रोशनी रावत, मोनू भैया लिखते हैं कि शिवम भैया जी राम राम नमस्ते हैं, हमारी नानी की तरफ से आपका भी राम राम, तो हमारे तरफ से भी आपकी नानी को राम राम जरूर बोलिएगा। और बहुत दिन बाद ही प्रोग्राम में आज आया हो, नानी जी कहते हैं कि अंजू बहनी रत्ना बहनी जी को राम राम पहुंचा दिया, बिल्कुल पहुंच गया उनके पास, और आपकी भी तारीफ कर रही हैं, आपके गाने की भी तारीफ कर रही हैं और आप जो बोल रहे हैं उसकी भी तारीफ ये कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। अगला ईमेल गीता सेठ जी का है और पवन कुमार जी ने भी हमें ईमेल किया है, तो जल्दी से एक गाना सुनवाते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते प्रोग्राम, बेहतरीन सा गाना आपके लिए।

जी हाँ भैया, आप अपने गर्मी में ख्याल रखिए, जो कि अभी लू जो चल रही है, जो बिल्कुल एकदम भयंकर वाली गर्मी है, उसमें बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि पटना से वैद्य बुलाने की नौबत ना आए, कहीं से भी वैद्य बुलाने की नौबत ना आए। खुद का ध्यान रखिए और पानी पीते रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। और जाते जाते ये बलिया का बागी गीत जरूर सुनिए, क्योंकि ये एनर्जी से भर देगा।

नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। इस उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नमामि गंगे ने माँ गंगा की आरती उतारकर विकसित आत्मनिर्भर और आरोग्य भारत का आशीर्वाद मांगा। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश रेल कॉरपोरेशन ने लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए वसंत कुंज में मेट्रो डिपो निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये विश्व स्तरीय ग्रीन डिपो

होगा, जिसका निर्माण लगभग 127 करोड़ रुपए की लागत से होगा। यूपीएमआरसी के प्रबंधक निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि ये डिपो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर चलने वाली मेट्रो ट्रेनों के रखरखाव, निरीक्षण और ठहराव के लिए मुख्य केंद्र बनेगा। शाहजहांपुर में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने निपुण भारत मिशन के तहत जिले की प्रगति की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने बताया कि निपुण परीक्षा में शाहजहांपुर प्रदेश में 72वें स्थान से बढ़कर 11वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने अगस्त के में अगला निपुण एस्टिमेट टेस्ट आयोजित करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए समूह आधारित शिक्षण, पेयरिंग और अन्य नवाचारी शिक्षण पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया। इसी के साथ ही बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
0: दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से, आप सभी को फिर से एक गुड मॉर्निंग। 11:04 का वक्त और एक खास प्रोग्राम लेकर मैं हाजिर हो चुकी हूँ, आपकी दोस्त तरुश्री। दोस्तों चाय की एक चुस्की लेना, पसंदीदा पकवान का एक निवाला खाना, ये हमारे लिए बहुत आम और आसान बात है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिए पानी की एक घूंट गले से नीचे उतारना भी किसी जंग से कम नहीं है। जी हाँ, इसे चिकित्सा की भाषा में कहते हैं डिस्फेजिया, या फिर आप डिस्फेगिया भी कह सकते हैं, यानी कि निगलने में कठिनाई होना। और क्योंकि ये महीना जो है वो नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, तो आज इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक लक्षण है जो स्ट्रोक या पार्किंसंस या बढ़ती उम्र की वजह से गले और भोजन की नली में जो मांसपेशियां हैं उसमें कमज़ोर होने के कारण से होता है। लेकिन इसके बारे में विस्तृत से जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज स्टूडियो में हैं प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन जी, ENT स्पेशलिस्ट, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में।
3: नमस्कार मैम।
0: तो सर जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं डिस्फेजिया की, तो सबसे पहला प्रश्न जो दिमाग में आता है, आखिर डिस्फेजिया है क्या?
3: देखिए डिस्फेजिया एक मेडिकल टर्म है और आम जनता के लिए मैं बता दूं कि डिस्फेजिया का जो हिंदी में मतलब है वो ये है कि निगलने में परेशानी।
0: जी,
3: निगलने में कठिनाई को डिस्फेजिया कहा जाता है।
0: जी,
3: और यही चीज अगर निगलने में दर्द होने लगे तो उसको उडाइनोफेजिया कहते हैं।
0: जी,
3: तो डिस्फेजिया का मतलब वो सभी प्रकार के पेशेंट्स जिनको खाना निगलने में तकलीफ हो रही है तो उसको हम डिस्फेजिया कहते हैं।
0: तो सर जैसे कि आपने बताया कि निगलने की परेशानी को हम डिस्फेजिया कहते हैं, तो ये किसी रोग के कारण भी हो सकता है? जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि टॉन्सिल्स हमारे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इसमें भी निगलने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या ये एक कंडीशन उसी डिस्फेजिया में ही आता है या फिर ये कोई और कंडीशन है?
3: ये सब कुछ एक ही चीज है। उसके लिए मैं छोटी सी बात समझाना चाहूंगा।
0: जी,
3: खाना हम अपने मुंह से खाते हैं।
0: जी,
3: और वो खाने की नली पूरा गले से होते हुए खाने की नली से होते हुए पेट में जाता है।
0: जी,
3: तो यदि किसी को भी मुंह से लेके खाने की नली तक कोई भी तकलीफ है
0: जी,
3: और उसकी वजह से वो खाना नहीं खा पा रहा है, खाने में तकलीफ हो रही है, तो ये सारी कैटेगरी डिस्फेजिया के अंतर्गत ही आती है। ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ, कई प्रकार के लोग हैं जिनके मुंह में लार नहीं बन पाती।
0: हाँ जी अक्सर,
3: तो वो उनको भी खाना खाने में तकलीफ है।
0: जी,
3: तो ये भी डिस्फेजिया है।
0: जी,
3: कई लोग निगलने की कोशिश कर रहे हैं उस समय वो गटक नहीं पा रहे हैं तो वो भी डिस्फेजिया है। कई लोग गटकने की कोशिश कर रहे हैं परंतु गटकते समय बहुत तेज दर्द हो रहा है
0: जी,
3: तो वो भी डिस्फेजिया।

0: है
1: जी,
0: कई लोग गटक पा रहे हैं और फिर वो चीज मुंह से दोबारा बाहर आ जा रही है, हाँ। तो भी गटक नहीं पाए
1: जी,
0: तो वो भी डिस्फेजिया है। तो डिस्फेजिया एक प्रकार का लक्षण है जिसके अलग अलग प्रेजेंटेशन हो सकते हैं
1: जी। तो यानी कि ये इस पर्टिकुलर कंडीशन को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई मायनों में हम एक बड़ी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं अगर हम इसका सही समय पर रोकथाम कर लें। तो जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये विशेष फ़ोन इन कार्यक्रम है। आप फ़ोन लाइन्स ओपन हो चुकी हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं फ़ोन इन द्वारा भी, और साथ ही साथ मेल भी भेज सकते हैं, अपनी आप समस्या लिख के भेज सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। और साथ ही फ़ोन नंबर मैं दोहरा देती हूँ ताकि आप से जुड़ सकें, 0522-2238-845 और 0522-2238-852। ये दोनों फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, कृपया आप हमसे जुड़ें और अपनी कोई समस्या अगर आप डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं तो जरूर जानिए, क्योंकि ये डिस्फेजिया जो है, जैसा कि बताया कि ये कंडीशन है, किसी भी वजह से हो सकती है, तो इसका निवारण कैसे किया जाए और आसान उत्तर आपको जानने को मिलेंगे। और तब तक एक खूबसूरत सा गीत हो जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब की पसंद है कुछ पुराने गाने, तो हम क्यों ना हम भी इंजॉय करें, आप भी इंजॉय करें।

0: तो दोस्तों हमसे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम पीयूष है, मैं सीतापुर से बोल रहा हूँ।
0: जी पीयूष जी, अपनी समस्या बताइए, हमारे सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं और जैसे कि आप आज डिस्पेजिया के बारे में जानना चाह रहे थे, बताइए अपनी समस्या बताइए।
1: मैं जब खाना खाता हूँ तो खांसी आने लगती है तेज तेज।
0: जी अच्छा। तो डॉक्टर साहब इनको इनको हाँ। समस्या ऐसी है कि खांसी आ रही है।
2: पीयूष जी आपकी उम्र कितनी है?
1: मेरी उम्र है
2: 15 साल। ये बताइए कि खाने आपके जब किस प्रकार का खाना खाने में आपको परेशानी होती है?
1: जैसे दाल चावल है, रोटी सब्जी है, जो भी खाता हूँ खांसी आने लगती
2: है। खांसी आने लगती है, क्या ऐसा लगता है कि खाना थोड़ा सा सांस की नली में चला गया और धसका आ जाता है?
1: हाँ
2: ऐसा लगता है। तो ये बताइए कि आप एक दिन पानी की मात्रा सही प्रकार से लेते हैं शरीर में?
1: हाँ।
2: अच्छा, आपके मुंह में लार सही प्रकार से बनती है?
1: हाँ।
2: ठीक है, तो पीयूष जी देखिए, जो आप खाना खाते समय आपको खांसी आ जा रही है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो आप खाना खा रहे हैं वो थोड़ा सा छटक के सांस की नली की तरफ जाके इरिटेट कर रहा है, जिसके लिए आपको खांसी आ रही है। कृपया करके खाने को जल्दी जल्दी ना खाएं, मुंह में आराम से रखें, अच्छे से चबाएं और तब खाएं। और यदि आपको उसको दिक्कत हो रही है तो हल्के हल्के पानी के साथ लें, ताकि वो पानी के साथ आराम से पेट में चला जाए।
0: तो पीयूष जी आपकी समस्या का निवारण मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि आप पहले तो पानी का सेवन ठीक से करें और जो खाने में जो आपका तरीका है उसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। तो बहुत जल्दी जल्दी ना खाएं और ठीक से खाएं, चबा कर खाएं।
1: ठीक है, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।

0: तो जैसा कि पीयूष जी ने प्रश्न पूछा डॉक्टर साहब कि खाने में जो निगलने में जो समस्या हो रही है, आपने जैसा कि बताया लार नहीं बनती है, तो अगर लार नहीं बन रही है किसी भी वजह से तो इसका क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं इसके लिए?
1: सबसे पहले तो ये देखना है कि लार बनने के प्रति रीजंस क्या हैं। तो ऐसे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जिसमें लार बननी ही कम हो जाती है, तो वो तो एक तरफ से हमें अलग से इन्वेस्टिगेट करना ही चाहिए। बहुत लोगों में इसलिए भी कम बनती है कि लोग बाग अच्छे से विटामिन मिनरल्स नहीं लेते हैं, जूसेस मतलब फ्रूट्स नहीं खाते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, तो एक समय तक सब ठीक है, बट एक समय के बाद जब बॉडी में मिनरल्स और विटामिन की कमी हो जाती है तो जो लार बनती है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो लार बनाना कम कर देते हैं। तो ऐसे में मुंह सूखा रहता है और गटकने में दिक्कत होती है। जब आप फिर जो उसको गटकने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत सही से रैप अप नहीं हो पाता है, कभी कभी सांस की नली की तरफ चला जाता है और खांसी आने लगती है। तो दूसरा, कई लोगों को विटामिन B12 की कमी हो जाती है, उसकी वजह से जो गले की नसें हैं वो कमजोर हो जाती हैं, उसकी उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है। तो विटामिन्स का जो सेवन है, वो विटामिन सी हुआ, विटामिन B12 हुआ, जैसे नींबू पानी हुआ, ऑरेंजेस हुए, इन सब से विटामिन सी मिल सकता है। विटामिन B12 के लिए जो भी आपके सोर्सेज आपको यूज करने हैं वो यूज कर सकते हैं। तो ये दो विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपका ओरल कैविटी का जो फंक्शंस हैं वो सही से चलते रहे।
0: जी, तो जैसे आपने बताया विटामिन B12 के जो सोर्सेज हैं, ये क्या मतलब जर्नली मेडिसिन या विटामिन या गोलियों से ही मिलेगा या फिर इसके कोई और नेचुरल सोर्सेज हम
1: विटामिन B12? देखिए, साइनोकोबालामीन है और बेसिकली ये नॉर्मली इतना हमारे गट में ही प्रोड्यूस होता है विटामिन के साथ। नॉन वेजिटेरियंस को फिर भी सोर्सेज अवेलेबल रहते हैं कि नॉनवेज के रूप में उन्हें विटामिन B12 मिल जाता है, वेजिटेरियंस को नहीं मिलता है। तो मैं सबको ही सजेस्ट करूंगा कि आप आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज आप सप्लीमेंट्स ले लीजिए विटामिन B12 के, सो दैट आपके जो गले की नसें वगैरह हैं अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो रेक्टिफाई हो जाए।
0: अच्छा सर, जैसे आप बहुत नॉर्मल कंडीशन है कि कभी कभी हमें तकलीफ होती है, हमारे गले में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है खांसी जुकाम के टाइम या कभी भी इन्फेक्शन के दौरान गले में स्वेलिंग हो जाती है जिसके वजह से खाना गटकने में दिक्कत होती है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है कि ये अब जो कंडीशन है ना ये बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है, तो ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है?
1: देखिए दो चीज़ें बहुत ही, यदि खाना खाने में परेशानी हो रही है और आपका वेट लॉस हो रहा है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर वेट लॉस साथ में हो रहा है देन एनीथिंग कैन बी अ बिग, इट कैन बी अ बिग बिग प्रॉब्लम, गले में कैंसर हो सकता है।
0: जी,
1: साथ में आवाज बदल गई आपकी, खाने में दिक्कत हो रही है,

0: बहुत ही, यदि खाना खाने में परेशानी हो रही है और आपका वेट लॉस हो रहा है
1: जी,
0: वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है
1: जी।
0: अगर वेट लॉस साथ में हो रहा है देन एनीथिंग कैन बी अ बिग, इट कैन बी अ बिग बिग प्रॉब्लम। गले में कैंसर हो सकता है
1: जी,
0: साथ में आवाज बदल गई, आपकी खाने में दिक्कत हो रही है।
1: हाँ जी,
0: ये दोनों चीजें एक बहुत बड़ा सिन, मतलब एक
1: लक्षण है,
0: लक्षण है कि भाई
1: सतर्क रहने की जरूरत
0: है उसमें
1: जी।
0: कुछ लोगों को खाने में बहुत तकलीफ हो रही है, भाई खाना खा ही नहीं पा रहे हैं, गटकते ही नहीं पा रहे हैं।
1: हाँ।
0: तो एक बार उनकी खाने की नली की जांच जरूर करके देख लेना चाहिए कि भाई नली ठीक ठाक है कि नहीं है, क्या पता उसके अंदर कुछ डेवलप हो रहा है
1: जी।
0: तो यदि वेट लॉस में एक वर्ड है जो वेट लॉस है, अगर साथ में हो रहा है तो बहुत सतर्क रहिए
1: जी। तो डॉक्टर साहब से बात करने के लिए आप हमें मेल भी भेज सकते हैं श्रोताओं, आपको बताना चाहेंगे fmakashwani@gmail.com पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जैसा कि मैं देख रही हूँ मेल्स भी आ चुकी हैं, तो मैं एक मेल शामिल करती हूँ फिर एक हम म्यूज़िकल ब्रेक लेते हैं। ये लिखा है विजय पाल जी, हमें भेज रहे हैं लखीमपुर खीरी से। तो लिखते हैं कि मेरी समस्या ये है कि जब मैं पानी पीता हूँ तो कभी कभी फंदा सा बैठ जाता है और बड़ी दिक्कत में वो साफ हो पाता है, पर क्या ये कोई बीमारी है या फिर ऐसे ही है? जब भी पानी मैं घूट घूट कर पीता हूँ फिर भी ये तकलीफ होती है।
0: तो देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि एक बार मुंह का एग्जामिनेशन जरूरी है कि गले में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है
1: जी।
0: पहली चीज तो हमें ये देखना जरूरी है कि गले में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं, कोई इन्फ्लेमेशन है, तो यदि वो नहीं है उसके बावजूद उनको पानी पीने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसके चांसेस हैं कि खाने की नली में दिक्कत है।
1: Okay.
0: तो उसके लिए हमें एक बेरियम सॉल्व प्रकार की कुछ सिंपल जांचें होती हैं, वो करा के देख लें
1: जी।
0: यदि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसको सॉल्व कर लिया जाएगा
1: जी। तो मेरे ख्याल से जो भी समस्याएं हैं वो इसका धीरे धीरे निवारण होगा, लेकिन फिलहाल एक खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए।

0: सेल्स बढ़े हुए हैं, कोई इन्फ्लेमेशन है, तो यदि वो नहीं है उसके बावजूद उनको पानी पीने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसके चांसेस हैं कि खाने की नली में दिक्कत है.
1: Okay.
0: तो उसके लिए हमें एक बेरियम सॉल्व प्रकार की कुछ सिंपल सिंपल जांचें होती हैं, वो करा के देख लें
1: जी.
0: यदि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसको सॉल्व कर लिया जाएगा
1: जी. तो मेरे ख्याल से जो भी समस्याएं हैं वो इसका धीरे धीरे निवारण होगा, लेकिन फिलहाल एक खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए.

0: जी दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक बार फिर से इस प्रोग्राम में, विशेष कार्यक्रम जो आप सुन रहे हैं आज। और हमारे साथ डॉक्टर रजत जैन जी जुड़ चुके हैं, जो कि हमें डिस्फेजिया के बारे में बता रहे हैं। और समस्या जो है काफ़ी गंभीर रूप लेने से पहले अगर इसका समाधान कर लें तो आप सभी के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। और एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम बताइए। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: लखनऊ से बोल रहा हूँ।
0: जी, तो अपनी समस्या बताइए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं।
1: हमारी समस्या मैम ये है कि मतलब जहाँ से आखिरी नाक होता है किसी जिससे खाना खाते हैं
0: जी,
1: पहले वहाँ से जो है दर्द होता है जबान पे, उसके बाद जो है गले में दर्द होता है जो खाना निकलने में।
0: आपने कहा जबान में दर्द होता है?
1: जबान में जो आखिरी दांत होता है जहाँ से खाते हैं
0: जी,
1: उसके बाद वहाँ पे जबान भी कटी हुई है और लगता है कि जैसे चूना लग गया, उसके बाद आखिरी में जो खाना जाता है अंदर तो वो गले में फंसते हुए जाता है।
0: जी जी, डॉक्टर साहब
2: नमस्कार।
1: नमस्ते साहब।
2: सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किसी प्रकार का तंबाकू या फिर इस सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते?
0: आपको आवाज़ आ रही है श्याम जी? हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, कृपया उसका जवाब दीजिए।
2: हाँ श्याम जी, यदि आपको कोई परेशानी ना हो तो एक चीज़ बता सकते हैं?
1: सर ये आपकी आवाज़ आ रही है, आपको आ रही है, आप नहीं आ पा रही।
0: अच्छा।
2: हाँ,

0: आ रही है आपको मेरी आवाज?
1: अब आ रही सर।
0: हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी प्रकार के तंबाकू या फिर सिगरेट या इनसे इन चीज़ों का सेवन तो नहीं करते हैं?
1: हमको दिक्कत रहती है, सांस सांस भी फूलती है। और
2: जी श्याम जी, डॉक्टर साहब पूछना चाह रहे हैं कि आप किसी तरह का नशे का सेवन तो नहीं करते हैं, जैसे तंबाकू या किसी तरह की खैनी वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं?
1: कम करते हैं, पहले तो
2: अच्छा
1: करते हैं।
0: तो देखिए श्याम जी, जिस प्रकार की आप परेशानी बता रहे हैं, ऐसे में जो लोग तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं तो मुंह के अंदर की जो नसें होती हैं वो काफ़ी हद तक छिल जाती हैं। तो एक बार अपने नज़दीकी ENT सर्जन को दिखा लीजिए ताकि वो आपका मुंह का और गले का सही से निरीक्षण कर लें, और यदि कोई वहाँ पे परेशानी है तो उसका निवारण कर लें। क्योंकि जो लोग हाँ, तो वही है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। एक बार फिर भी जाकर वो एक बार इस चीज़ को फिजिकली देख लिया जाएगा तो उसका निवारण करना बहुत आसान हो जाएगा कि कहीं पे कोई कटा हुआ तो नहीं है, कहीं पे कुछ सूजन तो नहीं आ रही है। तो ये सब देख लिया जाए, उसके हिसाब से दवाई दे दी जाए तो आपको आराम मिल जाएगा। और एक मैं आपके लिए संदेश देना चाहता हूँ, आपके द्वारा मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ कि डिस्फेजिया के पीछे एक बहुत बड़ा कॉज किसी भी प्रकार के नशे के सेवन का भी है, जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला। तो सभी लोगों से निवेदन है कि इस चीज़ का त्याग करें।
2: जी
0: जी,
2: तो श्याम जी आप जल्द ही किसी डॉक्टर से संपर्क कीजिए ताकि आपके इस समस्या का निवारण हो सके। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो डिस्फेजिया है इसमें हम किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके हम बच सकते हैं, कि अपने जैसे विटामिन्स आपने बताया और हम किस तरह के प्रयोग करें जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा, हमारी जो नसें हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। तो एक प्रश्न मेरे मन में और आया है कि जैसे खान पान से हम इसको सही कर सकते हैं, अब जैसे घर में किसी को इस तरह की समस्या है तो उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आपने ये भी बताया था कि बढ़ती उम्र में भी ये समस्या काफ़ी ज़्यादा हद तक देखने को मिलती है, तो उनका ख्याल कैसे रखा जाए या किस तरह का खाना उन्हें दिया जाए जिससे उनको निगलने में आसानी हो?
0: तो सबसे पहले तो देखिए कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यदि आपके घर में कोई ऐसा एडल्ट है जिसको बाकी सब कुछ देख लिया गया है, परेशानी नहीं है, बस सिर्फ खाने पीने की नसें सूख गई हैं, तो वो दिक्कतें कर रही हैं। तो एक हम नसें मजबूत करने के लिए जो भी विटामिन B12 की जैसे कॉम्पोजिशन है वो ऐड करें
2: जी।
0: दूसरा, इनको आप जो लिक्विड फूड जैसे सेमी सॉलिड फूड्स ये देना स्टार्ट करें, जैसे कि आपने दाल का पानी दिया, चावल और दाल दिया देने के लिए
2: जी।
0: आप उनको ना सॉलिड फूड्स नहीं दीजिए, आप उनको ऐसे फूड्स दीजिए कि वो इजीली स्वॉलो कर सके,
2: सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड में।
0: हाँ, ऐसे फूड दीजिए ताकि उनका न्यूट्रिशन भी बना रहे और उनको परेशानी भी ना हो, क्योंकि इन लोगों में पूरा का पूरा जो खाने का निवाला है वो निगलने की क्षमता कमजोर हो जाती है
2: जी।
0: तो ये बचा हुआ जो सिंपल फूड है ये खाना आसान हो जाता है
2: जी।
0: दूसरा, इनको ये समझाना है कि खाना चबा के आराम से धीरे धीरे धीरे धीरे करके खाएं, ताकि जो मुंह के अंदर सलाइवा मिक्स हो जाए उससे
2: जी,
0: और वो इजीली निकल जाए
2: जी। जी, तो अच्छा सर, जैसे आपने बताया खाना क्या चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं, जैसे कभी कभी अक्सर जैसे इन्फेक्शन जब होता है हमें गले का, थ्रोट इन्फेक्शन होता है सीवियर, तो कुछ चीज़ें मना कर दी जाती है, जैसे ठंडा पानी मत पियो, ठंडी चीज़ें ना खाओ या स्पाइसी फूड नहीं खाओ, तो ऐसी क्या चीज़ है जो डिस्फेजिया को थोड़ा सा इस कंडीशन में,
0: कभी भी गले में इन्फेक्शन है, कोई भी एक्यूट कंडीशन है जैसे टॉन्सिलाइटिस ये सब कुछ चल रहा है, तो ऐसे में ठंडा और तीखा
2: जी
0: और खट्टा ये नहीं खाना चाहिए
2: जी।
0: हल्के हल्के दो चुटकी नमक गुनगुने पानी में डाल के गरारे करने चाहिए ताकि अंदर की सूजन कम हो जाए और जैसे इन्फेक्शन खत्म होगा ये सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा
2: जी। अब जैसे डिस्फेजिया और थ्रोट इन्फेक्शन की बात करते हैं तो किस तरह से ये अलग है?
0: देखिए, डिस्फेजिया एक सिम्टम है
2: जी,
0: जो इंसान ने बताया कि मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, उसके पीछे कारण हो सकता है कि थ्रोट में इन्फेक्शन
2: जी जी। आइए सर, एक कुछ मेल्स हमारे पास आई हैं, उनका समस्या का निवारण करना ज़रूरी है, आई गेस बहुत बार आ रही हैं। अरुण आनंद जी ने हमें मेल भेजा है, लिख रहे हैं कि ये कुछ मेरे ख्याल से टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, हम इनकी बाद में मेल ले लेते हैं। ब्रह्मेश सोनी जी हमें मेल कर रहे हैं और उन्होंने लिखा है कि बाराबंकी से ये मेल कर रहे हैं, और गर्म पानी पीने से भी जो गाल में या छाले होते हैं वो क्या समस्या, यही समस्या है।

0: या निगलने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या गर्म पानी पीने से क्या दिक्कत आती है, ऐसा कुछ है?
1: देखिए, छाले अगर किसी के भी मुंह में हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो नर्व एंडिंग्स हैं वो एक्सपोज्ड है,
0: जी
1: उसके ऊपर की जो परत हट गई है
0: हाँ।
1: और वो नर्व एंडिंग्स एक्सपोज्ड हैं। यदि छाले हैं और यदि आप गर्म ठंडा कुछ भी करेंगे तो वो जो नॉर्मल लगना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा लगेगा।
0: जी बिल्कुल।
1: तो वो डिस्फेजिया की तरह प्रेजेंट कर सकता है,
0: जी
1: मतलब उसकी वजह से आपको खाने में निगलने में दिक्कत हो सकती है।
0: हाँ। जी।
1: तो यूजुअली ठंडा परेशान नहीं करता, बहुत तेज गर्म परेशान करता, तीखा परेशान करता, खट्टा
0: हाँ।
1: परेशान करता
0: जी।
1: तो ऐसे में ठंडा अगर झाले हैं मुंह में तो ठंडा खाइए,
0: जी
1: आराम से खा पाएंगे
0: जी। और बहुत ठंडा भी नहीं खाना है।
1: हाँ, बहुत ठंडा भी नहीं खाना।
0: तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला हम बात कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर की चीजें हम करें तो सेवन करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा। महेंद्र दीपन जी हमसे जुड़े हैं और उनका सवाल ये है कि इनका एक दोस्त है जो जिसकी उम्र करीब 26-27 साल की है, वो मिर्ची वाला खाना नहीं खा पाता है। अगर उसे थोड़ी भी मिर्ची की सब्जी खिलाएं तो मुंह और आंखों से पानी आने लगता है। तो करीब 2-3 साल हो चुके हैं और वो गुटखा या कोई भी नशा नहीं करता है। अगर ये चीज डिस्फेजिया के लक्षण में आता है?
1: वो सभी प्रकार की चीज़ें जो खाना खाने में परेशानी करें,
0: हाँ जी,
1: वो सब डिस्फेजिया ही है
0: जी।
1: तो ये एग्जैक्टली डिस्फेजिया नहीं है, मगर हाँ, आप एक लेमैन के लिए डिस्फेजिया हो सकता है। तो यूजुअली ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको जब खाना खाते समय मुंह में जलन होती है,
0: हाँ जी,
1: तो इनके भी मुंह की जो नसें हैं वो एक्सपोज्ड हैं और मगर इनमें कोई छाले नहीं होते।
0: हाँ।
1: तो मुंह की चमड़ी के अंदर बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मोस्ट कॉमनली ये वो बच्चे हैं 26 साल के, जो उन्होंने लास्ट 5 साल से खूब जंक खाया है, कभी दूध नहीं पिया है। कोई मम्मी पापा बोल रहे हैं दूध पी लीजिए तो भाई दूध वूध नहीं पीते हैं,
0: कोल्ड ड्रिंक पियेंगे।
1: हाँ, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। ये वो बच्चे हैं जिनके अंदर 5 साल के अंदर यूजुअली डेफिशिएंसीज डेवलप हो गई हैं
0: जी।
1: तो इन बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले बाहर का तला भुना खट्टा जंक बर्गर सब कुछ छोड़ दीजिए, घर का खाना खाइए, हल्दी का दूध पीजिए सुबह शाम और 2 चुटकी नमक गुनगुने पानी में डाल के गरारे कीजिए, ताकि आपके अंदर के जो नसें दोबारा रीजनरेट कर जाएं
0: जी
1: और बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे आप
0: जी। तो आज मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें मुझे भी जानने को मिल रही है, मैं सच बता रही हूँ। मुझे डिस्फेजिया वर्ड नहीं पता था, बट जैसा कि आपने बताया अवेयरनेस मन चल रहा है, तो ये अवेयरनेस हम सबके लिए है और कितने भी लोग हमसे जितने भी जो हम लोग हमसे जुड़े हैं वो सब अब ये समझ रहे होंगे कि सच में एक छोटी से छोटी चीज़ भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल को वो एक बहुत बड़ा रूप ले ले, उससे पहले हमें सचेत होने की ज़रूरत है। एक प्यारा सा सॉन्ग हमारे सारे श्रोताओं के लिए, फिर हम वापस आते हैं।

0: आइए एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको क्या समस्या है। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ बताइए, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं ये भी बताइए।
1: मेरा नाम मैम शिवानी है, मैं बोल रही हूँ जिला लखीमपुर खीरी थाना प्रधान से, गांव का नाम है केहमारा।
0: जी बताइए शिवानी जी, समस्या बताइए, डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे साथ।
1: सर यही समस्या यही है कि मेरे पापा के शुगर है, उसकी दवाई बता सकते हो?
0: देखिए मैंने आपको बताया कि शुगर एक समस्या है, मगर आज जिस विषय पर बात हो रही है वो आपको पता है डिस्फेजिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये अगर शुगर की बात करी उन्होंने तो मुझे एक प्रश्न ज़रूर याद आया। शिवानी जी आप सुनिएगा ज़रूर, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर ये तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप ही के प्रश्न को थोड़ा सा मोल्ड करके पूछ रही हूँ कि डॉक्टर साहब ये बताइए शुगर के कारण कई सारी अन्य मतलब चीज़ें कंडीशन उपलब्ध हो जाती है हमारे शरीर में, तो जैसे डिस्फेजिया जो एक कारण है, जैसे शुगर में कभी कभी क्या होता है कि गर्मी के वजह से या ओवर कुछ हमने कुछ खा लिया ऐसा जिसके वजह से मुँह में छाले हो जाते हैं, तो क्या ये डिस्फेजिया का एक रूप है?
2: देखिए डायबिटीज़ एक प्रकार का मल्टी डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें से एक चीज़ होती है न्यूरोपैथी।
0: जी
2: न्यूरोपैथी का मतलब जो नसें होती हैं शरीर में जिसकी, चाहे वो कहीं की भी नसें हों, तो उसको डायबिटीज इफेक्ट करता है।
0: जी
2: तो अब वही नसें पूरे बॉडी के सारे कंट्रोल्स मैनेज कर रही हैं, तो डायबिटिक जो लॉन्ग डायबिटिक्स और अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं उसमें डिस्फेजिया हो सकता है बिकॉज ऑफ न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी की वजह से गले की नसें में कमजोरी आ सकती है और निगलने में परेशानी हो सकती है।
0: जी
2: तो और दूसरा जो कुछ खाने की वजह से छाले गर्मी में हो जाते हैं, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि ये मोस्टली वो लोग हैं जो आम खा रहे हैं।
0: हाँ हाँ।
2: और वो कार्बाइड के आम खा रहे हैं।
0: अच्छा
2: ठीक है, तो ये आप कोशिश कीजिए कि आप अगर ये आम ले भी रहे हैं तो उनको पहले घर ले जाएं, घर ले जाके उनको पानी में रखें और उनको एक बार ओवरनाइट ठंडे होने दीजिए और तब पके हुए आम खाइए। कच्चे आम खाएंगे तो आपके कार्बाइड्स की प्रॉब्लम, मतलब ये इस कार्बाइड की वजह से होता है।
0: जी तो ये एक केमिकल की वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है और हम ब्लेम कर रहे हैं कहीं ना कहीं शुगर को, है ना। तो ये जो कंडीशन, जैसे अभी मैंने, क्योंकि हाल ही में हमारे परिवार में ये चीज़ देखने को मिली, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि इस अगर इस तरह का फेज आता है तो आमतौर पर कितने दिन लगते हैं इसको सही होने में, और हम क्या तरीके से कुछ घरेलू कुछ ऐसा उपचार कर सकते हैं इसका कि जिससे इसमें राहत मिल सके
2: छालों के लिए?
0: जी
2: हाँ, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यदि अगर आपको किसी केमिकल इंड्यूस्ड मुंह में छाले पड़ गए तो पहला काम यह है कि आपको उस केमिकल से दूर होना है।
0: जी
2: पहला काम तो आपको ये करना है, तो उसी से आपका 50% काम हो गया। दूसरा आप हेल्दी फूड खाइए, हमारे मुंह की वैस्कुलर मतलब जो सप्लाई है वो बहुत ही अच्छी है, हीलिंग बहुत अच्छी होती है। तीसरा हम थोड़े से मल्टी विटामिन खाएंगे तो और तेजी से हील हो जाएगा।
0: जी
2: 5-7 दिन में सब ठीक हो जाता है।
0: जी तो मेरे ख्याल से कि इसमें सतर्कता ये बरतनी है कि किसी भी अगर हम फूड आइटम को ले रहे हैं तो उसमें केमिकल्स का ध्यान रखना, प्रिजर्वेटिव्स और इन सब का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक और प्रश्न सर मन में आया था कि जैसे स्ट्रोक या फिर न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो इसमें डिस्फेजिया का क्या संबंध है?
2: अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम हमारे शरीर में जो खाने की प्रक्रिया है
0: जी
2: वो मुंह से शुरू होती है, मुंह में हम चबाते हैं
0: जी,
2: फिर हम जीभ के रास्ते उसे पीछे की तरफ अपने गले में पुश करते हैं, फिर हमारा गला कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे खाने की नली में पुश कर देता है और खाने की नली से रास्ता पेट में पहुंच जाता है।
0: जी
2: ये सब कुछ नसों से ही कंट्रोल्ड है।
0: जी
2: यदि ब्रेन में कोई स्ट्रोक हुआ, मतलब कि कहीं ब्रेन में हेमरेज हो गया, तो अल्टीमेटली हमारी जो नसें हैं जो ब्रेन से निकल रही हैं वो उनकी सप्लाई खत्म हो गई, तो अल्टीमेटली हमारे गले की सप्लाई खत्म हो गई, तो हमें फिर डिस्फेजिया होगा ही होगा।
0: जी
2: तो जितने भी स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं इन सब में डिस्फेजिया होता है।
0: ओके तो इसका जैसे निवारण क्या कर सकते हैं, जो इसमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए?
2: कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहला काम ये होता है कि हम मुंह से कुछ ना ही दें तो अच्छा है, वरना वो खाने की नली में ना जाके सांस की नली में चला जाएगा और उसकी वो खाना, उसको एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं
0: जी,
2: और उससे वो एक जानलेवा सिचुएशन डेवलप हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें स्ट्रोक होता है हम एक नाक के रास्ते नली डाल देते हैं
0: जी,
2: जो पेट से जुड़ जाती है और हम उसके थ्रू खाना देते रहते हैं ताकि लोगों का न्यूट्रिशन मेंटेन रहे जब तक ये

0: और चेक करते रहते हैं कि सिचुएशन कैसी चल रही है, उनको पहले पानी पिला के देखते हैं, धीरे धीरे पानी पिलाते हैं, फिर कभी केला खिलाते हैं, वो एक समय के साथ साथ खिलाते हैं, और जब हमें लगता है कि अब सब ठीक है तो नली बाहर आ जाती है।
1: जी जी, तो श्रोताओं जैसे कि आपको बताते चलें कि ये एक विशेष कार्यक्रम है जो कि हम डिसफेजिया अवेयरनेस के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं, और इसमें हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन, ENT स्पेशलिस्ट, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से। आप अपनी समस्या हम तक पहुँचा सकते हैं और इसका निवारण पा सकते हैं। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप हमें मेल भी भेज सकते हैं, और साथ ही साथ हमसे फ़ोन द्वारा भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 0522-2238-852, 0522-2238-825। तो कृपया इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और चलिए ले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और फिर वापस आते हैं एक खूबसूरत गाने के साथ।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: सात हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।

0: मुस्कुराहटों पे।
1: जी हाँ, ये जो मुस्कुराहट है ना वो और खिल जाती है जब हमारी कोई प्रश्न का उत्तर दे देता है, हमारी कोई संकट का निवारण कर देता है, है ना। तो इसी बात को और इसी जो गाना है ना, इसको सार्थक करने के लिए हमसे जो डॉक्टर जुड़े हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन जी, जो काफ़ी सारी समस्याओं का हल अब तक बता चुके हैं, तो एक और कॉलर हमसे जुड़ चुकी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ बताइए, अपना नाम बताइए, अपनी समस्या और कहाँ से आप कॉल कर रही हैं।
2: मैं प्रीति कुमारी बोल रही हूँ, जिला रायबरेली।
1: जी प्रीति बताइए।
2: कशदपुर धनापुर से।
1: जी प्रीति अपनी समस्या बताइए।
2: मेरा ये प्रश्न है
1: जी,
2: कि जैसे मेरी मम्मी है, उनको कोई मिर्च मसाला वाला खाना दिया जाता है ना, तो वो खा नहीं पाती हैं।
1: जी तो ये पहले
2: की डिस्पेप्सिया की मतलब समस्या है कोई?
1: हाँ डॉक्टर साहब।
3: नमस्कार प्रीति जी।
2: हाँ
3: प्रीति जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये एग्जैक्टली डिस्फेजिया नहीं है, परंतु हाँ लेमैन के लिए बिल्कुल डिस्फेजिया के लिए ही है। और दूसरी बात, ये आपकी मदर जो हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो मुंह के अंदर जो कई प्रकार की नसें होती हैं, तो उसमें कई बीमारियाँ आ जाती हैं, जैसे लाइकन प्लैनस हो सकता है, मुँह के अंदर लार बनने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई और छोटा मोटा अल्सर हो। तो इन सब चीज़ों की वजह से जब आप खाना खाते हैं तो वो मुँह में बहुत लगता है, तो ऐसे में इंसान
2: जो उनके जीभ में थोड़ा लालपन से महसूस होता है ना।
3: जी, जी जी जी जी हाँ, तो मैं उसी बारे में बता रहा हूँ कि जो उनके जीभ में लालपन है तो वो हो सकता है कि सूजन की वजह से हो, तो उसके लिए आप किसी के निकट ईएनटी सर्जन को दिखा लीजिए कि वो कोई गंभीर अगर समस्या नहीं है तो वो सिंपल आपको दवाइयाँ लिख के दे देंगे, और उस एक मलहम लिख के देंगे और एक दो मल्टीविटामिन लिख के देंगे, जो आप ले लीजिए, उनसे उनको काफ़ी आराम मिल जाएगा।
2: ओके थैंक यू सर जी।
1: तो ये जो कॉलर, जैसे कि उन्होंने प्रश्न पूछा था कि अच्छा बढ़ती उम्र के साथ ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है सर, और साथ ही साथ जैसे और भी जो बीमारियाँ हैं, क्या और भी बीमारियाँ ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से हमें डिस्फेजिया हो सकता है?
3: मल्टीपल प्रॉब्लम, मैंने आपसे भी बताया कि डिस्फेजिया का मतलब है डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग।
1: जी
3: मतलब खाने पीने की, मतलब खाते समय परेशानी होना। तो कोई भी परेशानी जो मुंह से शुरू होके गले के रास्ते होते हुए पेट की नली से लेके पेट तक जाती है,
1: जी
3: इसमें से सौयो प्रकार की बीमारियां हैं।
1: हाँ।
3: जिसकी वजह से डिस्फेजिया हो सकता है
1: जी। और एक जो प्रश्न आपने स्वॉलोइंग की बात करी, तो मेरे मन में ऐसा प्रश्न आया, आजकल के जो बच्चे हैं उनको मैंने देखा है, ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनमें क्या टीवी देख के खाने की आदत हो गई है, और उसके वजह से ना वो ठीक से खाना चबाते नहीं हैं, दे स्टार्टेड जस्ट सॉलो द फूड। तो इस तरह में कैसे जो पेरेंट्स हैं वो कैसे अपने बच्चों को बता सकते हैं कि धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे चाहे जितने भी इंस्ट्रक्ट करो कि चबा के खाओ, धीरे धीरे खाओ, बट दे यूज टू डू इट देमसेल्व्स, कि हम उनको जैसा पसंद है वो तुरंत तुरंत फटाफट खाते हैं। तो क्या इसकी कोई थेरेपी भी है कि जिससे इसका निवारण हो सके?
3: एक तो इसकी ऑफिशियल बिहेवियरल थेरेपीज होती ही हैं। मैं अपने घर में क्या करता हूँ बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे मान लीजिए खाना खिलाने बैठे हैं बच्चे को, और मैं यूजुअली टीवी नहीं दिखाता हूँ, बट सपोजिंगली कहीं जाना है और तो जल्दी जल्दी खिलाना है।
1: हाँ।
3: तो हमने टीवी चला दिया।
1: हाँ।
3: तो ऐसे में बच्चे जल्दी जल्दी खा लेते हैं, मतलब जल्दी से मतलब कि आराम से खा लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जैसे ही उनके मुँह में कुछ डाला तो मैं पॉज कर देता हूँ।
1: हाँ, कि पहले चबाओ
3: कि पहले चबाओ
1: जी।

0: चबाओगे नहीं तो मैं चालू नहीं करूँगा. तो दिस इज़ आई थिंक ए वेरी इजी वे जो कि, और उससे क्या है कि वो जो टीवी का डिस्ट्रैक्शन है वो भी खत्म हो गया ना, उनको एक स्टिमुलस मिल गया कि भाई जल्दी से चबा लो,
1: हाँ.
0: जल्दी से खा लो, और ये अगला तो जैसे ही वो अपना मुंह अगस्त खत्म करते हैं चबा के, मैं ऑन करता हूँ, 5 सेकंड बाद फिर से उनको मुंह डालते हैं. तो मैं ऐसे कर करके उनको स्टिमुलस देखता हूँ, सम पॉजिटिव, एनी काइंड ऑफ ए पॉजिटिव स्टिमुलस. जैसे अगर कोई बाहर खेलने गया हुआ है बच्चा और उसको बॉल चाहिए, बॉल तब मिलेगी, मुंह का चबा लो.
1: हाँ.
0: तो मेरे को स्लाइड करनी है, चलो मुंह का चबा लो तब.
1: हाँ.
0: तो दिस इज, दीज आर पॉजिटिव स्टिमुलस जो हम बच्चों को उसके प्रति ट्रेन कर सकते हैं.
1: जी, मतलब उनको कुछ ना कुछ हम पॉजिटिव देते रहें और एक तरह से उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि फटाफट अगर अपना काम करना है तो आप एक कंडीशन रख देते हैं कि डू दिस. तो ये एक तरह से हम थेरेपी कर रहे हैं बच्चों
0: की. दिस इज थेरेपी, दिस इज थेरेपी. तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट.
1: जी, अब जैसे हमने बच्चों की बात करी, अब ये हम जैसे बढ़ती उम्र या बड़े बुजुर्गों की बात करें, तो जैसे धीरे धीरे तो वो ऑब्वियसली वो खाने लगते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी थेरेपी या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे उनको इस डिस्फेजिया कंडीशन से राहत मिल सके?
0: तो स्वॉलोइंग थेरेपीज आज की डेट में अवेलेबल है, जिस आजकल ऑफिशियली लोग डिग्री करते हैं स्वॉलो थेरेपिस्ट की.
1: जी,
0: प्रॉपर BSc MSc की डिग्रीज होती हैं स्वॉलो थेरेपिस्ट की.
1: जी,
0: वो आपको सिखाते हैं कि जीभ के मूवमेंट्स कैसे करने चाहिए, गालों के मूवमेंट्स कैसे करने चाहिए, इन मसल्स की एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए.
1: जी,
0: तो ताकि ये स्पेशली उन लोगों में बहुत हेल्पफुल है जैसे स्ट्रोक के पेशेंट, आपने बात की थी अभी.
1: जी,
0: तो ये इन ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, मुंह के कैंसर के पेशेंट जिनकी ऑपरेशन हो चुके हैं.
1: जी,
0: अब आधा हिस्सा गायब हो चुका है और आधा हिस्सा बचा है जिससे हम खा नहीं पा रहे.
1: जी,
0: तो ये थेरेपिस्ट उन सब सिचुएशन में बहुत हेल्पफुल है.
1: जी,
0: जिसमें कि वो प्रॉपरली जितना चीज फंक्शनल है उसके हिसाब से आपको ट्रेन कर रहे हैं.
1: जी,
0: कि आप ऐसे खाइए तो ऐसे हो जाएगा.
1: जी,
0: और आप चाहे कितनी भी कर लीजिए, कितने भी नाक में नली डाल के खाना खिला लीजिए, जितना बेनिफिशियल खाना नॉर्मल नेचुरल रूट से है.
1: जी,
0: किसी रूट से नहीं.
1: जी, बिल्कुल सही कहा. और इस विषय पे और भी बात करेंगे, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं. और ये बड़ा ही खूबसूरत सा गाना सर आपके लिए.

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: स्वागत है सर आपका फिर से इस विशेष कार्यक्रम में। सभी श्रोताओं का मैं फिर से स्वागत करती हूं और 11:52 का वक्त हो रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन जी, ENT स्पेशलिस्ट KGMU से, और उन्होंने जिस तरह से डिस्फेजिया के बारे में बताया सर आपने, तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें कई सारी भ्रांतियों से छुटकारा मिला होगा कि इस तरह की समस्या को किस तरह से बचाया जा सकता है, पहली चीज़ तो ये। और साथ ही साथ कि कोई भी छोटी समस्या भी है उसको नज़रअंदाज ना करें, और जैसे गंभीर बीमारी है जैसे शुगर है, BP है, या फिर स्ट्रोक, और आपने न्यूरोलॉजिकल इसके बारे में बताया कि इनमें भी किस तरह से ये समस्या उत्पन्न हो सकती है और उसके क्या निवारण है। तो जैसे कि आज सर हम आज क्या पूरा महीना है ये अवेयरनेस के लिए, डिस्फेजिया अवेयरनेस का मंथ चल रहा है, तो इस अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको ये बताना चाहूँ, जिस किसी को भी यदि ये लक्षण हैं, जैसे कि मुंह में जल खाना रखने पर जलन होती है, निगलने में परेशानी हो रही है, या फिर कुछ खाते हैं तो मुंह से लार आना शुरू हो जाती है, ये जितनी भी प्रकार की भिन्न खाना खाते समय गुटक गुटका नहीं जाता
0: जी,
1: और यदि इन सब चीज़ों के साथ वेट लॉस हो रहा है या फिर आवाज में बदलाव आ रहे हैं
0: जी,
1: तो इस चीज को गंभीरता से लीजिए और जरूर अपने निकट ENT सर्जन को जाके दिखाइए
0: जी,
1: पहला पॉइंट। दूसरा, यदि आपके मुंह में कोई प्रकार का अल्स छाला है जो इलाज के बावजूद भी महीने भर से नहीं ठीक हो रहा है और उसमें खाना लग रहा है जिसकी वजह से आप नहीं खा पा रहे हैं, उसको भी तुरंत जाके अपने ENT सर्जन को दिखाइए, क्योंकि ये एक बड़ी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं
0: जी। अच्छा सर, मैं एक दो मेल ज़रूर शामिल करना चाहूँगी क्योंकि श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं। मोनू सेठ जी का मेल आया है कि जीभ में सफ़ेदपन और गाल में मुंह के अंदर बगल में कालापन अगर हो जाता है तो क्या ये लक्षण है इसके, डिस्फेजिया के?
1: ये लक्षण नहीं है
0: जी,
1: एक प्रेजेंट, ये जो आपने मुझे सिचुएशन बताई, ये जो जीभ पे सफ़ेदी है, ये हो सकता है कि ये ल्यूकोप्लेकिया हो जो कि एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन जिसे कहते हैं, कैंसर नहीं है परंतु कैंसर में कन्वर्ट होने की क्षमता रखती है
0: जी।
1: तो यदि वो ल्यूकोप्लेकिया से सफर कर रहे हैं तो अपने निकट ENT सर्जन को दिखाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, और यदि वो प्रॉपरली ट्रीट करेंगे तो वो बीमारी खत्म हो जाएगी और वो एक गंभीर बीमारी का रूप नहीं लेगी
0: जी। एक और मेल आई है हमारे पास शिव प्रकाश जी ने, ये लिखते हैं कि ये तो फतेहपुर से हैं लेकिन ये दिल्ली में काम करते हैं, और काम करते करते शाम को जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो जब खाने बैठते हैं तो ये खाना खा नहीं पाते हैं, और इनका मतलब इनको शायद निगलने में दिक्कत होती है और फिर उसके बाद उनका मन नहीं करता खाना खाने का।
1: देखिए, अब खाना खाने का मन नहीं करना एक अलग चीज़ है
0: जी,
1: परंतु खाना नहीं खा पाना एक अलग चीज़ है
0: जी।
1: यदि ये खाना नहीं खा पा रहे हैं तो उस खाने के पीछे खाने का स्वाद अच्छा नहीं है, घर से दूर है कि लोगों की याद आ रही है,
0: ये अकेला, समस्या हो सकती है,
1: अकेलापन है
0: जी,
1: ये भी एक चीज हो सकती है
0: जी।
1: उसके अलावा मुंह में कोई छाले वगैरह हो, धूम्रपान करते हो तो उसकी वजह से हमारी जो हमारी एपेटाइट है वो कम हो जाती है
0: जी।
1: यदि कोई ऐसी चीज का सेवन कर रहे हो जो एपेटाइट कम कर रही हो तो ये विभिन्न प्रकार की चीजें इनके साथ है
0: जी।
1: तो यदि ऐसा कुछ है तो एक बार गंभीरता से समझें अपने आप को, सबसे पहले तो ये समझें कि इन्हें

0: एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम हो रही है
1: जी।
0: खाना खाने में परेशानी है कि वो मानसिक रूप से उसके तैयार नहीं है कि मैं खाना खाऊं। मेरे सामने प्लेट तो लाके रख दी गई है, अब मेरा मन ही नहीं कर रहा है तो मैं कैसे खा लूंगा।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये डिस्फेजिया जो पर्टिकुलर एक टर्म हमें आज सीखने को मिला, वो एक कंडीशन है बेसिकली, और वो किसी भी कारण से हो सकती है। तो हमारे श्रोताओं को सतर्क रहने की ज़रूरत है, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं और आप भी जिनसे जुड़े हैं, कृपया उन्हें बताएं कि ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आप जैसा बताया कि स्पेशली जो आपने पॉइंट आउट किया सर कि वेट लॉस इट्स अ बिग थिंग, और अगर ये आपको देखने को मिल रहा है किसी में तो कृपया आप इसको गंभीरता से लें और इसका तुरंत उपचार कराएं, किसी भी ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं, नज़दीकी अस्पताल जाएं, इस पर कंसल्ट करें, तभी इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी सर, आप हमसे जुड़े और इतनी सारी समस्याओं का आपने हल बताया, और जितने भी लोग हमसे जुड़े फ़ोन द्वारा या फिर ईमेल द्वारा, तो बहुत सारी बहुत ही आसानी से आपने इन समस्याओं का हल किया है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू।
1: तो श्रोताओं, जैसे कि आपने ये विशेष कार्यक्रम सुना, डिस्फेजिया अवेयरनेस मंथ पर ये विशेष कार्यक्रम FM रेनबो आपके लिए लेकर आया था, जिसमें हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन, ENT स्पेशलिस्ट KGMU से, और इन्होंने डिस्फेजिया के बारे में बहुत सारी विस्तृत जानकारी दी, और आपको ये समझ में आ गया होगा अब तक कि ये एक कंडीशन है जिसको आप अगर सतर्कता से बरतेंगे तो आप गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। और 11:57 का वक्त, इस खूबसूरत से गाने के साथ मैं प्रोग्राम वाइंड अप करती हूं, और मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फातिमा रहेंगी आपके साथ, तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो।

बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गौरव की पुनर्स्थापना की और देश को गुलामी की मानसिकता से आज़ाद कराया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, दूरदृष्टि और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में देश की जनता का अटूट विश्वास नजर आता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने साहसिक फैसले लेकर सुधार किए हैं और अभूतपूर्व गति और व्यापकता के साथ कई पहल लागू की हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में फतेहपुर में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के मार्गदर्शन में नगर पालिका व अन्य सभी निकायों और ग्राम पंचायतों में सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों से अपील की कि अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखें, कूड़े को सड़क पर ना फेंकें और शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग दें। प्रदेश सरकार 3 तलाक और एसिड अटैक जैसे मामलों से पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से लाभान्वित करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही निराश्रित महिलाओं को भी इन सभी योजनाओं का लाभ देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग पीड़ित और निराश्रित महिलाओं का विस्तृत डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। शासन स्तर पर इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश और शासन आदेश तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: किया कि कितने जजमेंटल हो जाते हैं हम ना लोगों को देख करके। लेकिन फिर ये भी रियलाइजेशन आया कि हाँ, हो सकता हो कोई वजह हो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जजमेंटल होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। जजमेंटल होने से बेहतर है कि आप सिचुएशन को समझें और उस सिचुएशन में ख़ुद को रख के देखें, तब आपको पता चलेगा एम्पथाइज़ करना किसे कहते हैं। तो बस इसी नोट पर आगाज़ करेंगे इस प्रोग्राम का एक बेहतरीन से ट्रैक के साथ, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: सात रंग का इंद्रधनुष है,
4: सात सुरों की सरगम है,
5: सात जन्म है सात समंदर,
3: साथ हमारा हरदम है,
5: जिंदगी के सतरंगी रंग
4: FM रेनबो के संग।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

12:13 का वक्त हो गया है और बता दूं भाई, रास्ते में मतलब स्टूडियो आते वक्त मैंने देखा कि बहुत सारी जगहों पर आम बिक रहे थे जी, क्या ही बताऊं बस। तो फिलहाल मार्केट में आम अवेलेबल तो है, लेकिन हाँ अभी माना जा रहा है कि अभी जो अपनी दशहरी है ना, जो डाल की पकी हुई दशहरी होती है, वो अभी मार्केट में नहीं आई है। लेकिन फिर भी आम देख करके ही ना आंखों को इतना सुकून मिलता है कि हम आपको क्या ही बताएं। गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फल है आम। इसे आम और ख़ास सभी लोग बड़े शौक से खाते हैं। जी हाँ, आम और ख़ास सभी लोग बड़े शौक से खाते हैं। ये हमारी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में काफ़ी मददगार भी साबित होता है, क्योंकि भाई देखिए मौसमी फल है और कुदरत का निज़ाम कुछ ऐसा है कि जो मौसमी फल होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन अगर इस वक्त हम बात करें, जैसे मैंने आज आते वक्त देखा तो बाज़ार में कई वैरायटी के आमों की भरमार है। स्थानीय बागीचों के साथ साथ बाहरी राज्यों से आए आम भी मार्केट्स में और मंडियों में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। हालांकि आम की इस ख़रीदारी में थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी सेहत पर थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। तो लापरवाही सेहत पर भारी ना पड़े इसके लिए क्या करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ कैसे पहचाने कि ये आम बिल्कुल वर्थ है हमारे लिए। दरअसल बाजार में मिलने वाले ज्यादातर आमों को

तो लापरवाही सेहत पर भारी ना पड़े इसके लिए क्या करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ कैसे पहचाने कि ये आम बिल्कुल वर्थ है हमारे लिए। दरअसल बाजार में मिलने वाले ज्यादातर आमों को समय से पहले तोड़कर केमिकल्स में पकाया जा रहा है। बाजार में केमिकल से पकाए जा रहे आमों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, जिससे पेट की समस्याएं और तमाम जटिल बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इन केमिकल युक्त आमों की पहचान बड़ी आसानी से की जा सकती है, वो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि ये जो केमिकल युक्त आम है ना, इनका सेवन करने से पेट में तेज जलन, गैस, उल्टी और डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। साथ ही अगर कृत्रिम रूप से पकाए गए ये आम शुगर पेशेंट्स यानी जो डायबिटिक्स हैं, अगर वो ले लेते हैं तो उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होता है। जी हाँ, ऑल ऑफ अ सडन उनके शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, या फिर कई कंडीशंस में कंडीशंस बहुत वर्सन अप हो जाती हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बेहद नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके लगातार सेवन से न सिर्फ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है, बल्कि भविष्य में काफ़ी सारी जटिल बीमारियाँ जो होने का जो उनको इस तरीके की जटिल बीमारियाँ होने का जो ख़तरा है ना, वो कई गुना बढ़ जाता है। अब कैसे हम पहचान कर पाएँ और किस तरीके से ख़ुद को बचा पाएँ कि कौन सा आम हमें खाना है, कौन सा नहीं खाना है, इसके बारे में भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक तो नहीं है, ब्रेक है अब हमारा म्यूज़िकल। बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक मैंने क्यों किया हुआ है, तो इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे और उसके बाद आपसे कुछ बातें और हम ज़रूर करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

12:25 का वक्त और दावती इश्क फिल्म का ये जो ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया, इस गाने की पिक्चराइजेशन में लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि आदित्य रॉय कपूर एक चपाती को पूरा हवा में स्वर्ल करते हुए वापस अपने उंगलियों पर जब लाते हैं ना, तो माइंड ब्लोइंग सीन है। हम लोग भी कोशिश करते हैं ना कि घरों में कुछ ऐसा कर पाए, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि भैया इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती है। फिलहाल दावते इश्क का गाना तो सुन लिया आपने, लेकिन दावते आम, जी ये कोई आम दावत की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है आम की दावत, जी मैंगो की दावत के बारे में बात हो रही है। वक्त हो चुका है जब हम बेहतरीन आमों का मज़ा उठाएंगे अगले एक से सवा महीने तक, और कैसे पहचान करें, कैसे हम खुद घर पर पका सकते हैं इन आमों को बगैर इस मलामत के कि कहीं हम केमिकल युक्त आम तो नहीं खा रहे हैं, इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू हम करना चाह रहे हैं। भाई जो आम केमिकल से पकाए जाते हैं ना, वो अक्सर पूरी तरह पीले दिखने के बावजूद अंदर से कुछ कच्चे होते हैं और उनका टेस्ट भी बेहतरीन नहीं होता, बेस्वाद से लगते हैं और उनकी जो स्किन है ना वो भी थोड़ी सिकुड़ी सी लगती है। अब जब आज मुझे ये प्रोग्राम करना था ना, तब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जब बचपने में हम अपने ननिहाल जाते थे ना, तो क्या होता था, एक बड़ी सी बाल्टी होती थी, जितना भी आम आता था उसमें डाल दिया जाता था और वो सब आम नीचे बैठ जाता था और कई घंटे तक, 2.5 घंटे 3 घंटे तक वो उसमें पड़ा रहता था। तब हम सोचते थे क्यों ऐसा होता है, हम लोग को क्यों इतनी देर वेट करना पड़ता है। तो आज जब ये प्रोग्राम करना था ना, तब मुझे मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और ये रियलाइजेशन मेरे सामने आया कि भाई सबसे बड़ी पहचान ये कि केमिकल से पका हुआ आम है या नहीं है, ये आप कर सकते हैं आम को पानी में डुबोकर। जी पानी में डालने पर जो केमिकल से पके आम होते हैं ना, वो डूबते नहीं हैं बल्कि ऊपर तैरने लगते हैं, और इसके बिल्कुल उलट पेड़ का पका प्राकृतिक आम पानी में डालते ही नीचे बैठ जाता है। बाजार में आम खरीदने के फौरन बाद उसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। आम को घर लाने के बाद पहले साफ पानी से अच्छी तरह से धोएं और फिर कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए, भूल जाइए। हालांकि आम लाने के बाद भूला नहीं जाता है, लेकिन फिर भी भूलना पड़ेगा। ऐसा करने से आम की जो प्राकृतिक गर्मी होती है, जो टॉक्सिटी होती है ना, और बाहरी केमिकल का जो असर होता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है और वो ये है कि भाई अगर हम बाहर के पके हुए आम, केमिकल से इनफैक्ट पके हुए आम ना खाना चाहें और घर पे ही पकाना चाहें आम, तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप फलों के राजा आम के शौकीन हैं लेकिन केमिकल्स आपको डराते हैं, तो आप सबसे पहले आम की एक पेटी ले आइए, जितना भी आम आपको लाना है, कच्चे आम ले आइए, उसको साफ पानी से धोकर सुखा लें, फिर अखबार में एक एक आम अलग से अच्छी तरह से लपेटकर सामान्य टेम्परेचर पर किसी भी गत्ते के डिब्बे, बर्तन या जार में रख दीजिए। 3 से 5 दिन में कच्चा आम पककर तैयार हो जाएगा, वो भी केमिकल का इस्तेमाल किए बगैर। जी हाँ, ध्यान रहे कि कमरे का तापमान कम से कम 20 से 22 डिग्री होना चाहिए। एसी वाले कमरे में इन्हें बिल्कुल भी ना रखिए। हालांकि इस प्रोसेस में पूरी पेटी में, यानी कि अगर आप बहुत सारे आम इकट्ठा करके रखते हैं ना, पेटी ना भी ले, अगर किसी गत्ते में आप रख रहे हैं, तो उसमें 2, 3, 4 आम ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है जो अच्छे आम होंगे वो आपको नेचुरली पके हुए मिलेंगे। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम सब के लिए बड़े फ़ायदेमंद होती हैं, और हम तो पर्सनली करते हैं। हमने सोचा था कि कभी अगर ऐसा मौका लगा कि हमें जून के महीने में शत्रुपा में जायके को लेना पड़ा ना, तो फिर हम इसका डिस्कशन ज़रूर करेंगे। तो बस इसी नोट पर एक और बेहतरीन सा ट्रैक आप तक पहुँचाएंगे। आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

12 बजकर 43 मिनट का वक्त और आम के जो शौकीन होते हैं ना, आम के मतलब क्या ही बताएं आपको, जिन्हें आम बहुत पसंद होता है ना, वो भी लुटपुट जाते हैं अगर टाइमली आम मार्केट में नहीं आता है ना, और वो मतलब जो उन्हें पसंद होता है अगर टाइमली नहीं आता है, बड़ा निराश हो जाते हैं भाई उनका तो लगता है कि बहुत डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। और आम के शौकीन लोगों की आपको क्या ही बात बताऊं, कुछ लोग मैं ऐसे भी जानती हूँ जिन्होंने क्या करते हैं, आम के साथ रोटी खा लेते हैं जी, आम के साथ वो पराठा खा लेते हैं, मतलब पके हुए आम को वो एज अ फुल मील ट्रीट करते हैं जी। तो भैया ऊपर वाले से दुआ है जल्दी से जल्दी बारिश हो जाए, और फिलहाल तो दशहरी की बड़ा बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है मार्केट में, डाल की पकी हुई दशहरी का, तो जल्दी से आ जाए मार्केट में बस। उसके बाद क्या है, जो लोग रोटी से खाते हैं वो रोटी से इन्जॉय करेंगे, जो सादा खाते हैं वो सादा इन्जॉय करेंगे, वो जो एज अ प्रॉपर मील लेते हैं वो प्रॉपर मील की तरह खाएंगे। तो भाई टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो जायका है ना वो मुँह में आम का अब तक आ चुका होगा, और बिल्कुल मुँह में आपका पानी, मुँह में जो है ना पानी आना शुरू हो चुका होगा। आम से जुड़ी हमने कई सारे फैक्ट्स पर नज़र डाली, किस तरीके से हम घर पे आम पका सकते हैं, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है कि हम घर पे नहीं पका पाते हैं, तो फिर हमारे पास अल्टरनेटिव क्या बचता है, मार्केट से ख़रीदने का। अब आम ख़रीदते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए मार्केट से, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे कर लेते हैं। आम ख़रीदते वक्त जब कभी भी आप मार्केट जाएँ, तो आपके मन में ये जो एक सवाल उठता है ना, पता नहीं मीठा होगा कि नहीं होगा, सही तरह से पका है भी कि नहीं, सवाल ये भी होता है कि आम को पकाने के जो अलग अलग तरीके बाज़ार में उपलब्ध हैं उनकी पहचान आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आप जब मार्केट से आम लें तो इस चीज़ का ध्यान दें कि आम के ऊपर अम्लीय रस के दाग धब्बे तो नहीं हैं, आम पर किसी रसायन के अलग अलग सफ़ेद या नीले निशान ना हो। उमूमन आम को छूकर भी उसके पकने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पका हुआ आम थोड़ा सॉफ्ट होता है, अधपका आम कहीं से सॉफ्ट और कहीं से ठोस होता है।

जबकि कच्चा आम पूरी तरीके से ठोस होता है। और दूसरा तरीका ये भी है, आप आम को बिल्कुल नीचे से अंगूठे से अगर हल्का सा प्रेस करके देखेंगे ना, तो पका हुआ आम छूने से सॉफ्ट लगेगा। इसके लिए आपको पूरे आम को दबा दबा कर देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर जो लोग ऐसा करते हैं ना, तो जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं आम के, कहते हैं भाई साहब थोड़ा ध्यान से, आम है, बड़ा नाजुक फल होता है, थोड़ा सा वो ऑफेंसिव भी हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, नीचे से चेक करिए और आपको पता चल जाएगा कि आप जो आम ख़रीदने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से पका है या नहीं है। ऑलराइट, राइपनिंग मेथड से पके आमों का रंग एक तरीके

0: का होता है, क्योंकि ये एक समान तापमान में पकाए जाते हैं और ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट और दिखने में बेहद खूबसूरत रंग के होते हैं। अब आम ये नॉर्मल लोगों के खाने के लिए तो बड़ी सारी बातें हमने कर ली, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो डायबिटिक है, और आम तो सभी को पसंद होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आम और ख़ास सभी को पसंद होता है आम। तो डायबिटीज़ पेशेंट्स आम को एक स्नैक्स की तरह ले सकते हैं, डॉक्टर्स उन्हें एक छोटा पोर्शन लेने की सलाह देते हैं। आम को खाने के साथ खाने से परहेज़ करना चाहिए, जब भी आम खाएं तो आधी चपाती कम खा लीजिए, अगर थोड़ा सा आप इंटेक बढ़ा रहे हैं आम का तो एक चपाती कम खाइए। इससे आम और चपाती से मिलने वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना, उनकी मात्रा का एक बैलेंस बन जाता है। दोपहर में खाने के बाद आप आम खा सकते हैं और इवनिंग स्नैक्स में भी आम का सेवन किया जा सकता है। लेकिन ये तो जो नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी बात हो गई, लेकिन जिन्हें थोड़ा सा हाई लेवल रहता है, टाइप 2 रहती है, तो उन्हें थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। और अगर कभी बहुत ज़्यादा दिल चाहे तो प्लीज़ अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे एक सलाह लेकर के ही इसका इंटेक करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है। आम के भरपूर फायदे हैं, भरपूर। जी हाँ, आम में क्या ऐसी खासियत है कि इसे फलों का राजा बना दिया गया। दरअसल आम स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही गुणकारी फल है। इसमें मौजूद विटामिन बीटा कैरोटीन और फाइबर इसकी प्रोडक्टिविटी को, इसकी क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आम खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, अपच के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जी हाँ, आप अपच की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में आम आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। ये बिना पचे ही अवशोषित होने वाला फल है। जी, इसके अलावा ये ऊर्जा बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है, काफ़ी सहायक साबित होता है। तो आम के बहुत सारे फायदे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं। हमारे लिए तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आम आ जाए मार्केट में और हम खाना शुरू कर दें, तो बस हमारे लिए तो यही फायदा है, और हम तो बेसब्री से दशहरी का इंतज़ार करते हैं। फिलहाल आज क्योंकि मौका है और दस्तूर भी है, तो आम से बनने वाली एक डिश है जो ईजिली बन जाएगी आपके साथ साझा करूँगी मैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ा वक्त दे रही हूँ, आप एक पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए, फटाफट बताऊंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने के उपलक्ष्य में भाजपा राष्ट्रव्यापी अभियान चला रही है। इसके तहत आज पार्टी के नेता मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के एक मंदिर में पूजा अर्चना की। पत्रकारों से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़

संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने वाले जन नेता बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र का ये अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा, यह सम्मान उसी तप, त्याग, दूरदृष्टि और राष्ट्रनिष्ठा का अभिनंदन है जिसने करोड़ों देशवासियों को विकसित भारत के स्वप्न से जोड़ा है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जौनपुर में सेवा, संस्कार, सुशासन और सम्मान के 12 वर्ष थीम के तहत जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान व्यापक स्तर पर संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न विकास खंडों और ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का आज तीसरा और अंतिम दिन है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई जा रही है। बोर्ड के डीजी एसबी शिडकर ने बताया कि कल हुई परीक्षा में अभ्यर्थियों की कुल उपस्थिति 76.10% दर्ज की गई। हरदोई, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और कानपुर से नकल करने या फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहे युवकों को पकड़ा गया है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विज्ञान विभाग ने कल के लिए प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही कई जिलों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने को लेकर चेतावनी भी जारी की है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: 1:05 का वक्त, प्रोग्राम होटो पे तेरी बात का आगाज करेंगे एक बेहतरीन से ट्रैक के साथ। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बस आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।

0: जी आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हिंदुस्तान के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ लिया था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ उठाया था और 27 मई 1964 तक खिदमत अंजाम दी। पंडित नेहरू की बतौर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मुद्दतकार 4398 दिन थी। 26 मई 2014 से 10 जून 2026 तक वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुसलसल मुद्दतकार अब 4399 दिन हो गई है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है।
1: नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA आज नई दिल्ली में मीटिंग कर रहा है, जिसमें 12 साल मुकम्मल होने का और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान के सबसे तवील मुद्दत तक रहने वाले मुंतखब वजीर आजम की हैसियत का जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकर्दा कायदीन और NDA की तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। तमाम 22 NDA की हुकूमत वाली रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के साथ साथ तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज दारुल हुकूमत लखनऊ और उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 असेंबली हलकों के मंदिरों में खसूसी पूजा अर्चना का इनेकाद कर रही है। इस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर लीडर, वज़रा, मेम्बरान पार्लियामेंट और मेम्बरान असेंबली बतौर मेहमान खसूसी शामिल हो रहे हैं। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर पंकज चौधरी बतौर मेहमान खसूसी मौजूद रहे। मौनी बाबा मंदिर आलमबाग में बीजेपी के रियासती नायब सदर पंकज सिंह शामिल हुए। दरियसना, फतेहपुर, बनारस, जौनपुर और दीगर इजला में भी इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इज्जत मां वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की तारीख में सबसे तवील मुद्दत तक रहने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद पेश की है। वजीर आला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए मुबारकबाद पेश की। उन्होंने लिखा कि इज्जत मां वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमृतकाल की रहनुमा कुत और 1.45 बिलियन हिंदुस्तानियों की खिदमत, सलामती और खुशहाली के लिए मुसलसल वक्फ रहने वाले रहनुमा, हिंदुस्तान में सबसे तवील मुद्दत तक रहने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने पर दिल्ली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अवामी खिदमत ही गुड गवर्नेंस का सही पैमाना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम को शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सिर्फ वही शख्स जो आजिजी और लगन के साथ काम करता है अवाम का एतमाद हासिल कर सकता है। आकाशवाणी समाचार हुकूमत के गुज़िश्ता 12 सालों में मुख्तलिफ अहम शोबों में की गई कोशिशों पर एक खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की सिमत में हुकूमत की कोशिशों पर बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
1: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में रियासत में मुजोविजा सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन प्रोजेक्ट की पेशरफत का जायजा लिया और जरूरी अहकाम दिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोन में प्रस्तावित केंद्रों की संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 1,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है।
1: वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली वाके कौमी इम्तिहान एजेंसी के सदर दफ्तर का दौरा किया और 21 जून को मुजव्वजा नेट की री एग्जाम की तैयारियों का जायजा लिया। सदर दफ्तर के बाहर उन्होंने सहाफियों से बातचीत भी की। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

एक बजकर 16 मिनट का वक्त और क्या ख़ास है, किस टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाले हैं आज हम आपसे प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। भाई गर्मी की छुट्टियां चल रही है, भले ही पेरेंट्स वर्किंग हो या ना वर्किंग हो, लेकिन हाँ बच्चों की गर्मी की छुट्टियां तो चल ही रही हैं। ऑलमोस्ट सभी इलाकों में इस वक्त गर्मी की छुट्टियां बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं बस आज बड़ा हल्का सा टॉपिक लेकर के आई हूँ कि भाई किस तरीके से आप अपने बच्चों के साथ ये वेकेशन टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आपके जो भी इनपुट्स हो, जिस भी तरीके से आप स्पेंड कर रहे हो, प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। हम इसे ऑन एयर करना चाहते हैं ताकि जो पेरेंट्स इस कीमती टाइम को कहीं ना कहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपनी किसी भी प्रायोरिटी के चलते, तो वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। और अभी तकरीबन 20 दिन का टाइम और बाकी है समर ब्रेक ख़त्म होने में, तो इस टाइम को वो प्रॉपरली इंजॉय कर सके अपने बच्चों के साथ। fmakashwani@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस पर आप मेल सेंड करिए। फिलहाल एक बेहतरीन से ट्रैक के साथ हम कंटिन्यू रखेंगे इस प्रोग्राम को, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग 100.7 FM रेनबो।

1:23 का वक्त चुपके चुपके नहीं, हमने तो खुलेआम एक अनाउंसमेंट किया था। जी हाँ, हम आज आपसे प्रोग्राम होटल पे तेरी बात में जानना चाह रहे थे कि भाई गर्मी की छुट्टियां आप अपने बच्चों के साथ या आपके घर अगर कुछ बच्चे आए हुए हैं, आपकी बहन भाई या किसी और के भी, तो उनके साथ कैसे बिता रहे हैं। इस टॉपिक पर मैं आपके इनपुट्स जानना चाह रही थी, तो मेरे पास कुछ मेल्स आ चुके हैं। और जो पहला मेल मैं शामिल कर रही हूँ मोहम्मद फरहान जी का, इन्होंने मेल टॉपिक से जुड़ा नहीं लिखा है, लेकिन हाँ इन्होंने एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आप मेल करिएगा हमें अपने पसंद का ट्रैक एंजॉय करने के लिए। और एक और मेल हमारे पास आई है आसिफ अंसारी जी की, हैदराबाद तेलंगाना से, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और मैं इस वक्त घूमने आया हुआ हूँ, आप लोग भी घूमने आइए मतलब गर्मी की छुट्टियों में आप घूमने फिरने में लगे हुए हैं, राइट। अब यहाँ इसमें बच्चे शामिल हैं या नहीं ये आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, कोई नहीं। नेक्स्ट मेल हम जो शामिल कर रहे हैं वो मसूद की है, लखनऊ से आई हमारे पास। इन्होंने लिखा है, हम तो भाई बिना बैग वाली पढ़ाई करा रहे हैं अपने बच्चों को। ओके, बिना बैग वाली पढ़ाई कैसे होती है ये भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है। मैं अपने बचपने की कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाता हूँ, खेल खेल में गणित सिखाता हूँ उन्हें। ओके, ये जो खेल खेल में गणित सिखाने वाली बात है ना, इससे दो चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जाहिर सी बात है आपके बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, क्योंकि जो बेसिक मैथ्स है वो तो आप खेल खेल में सिखा सकते हैं, लेकिन जो बड़े गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के वो तो खेल खेल में नहीं सिखाए जा सकते। लेकिन हाँ, एक अच्छी पहल है आपकी जो आप अपने बच्चों को खेल खेल में, जैसे मेंटल मैथ्स, चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन और आप मल्टीप्लिकेशन डिविजन या कुछ प्रॉब्लम सम्स दे करके उनसे उनकी जो कॉम्प्रिहेंड करने की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रोवाइज कर रहे होंगे, बड़ी अच्छी सी बात है ये। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि मैं अपने बच्चों को रसोई में लेकर जाता हूँ और वहाँ पे उनको जो भी खाने पीने की चीज़ें पक रही होती हैं उससे जुड़ा विज्ञान सिखाने की कोशिश करता हूँ। ग्रेट, वेरी गुड, मतलब ये तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आप पूरी तरीके से जो समर ब्रेक है ना उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे ये भी लग रहा है कि मसूद आपके भी वर्क प्लेस पे छुट्टियां चल रही होंगी या फिर आप कुछ टाइम निकालते होंगे अपने बच्चों के लिए स्पेशल। खैर, जो भी हो, लेकिन बच्चों के लिए तो फ्रूटफुल साबित हो रहा होगा ये टाइम, ये समर ब्रेक का टाइम। तो इसी नोट पर एक और ट्रैक मैं सोच रही हूँ आप तक पहुँचा दूँ, लेकिन उससे पहले जितने भी लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी FM

akashwani@gmail.com ये है हमारा ईमेल एड्रेस। और आज प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप गर्मी की छुट्टियाँ अपने बच्चों के साथ कैसे बिता रहे हैं। ओके, इसी बीच एक और मेल आ गया हमारे पास आयशा का, और इन्होंने लिखा है मैंने अपने बच्चों को पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करवा दिए हैं, और जब वो पेंटिंग सीख के आते हैं तो जो मेरा बचपने का शौक़ था पेंटिंग करने का, उस पर मैं भी कुछ हाथ साफ कर लेती हूँ। साथ ही साथ मैं उन्हें बागवानी में भी इन्वॉल्व रखती हूँ। ग्रेट गोइंग आयशा। तो बस वक्त हो गया है इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे, उससे पहले लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

Baby, I love you. रेस फिल्म का ये ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया 100.7 FM रेनबो पर, और बहुत ही बेहतरीन सा एक और ट्रैक मैंने क्यों किया था जो बचपने की याद दिला देता, लेकिन इससे पहले मेरी नज़र पड़ गई हमारे जीमेल एड्रेस पर और हमने देखा कि भाई बहुत सारे ईमेल्स आ चुके हैं, तो हमने सोचा पहले मेल्स शामिल कर लेते हैं। रोशनी रावत जी, गुड आफ्टरनून, हम बिल्कुल ठीक हैं और आपने लिखा है 12 बजे से हम प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम सुनना, और आगे लिखती हैं ये कि मैं आपको सफ़ीपुर ज़िला उन्नाव से मेल कर रही हूँ और लिखा है मैं खुद ही एक बच्चा हूँ, मुझे कोई कहीं भी घुमाने ले जाता है मैं चली जाती हूँ, मैं चली जाऊँगी, आगे भी चली जाऊँगी। अरे वाह क्या बात है। ऑलराइट, नेक्स्ट मेल हमारे पास आया है सुल्तान रज़ा जी का बरेली से। इन्होंने लिखा है गर्मी की छुट्टियों में मैं बच्चों का तो नहीं, मैं खुद एक बच्चा हूँ और मैं मुख्य रूप से दुकान पर बैठता हूँ और आपके कार्यक्रमों का आनंद लेता हूँ। मेरे मम्मी पापा घर पे रहते हैं और हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है 25 तारीख को हम घूमने बाहर जा रहे हैं। ऑलराइट, साथ ही साथ इन्होंने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, रज़ा, अफजल, मोनिश, सादिक। ओके, ऑलराइट, और हैप्पी बर्थडे विश किया है हमारे माध्यम से अपने बड़े भाई को। ओके, सुल्तान जी, मैं ये जानना चाह रही थी प्रोग्राम में, अच्छा कुछ लोगों का ईमेल अभी मेरे पास आया है जो मेरी निगाह से होके गुजरे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें अभी आज का टॉपिक नहीं पता है, तो टॉपिक ये है कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप, अगर आप खुद एक बच्चे हैं तो आप कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये आज हम आपसे जानना चाहते हैं। और ये रिक्वेस्ट हमारी बाबू अंसारी जी की भी थी बाराबंकी से, और देखिए अब आपको टॉपिक पता चल गया है बाबू अंसारी जी, तो प्लीज़ फटाफट हमें अपने व्यूज़ हम तक पहुँचाइए। दिग्दर्शन गौर जी का मेल हमारे पास आया है शोभापुर मेरठ कैंट से, और दिग्दर्शन जी ये प्रोग्राम गाने सुनने का है लेकिन फरमाइशी गीत सुनने के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम में मेल करिएगा, फिलहाल हमें टॉपिक से जुड़ी कुछ अपने जो व्यूज़ है हमारे साथ साझा करिए। रामराज जी का मेल हमारे पास आया है रायबरेली से और उन्होंने लिखा है सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, स्वीकार कर दिया हमने आपका नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और इन्होंने लिखा है बच्चे हमारे घर के जो बच्चे हैं वो अपने नाना नानी के यहाँ जाते हैं, वहाँ हंसी खुशी बच्चे आम जामुन खाते हैं, ननिहाल के आम और जामुन खाने में कुछ और ही मज़ा आ जाता है। बिल्कुल सही बात है कि ननिहाल के जो आम और जामुन होते हैं ना उनका मज़ा ही कुछ अलग सा होता है, तो बस इस बचपने वाली जो ये जो सब बातें हैं ना इनको आप तक पहुंचाते पहुंचाते दिल चाहने लगा कि ये वाला जो ट्रैक है ना वो आपके साथ मिलके एंजॉय करें। ब्रह्मचारी फिल्म का ये ट्रैक हम सब के लिए सिर्फ हमारे रेडियो सेट्स पर, सो स्टे ट्यून्ड।

ऑलराइट, मेल आने का जो सिलसिला है ना वो जारी है और नेक्स्ट मेल हम शामिल कर रहे हैं लखनऊ से। हमारे पास मेल आया है एमन का, इन्होंने लिखा है कि हमने अपने बच्चों को दो बार नॉन फायर कुकिंग में इन्वॉल्व किया है और साथ ही साथ कई बार उनके साथ माप तौल की एक्टिविटी भी की है, उनको बस माप तौल सिखाने के लिए। ग्रेट गोइंग एमन। इसके अलावा हमारे पास मेल आया है लाल गिरी जी का, इन्होंने हमें ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान से मेल किया है और इन्होंने लिखा है कि हमें आप लोगों के सभी कार्यक्रम सुनना बहुत पसंद है और मैं बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने हिमाचल घूमने आया हुआ हूँ। ओके, एंजॉय योर वेकेशन इन हिमाचल। ऑल राइट।

राइट, नेक्स्ट मेल हमारे पास किसका आया है? वकील अहमद जी का आया है। इन्होंने हमें हथूरी ज़िला सीतापुर से मेल किया है। इन्होंने लिखा है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, समर ब्रेक चल रहा है, इसमें उन्हें स्कूल का काम करवाते हैं और उर्दू भी पढ़ने जाते हैं बच्चे हमारे, और यहाँ गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। दो पीपल के बहुत पुराने से पेड़ हैं, उसके पास कुछ इंतज़ाम है स्विमिंग करने का। ऑल राइट, तो मतलब वहाँ पे भी टाइम स्पेंड करते हैं ये, ऑल राइट, या फिर अपने बच्चों के साथ ये स्पेंड करते होंगे ये टाइम। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन तो इन्होंने नहीं दी है, लेकिन हाँ अच्छा लगा ये जान करके कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ में भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट मेल हमारे पास आ गया है मुंगीसापुर कानपुर देहात से, और ये मेल हमारे पास आया है रामेश्वर जी का। इन्होंने लिखा है, कुछ लोगों के नाम लिखे हैं और साथ ही साथ लिखा है कि ये प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं। और राइट, टॉपिक से जुड़ा इन्होंने कोई भी बात नहीं लिखी है, तो रामेश्वर जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज़ हमें टॉपिक से जुड़े जो भी अपने विचार हैं वो हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, समर ब्रेक टाइम चल रहा है, तो इसमें आप अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या आपके घर पर कुछ घर परिवार पर आपके कुछ रिलेटिव्स के बच्चे आए हुए हैं, उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमारे साथ ज़रूर साझा करिए। ओके, बहुत ही अवेटेड अहमद नवाब जी का भी मैसेज हमें प्राप्त हो गया है डीला से, और आपने लिखा है, अपनी गर्मी की छुट्टी मोबाइल देखकर सोकर, टीवी पर मोबाइल फिर सोकर बिता रहे हैं हम। ओके, और आगे इन्होंने और कुछ भी स्पेसिफिकेशन हमें दिए हैं। मेरे दादाजी हाई स्कूल साइंस टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं हम सभी बच्चों को पढ़ाई से पूरी तरीके से फुर्सत नहीं मिल पाती है लेकिन हाँ, दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करना और दादाजी से चीज़ें सीखना बड़ा फ्रूटफुल साबित होता है, ये लिखा है इन्होंने। थैंक यू सो मच मेल करने के लिए हमें। ऑल राइट, इतने सारे मेल्स शामिल करने के बाद फिर से वक्त हो जाता है एक बेहतरीन सा ट्रैक आप तक पहुंचाया जाए, और इस बार भी ट्रैक जो है वो हम सब की पसंद का है, हमारे स्पेशली हमारे बच्चों की पसंद का है। तो स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो।

इनकार और इकरार की परिस्थिति में बने हुए हैं हमारे एक लिसनर भी. इनका नाम है ब्रह्मेश सोनी. इन्होंने लिखा है कि मैं टिकैत नगर बाराबंकी से आपको मेल कर रहा हूँ. मैं भी अनमैरिड हूँ और आप सबकी बातें सुन रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ. रेडियो के हमारे कुछ दोस्त हमारे साथ बैठे हुए हैं और बस इन्होंने लिखा है लास्ट में कि हमारी ईमेल शामिल कर लीजिएगा. देखिए, आप अनमैरिड हैं तो क्या हुआ, आपके घर पे कुछ ना कोई आपके बड़े भाई बहन किसी के बच्चे होंगे, कुछ पड़ोसी होंगे. समर ब्रेक के टाइम पे हम सब मिलजुल करके टाइम स्पेंड करना बड़ा मज़े से एंजॉय करते हैं भाई, तो मुस्कुराइए, ये अच्छी बात है. सतीश अनेजा जी का मेल हमारे पास आया है और इन्होंने चंडीगढ़ से हमें मेल किया है. रेगुलर लिसनर है हमारे. इन्होंने लिखा है, हमारी गर्मियों की गर्मियाँ बहुत अच्छी रहती हैं. सुबह सुबह काम निपटाकर सारा दिन घर पर आकाशवाणी के साथ बिताते हैं और खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखते हैं. चंडीगढ़ में वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती. जून और जुलाई में मनाली में भी कुछ दिन के लिए चले जाते हैं, लेकिन रेडियो हमेशा हमसफर रहता है जिससे बहुत सुकून मिलता है. थैंक यू सो मच. बिमला अनेजा का भी नाम लेने की रिक्वेस्ट आपने की थी. ओके, मोहम्मद आमिर का भी मेल हमारे पास आ गया है बरेली से और ये तो गीत सुनने की रिक्वेस्ट की, नेक्स्ट प्रोग्राम में मेल करिएगा प्लीज़. और राइट, इसके बाद हमारे पास एक और मेल आया है और ये मेल है सऊद का, लखनऊ से. इन्होंने लिखा है, हम अपने घर पर जितने बच्चे हैं उनको और अपने पड़ोसी के बच्चों को इकट्ठा करके टीचर वाला गेम खिलवाते हैं. ओके, और लिखा है कि हम खुद स्टूडेंट बन जाते हैं और देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से इनैक्ट करते हैं अपने क्लासेस को, इससे उनका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है. और राइट, इसके बाद सारा का मेल आया है हमारे पास न्यू दिल्ली से. इन्होंने लिखा है कि रोज सोने से पहले एक चीज बताना. ओके, इन्होंने अपने बच्चे को डायरी लिखने की हैबिट डेवलप कराई है और सोने से पहले एक चीज़ वो मेंशन करती है जिसमें वो थैंक यू कहती है. किसी भी पूरे दिन में जो भी उसने गतिविधियां की होंगी उसमें से किसी एक चीज़ का वो थैंक यू नोट ज़रूर लिखती है. बड़ी अच्छी सी बात है और डायरी लिखना तो बहुत ही अच्छी आदत होती है, बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं आप. फिलहाल वक्त हो गया इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप कराया जाए और फाइनली हम इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप कर देंगे. इस वादे के साथ एक छोटे से म्यूजिकल और न्यूज़ ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे प्रोग्राम हॉटमेल में.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार दो कार्यकाल तक सबसे लंबी अवधि में निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। वहीं केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा राष्ट्रव्यापी अभियान चला रही है। इसके तहत आज पार्टी के नेता मंदिरों में विशेष पूजा कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने वाले जन नेता बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र का ये अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा, यह सम्मान उसी तब त्याग, दूरदृष्टि और राष्ट्र निष्ठा का अभिनंदन है जिसने करोड़ों देशवासियों को विकसित भारत के स्वप्न से जोड़ा है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर

जौनपुर में सेवा संस्कार सुशासन और सम्मान के 12 वर्ष थीम के तहत जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान व्यापक स्तर पर संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं नीतियों और उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न विकास खंडों और ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का आज तीसरा और अंतिम दिन है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई जा रही है। बोर्ड के DGSB श्रीडरकर ने बताया कि कल हुई परीक्षा में अभ्यर्थियों की कुल उपस्थिति 76.10% दर्ज की गई। हरदोई, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और कानपुर से नकल करने या फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहे युवकों को पकड़ा गया, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

2:04 का वक्त और ईमेल्स आने का जो सिलसिला है ना वो जारी हो चुका है. प्रोग्राम हॉटमेल का आगाज़ हो चुका है. इससे पहले कि मैं अनाउंसमेंट करती, ऑलरेडी हमारे लिसनर्स इतने अलर्ट मोड पे रहते हैं, वो अपनी पसंद का ट्रैक एंजॉय करने के लिए हमें 2 बजे से ठीक मेल्स करना स्टार्ट कर देते हैं. बहुत ही अच्छी बात है ये. fmakashwani@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है. अगर आप अपनी पसंद का ट्रैक एंजॉय करना चाहते हैं तो अपना नाम, जो ट्रैक सुनना चाहते हैं वो, और जिस जगह से आप हमें मेल कर रहे हैं वो लिख करके फटाफट मेल कर दीजिए. मैं 2 बजे से जितने भी ईमेल्स हमारे पास आए हैं वो सब शामिल करूंगी, आज पूरी कोशिश करूंगी. सबसे पहला मेल जो मैं शामिल कर रही हूँ वो है

हमें 2 बजे से ठीक मेल्स करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ही अच्छी बात है ये। fmakashwani@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। अगर आप अपनी पसंद का ट्रैक एंजॉय करना चाहते हैं तो अपना नाम, जो ट्रैक सुनना चाहते हैं वो, और जिस जगह से आप हमें मेल कर रहे हैं वो लिख करके फटाफट मेल कर दीजिए। मैं 2 बजे से जितने भी ईमेल्स हमारे पास आए हैं वो सब शामिल करूंगी, आज पूरी कोशिश करूंगी। सबसे पहला मेल जो मैं शामिल कर रही हूँ वो है टीडी मल्होत्रा जी का। इन्होंने हमें मेल किया है मोहाली चंडीगढ़ से, और प्रतीक अनिल जैवी, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की। थैंक यू सो मच हमें मेल करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट मेल किसकी हम शामिल कर रहे हैं? ओके, बाबू अंसारी जी का मेल हमारे पास बाराबंकी से आ गया है। गुड आफ्टरनून मैम जी, मुझे ये गाना सुनवा दीजिए अगर हो सके तो। बिल्कुल अगर हो सकेगा हम ज़रूर सुनवाएंगे आज आपको। कुलदीप, फैज़ और महेंद्र, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की। थैंक यू मेल करने के लिए। सुधांशु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट आपने की है। हम पूरी कोशिश करेंगे सुधांशु जी आज प्रोग्राम में ये ट्रैक ज़रूर प्ले हो। अजीत भावसर जी का मेल हमारे पास आया है, लेकिन इसमें क्या है भाई? अच्छा, ये पूरा ब्लैक ब्लैक सा है और इन्होंने एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है। गुजरात से आपने इन्होंने हमें मेल किया है। हम पूरी कोशिश करेंगे अजीत जी कि ये मेल तो हमने ऑलरेडी शामिल कर लिया है लेकिन ये ट्रैक हम आज प्रोग्राम में ज़रूर प्ले करें। शाहरून नूर अंसारी जी का मेल आ गया है। कोई भी गीत सुनवा दीजिए। ग्राम व पोस्ट हररपुर।

कली जिला बरेली से फरियाद शकील मोइन तस्लीम डीजे प्रधान इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी। सतीश शनेजा जी का मेल हमें फिर प्राप्त हो गया है इस प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच। और इन्होंने लिखा है, नाराज ना होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं दिया जल रहा है। क्या बात है, एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है, हम जरूर कोशिश करेंगे प्रोग्राम में प्ले हो आज ये सॉन्ग। मेहर अरोड़ा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीगंगानगर राजस्थान से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। ममता कीर्ति और भूमिका इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी, थैंक यू। बबलेश पनवर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें राजस्थान से मेल किया। डैनी और डैनी मनीष दिनेश बाबूराम और खुदा बख्श खलीफा इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। वकील अहमद जी आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है। और आपने हमें कहाँ से मेल किया है, कीदू पहरी में, अच्छा नहीं जगह नहीं लिखी है। हाँ, इन्होंने एक सॉन्ग सुनने की ज़रूर रिक्वेस्ट की है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा मिल गया, सीतापुर से मेल आया है वकील जी का हमारे पास, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ऑल राइट, नेक्स्ट मेल हम किसका शामिल कर रहे हैं, सिद्धार्थ गुंडाने जी आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है। अमरावती से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। अर्चना ताई, हीरामणि शिंदे, प्रणय, प्रसिद्धि, प्रतिभा इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट करते हैं और हमने नाम ले लिया। ताज मोहम्मद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मिल गया हमें आपका मेल। भाई आप बड़े रेगुलर लिसनर हैं हमारे, ये लगसर हरिद्वार से मेल करते हैं हमें। और गुलाम साबिर राही मेहराज जहाँ इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, हमने नाम ले लिया, थैंक यू मेल करने के लिए। शाह जी बोटखे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, महाराष्ट्र से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। श्रीमती नंदा हनुमान, उत्तम जमदाड़े, स्वराज इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की और एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की है। लालगिरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया और लिखा है श्रीगंगानगर से आपने हमें, और साथ ही साथ लिखा है कि कोई भी सॉन्ग सुनवा दीजिए, बस हमारा मेल शामिल कर लीजिएगा। हमने मेल शामिल कर लीजिए कर लिया है, साथ ही में कुछ नाम लिखे हैं, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है इस प्रोग्राम में। और रामेश्वर जी का मेल हमें प्राप्त हो गया है। रामेश्वर जी का मेल मेरे ख्याल से मैं इससे पहले भी शामिल कर चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। हरजिंदर शिंडा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पंजाब से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। किसी भी सदाबहार गीत में शामिल कर लीजिएगा। जसवीर, सीता, गीता और आगे इन्होंने एक नोट लिखा है, खुश रहो खुशियां बांटो, थैंक यू इस नोट के लिए। अहमद का मेल हमें प्राप्त हो गया है और आपने मेल कहाँ से किया है, बलिया फिल्म सिटी मुंबई से, छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से मेल किया है। सदफ, जूही, इमरान, बिटिया, आसमा, आशु

0: दिल्ली से आपने मेल किया है, मैं थैंक यू मेल करने के लिए। ओके, अकरम हुसैन जी का भी मेल हमें प्राप्त हो गया है। महसौल सीतामढ़ी से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। बेगम इशरत, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रान, मोहम्मद आसिफ, कलेर, निखत, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके, तनुजा देवांगन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया। और आपने मेल हमें कहाँ से किया है, पलारी छत्तीसगढ़ से आपने मेल किया, थैंक यू। ईशांत, लखनलाल, सावित्री बाई, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई मूसा शेख का मेल हमारे पास आ गया है और हम बिल्कुल खैरियत से हैं, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। सनावत से आपने मेल किया है हमें और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की, पूरी कोशिश करी जाएगी क्या जिस प्रोग्राम में आपकी पसंद का ये ट्रैक प्ले हो। नितेश देवांगन जी का मेल हमें प्राप्त हो गया छत्तीसगढ़ से। दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, पूना राम, कृष्णा, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी। कोई भी गीत, किसी भी गीत के साथ हमारा मेल बस शामिल कर लीजिए। देखिए हमने आपका मेल शामिल कर लिया। नवी हसन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें एटा से मेल किया है और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सॉन्ग प्ले हो जाए इस प्रोग्राम में आज। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बेहतरीन सा ट्रैक आप सबका इंतज़ार कर रहा है। ये ट्रैक भी हमारे किसी लिसनर की ही पसंद का है, तो स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी, देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

प्रोग्राम हॉटमेल में जो मैसेजेस आने का सिलसिला है ना वो जारी है, उसे कंटिन्यू रखते हैं। मोहसिन रजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें। और आपने कहाँ से मेल किया है? सनावत से मेल किया है, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके, नेक्स्ट मेल है अब्दुल गफ्फार जी का। किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए, हम आपको नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से मेल कर रहे हैं। अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर, राजेंद्र जी का नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की, थैंक यू। ओके ओके ओके, ये सब शामिल हो गए। संदीप मकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें चौक गोरैया जलंधर से। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सॉन्ग आज हम इस प्रोग्राम में प्ले कर पाएँ। ओके, अब्दुल गफ्फार जी का मेल हम शामिल कर चुके हैं और ये भी सब शामिल हो गए हैं। ओके ओके ओके ओके, जय जी का मेल हमारे पास आ गया है। और होली चौक उत्तम नगर से आप हमें मेल करते हैं। अमन खोरवाल, दीपांशु, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है और एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की है। कोशिश हम पूरी करेंगे आज सॉन्ग वो प्ले हो जाए इस प्रोग्राम में। ओके, नेक्स्ट किसका मेल हम शामिल कर रहे हैं? आफ्ताब अंसारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मेल किया है। रियाज, मोहम्मद अनवर, लुबना, आलिया, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए। कोशिश हम पूरी करेंगे ये प्रोग्राम में आज आपकी पसंद का ट्रैक हम प्ले करें। देखिए, हम पूरी कोशिश यही करते हैं कि जितने भी ट्रैक्स प्ले हो रहे हैं ना वो तो सब आपकी पसंद के होते हैं, लेकिन टाइम का थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेंट रहता है ना, तो सबकी पसंद का नहीं प्ले हो पाता है। लेकिन फिर भी थ्रू आउट द डे कोशिश यही की जाती है हर आरजे के द्वारा कि आप लोग जो भी ट्रैक्स पसंद करते हैं वो प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं शामिल कर ही लिए जाते हैं। ओके, सादिक खत्री जी का मेल हमारे पास आ गया है सनावत से, आपने भी एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है। मुश्ताक, मोहम्मद शाकिर, अलकमा, अल्तमश, रमेश, मोहम्मद शादाब, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके, और इसके बाद किसकी शामिल करेंगे? मोहम्मद शादाब खान का मेल हमारे पास आया है हरदोई से और आपने लिखा है, कैसे हैं आप सब? हम सब बिल्कुल बढ़िया हैं, आपकी दुआएं हैं। और आपने जो सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की ये आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्ले हो प्रोग्राम में। सुनील पाठक जी का मेल हमारे पास आ गया है अनारकली बाजार जगराव से, आपने मेल किया है। कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, इन सब का नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की है। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके पसंद का ट्रैक आज प्रोग्राम में ज़रूर प्ले किया जाए। कीर्तनपुरी गोस्वामी जी का मेल हमें प्राप्त हो गया है और आप कैसे हैं जी? हम बिल्कुल बढ़िया हैं, भले चंगे हैं। छत्तीसगढ़ से आपका मेल हमारे पास आया है और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है, थैंक यू। हम पूरी कोशिश करेंगे सॉन्ग प्ले हो। अच्छा, साथ ही साथ कुछ नाम भी लेने की रिक्वेस्ट की है। महाराज कीर्तनपुरी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी, दिशा गोस्वामी, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। बोधराज खोरवाल जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया उत्तम नगर दिल्ली से। कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, इन सब का नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पसंद का ये जो ट्रैक है ये हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कर पाएँ।

आकाश जी के मेल एड्रेस से हमारे पास मेल आया है और आपने लिखा है, मैं आपको सलीद तहसील सफ़ीपुर ज़िला उन्नाव से मेल कर रहा हूँ और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ ये ट्रैक सुनवा दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे ये ट्रैक प्ले हो। महेंद्र प्रसाद मोदी जी का मेल हमारे पास आया है रामगढ़ कैंट से, और ठाकुर साहब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी, एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की है। ओके स्वर्ण सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुरावाला से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है, गीत कोई भी सुनवा दीजिए, हमारा नाम ज़रूर शामिल कर लीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल, अविराज, इन सब का नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की, थैंक यू। अनिल कटारिया जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया पानीपत हरियाणा से। मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा, ज्ञान भूषण शर्मा, छाया, इन सब का नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की है और एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की। पूरी कोशिश हम करेंगे ये सॉन्ग प्ले हो आज प्रोग्राम में। यासीन अंजान जी, आपका भी मेल हमें मिल गया है, थैंक यू मेल करने के लिए। झारखंड से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं और आपने साइमा नवाज़, हसन बाबू, अहद, मिफ्रा, बेबी चाहत, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। रामराज जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है, रायबरेली से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, लिखा है कोई भी गाना सुनवा दीजिए। मिर्ज़ा शाहरुख बेग, पप्पू, मनीष, नीरज, मधु, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके भागवत वर्मा जी, दत्रिंगी से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, कोई भी गीत सुनवा दीजिए हमें। ओके नेक्स्ट जो गीत है ना उसमें स्पेशल डेडिकेशन आपके लिए है जी। राजेश वर्मा जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। प्रीति, कार्तिक आर्यन, मुन्ना भाई, पिंकी आर्यन, कृष्णा, पीहू, स्वर्णकर, आप सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, कोई भी गीत सुनवा दीजिए। ओके थैंक यू। मसरूर हसन जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है सहारनपुर से। शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, किसी भी गीत में बस हमें शामिल कर लीजिए। अच्छा एक नाम और लिखा है सैयद मसरूर, शुक्रिया मेल करने के लिए। ओके राजेश वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका मेल मैं शामिल कर चुकी हूँ वैसे, थैंक यू फिर भी। अनिल कुमार गोहाकर जी, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें मेल किया और आपने हमें कहाँ से मेल किया है, आपने हमें मेल किया है उमरखेड़ महाराष्ट्र से। सरिता, प्रणिता, सिद्धांत, लाडला टुक टुक और वैशाली, एकांश, सुमित, कुमारी ध्वनि, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। आर कुमार जी, आपका भी मेल मिल गया हमें वंडिंग खेड़ा से, आपका मेल हम शामिल कर चुके हैं, थैंक यू थैंक यू। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर एक बार आपने मेल किया है ना तो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सब्र रखिए, हम ज़रूर शामिल करेंगे सबके मेल्स। अब जब बार बार आप रिपीटेड मेल्स करते हैं ना तो जो जेन्युइन मेल्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। शेख लाबख्श का मेल आया है हमारे पास तेलंगाना निज़ामाबाद से। बेगम राबिया शेख, शेख रहीम, मुन्ना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए। ओके फागुराम यादव जी, आपका भी मेल हमें मिल गया है। ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, संबलपुर कांकोर से आपने मेल किया, थैंक यू। गगनदीप ठांडी जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है नवा शहर पंजाब से, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। और नेक्स्ट है आफ्ताब अंसारी जी का मेल मैं शायद शामिल कर चुकी हूँ लेकिन अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है। रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना, आलिया, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है आपने। संजय ढींगिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बागपत उत्तर प्रदेश से आपने मेल किया है। नमन अपार, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की और एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की है, कोशिश हम पूरी करेंगे। संतोष जी, आपका भी शुक्रिया, देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से आपने मेल किया है हमें। ऑल राइट इन्होंने सुनैना, सुकन्या और सविता, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। ओके रणधीर गुप्ता जी, शुभ दोपहर, आपको भी कोई भी गाना सुनवा दीजिए। ओखला संगम विहार दिल्ली से आपने मेल किया है, थैंक यू मेल करने के लिए। पंकज शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया, आपने भी एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है। गुड मॉर्निंग नहीं जी, गुड आफ्टरनून हो गया है, दोपहर के खाना, दोपहर का खाना खाने का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर नहीं खाया तो प्लीज़ खा लीजिए। ओके ओके ओके नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें पानीपत से मेल किया है। लक्ष्य, लाडो कोयल, पापा जी, शिवाजी, पीयूष कोयल, डुगू, भावेक सिक्का, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की है, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। तेज बहादुर यादव जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया।

आपको भी नमस्कार। मैम जी, अगर हो सके तो मुझे भी ये गीत सुनवा दीजिए। बिल्कुल, अगर हो सकेगा, आज पॉसिबिलिटी होगी तो प्रोग्राम में ये मैं गीत ज़रूर शामिल होगा। अनिल सिंह जी, आपका भी शुक्रिया, आपने मुंबई लिखा है, मैं आपको मुंबई में सुन रहा हूँ और रायबरेली का रहने वाला हूँ, पहली बार मेल किया है। ओके, क्यों पहली बार मेल किया है? हम तो भाई बहुत एक्टिव रहते हैं, मतलब FM रेनबो तो बहुत एक्टिव है। आप मेरे ख्याल से आप बहुत एक्टिव लिसनर शायद नहीं होंगे या होंगे, जो भी केस है, लेकिन प्लीज़ जब भी फ्री टाइम आपको मिले अपने बिजी शेड्यूल में से तो FM रेनबो ज़रूर इन्जॉय किया करिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। अच्छे बेहतरीन गाने भी सुनते हैं और ज्ञानवर्धक जानकारी भी प्राप्त होती है और हर टॉपिक से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ओके, पंजाबी नवाकार जी का मेल हमें प्राप्त हो गया है, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। आपने निर्मला विशाल नारायण सोपान आशीष इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। बबलेश पनवर जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। डैनी मनीष बबलेश दिनेश इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। शिव पूजन लाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सनी गावा लखीमपुर खीरी से, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, हम बिल्कुल ठीक है शिव पूजन जी, और एक गाना सुनने की रिक्वेस्ट की है। पूरी कोशिश हम करेंगे कि आज इस प्रोग्राम में वो ट्रैक प्ले हो। सरफुद्दीन अंसारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिएगा। बक्सर बिहार से हम आपको मेल कर रहे हैं शरफुद्दीन जी ने। फातिमा खातून, सुरित रमेश, डॉक्टर डब्लू, डॉक्टर सोनम, दानिश और श्रद्धानंद, अभयनंद और परमानंद, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके ओके ओके, ये सब तो शामिल हो गए हैं। रवि कुमार जी, आपका भी शुक्रिया, हरियाणा से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया। रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीत, गुरशब्द, सबका, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी आपने। तौहीद रईन रैयान जी, तौहीद रईन ओके, मलिहाबाद से आपने मेल किया है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आपको, मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज़ मुझे ये सॉन्ग सुनवा दीजिए। ओके, बिल्कुल हम कोशिश पूरी करेंगे कि ये सॉन्ग हम सुनवाएं आज आपको। ओके, कमलकांत गुप्ता जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है। श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता का नाम लेने की रिक्वेस्ट की और बड़ा ही कलरफुल सा रेनबो स्टाइल में, मतलब हार्ट शेप्ड रेनबो बना के भेजा है इन्होंने। ओके, बड़ी क्रिएटिव हैं आप सब लोग, आपकी क्रिएटिविटी यहाँ मेल्स पर बखूबी नज़र आती हो। उत्तम कुमार भागत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, झारखंड से आपका मेल हमें मिल गया है। श्वेता, किसु, अर्णव, सत्यम, मुन्ना, गुड्डी, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। अब वक्त हो गया है कि विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एक बेहतरीन सा ट्रैक अपने लिसनर्स की ही पसंद का आप तक पहुँचा दें। आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।

2:41 मिनट का वक्त और ये जो दो ट्रैक्स अभी आपने एंजॉय किए ना 100.7 एफएम रेनबो पर, ये दोनों हमारे लिसनर्स की पसंद के थे। ऑल राइट, सरिता अभिजीत जी का मैसेज हमें प्राप्त हो गया है बहादुरा नागपुर से। प्रिंस एकांश, सुमित, कुमारी ध्वनि, परी, अभिजीत, सरिता, प्रणिता, सिद्धांत, सबका नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। ओके ओके ओके, ऑल राइट।

इसमें नया मेल किसका है? नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल हमें किया है और पानीपत से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। राधे कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया उसके लिए, प्लस एक सॉन्ग सुनने की आपने रिक्वेस्ट की, हम पूरी कोशिश करेंगे ये सॉन्ग आज प्रोग्राम में प्ले हो। जी हाँ, ऑल राइट देन। रोजी डिकैस्ट्रो जी की ईमेल एड्रेस से भी मेल आ गया हमारे पास, जनकपुरी सहारनपुर से, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। और जॉन पर्ल विलिस, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट आपने की है, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। राजू मिगलानी जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है, दुर्ग कॉलोनी हांसी से, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। बबीता, सुभाष, बब्बू डब्बू, सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, और अगर हमारी पसंद का ट्रैक प्ले कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, ये भी लिखा आपने। नहीं भाई, मेहरबानी की क्या बात है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि सबकी पसंद का ट्रैक हम प्ले कर पाए, लेकिन थोड़ा टाइम का कॉन्स्ट्रेंट रहता है। शुभ दोपहरिया लिखकर भेजा है संजय साहू जी ने, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। सफलता कड़ी मेहनत, आत्म जागरूकता और सही दृष्टिकोण पर, अच्छा, सफलता कड़ी मेहनत, आत्म जागरूकता और सही दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। ओके, बिल्कुल सही बात आपने कही। पोटिया कला दुर्ग से आपने मेल किया है हमें, और सुजाता साहू जी का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है, साथ ही एक सॉन्ग सुनने की भी रिक्वेस्ट की है, पूरी कोशिश हम करेंगे। स्वर्ण सिंह जी, आपका मेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं, सुनील पाठक जी का भी शामिल हो चुका है। एजाज अहमद जी ने हमें मेल किया है, कहाँ से मेल किया है, ये यूपी 34 लिख करके भेज दिया है इन्होंने हमें, और आगे लिखा है, मुझे प्रोग्राम का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, मैं इस प्रोग्राम को सुनने के लिए सारे काम जल्दी से ख़त्म कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच इतनी इज्जत अफजाई के लिए। ओके, सादिक खत्री जी का भी मेल हमें प्राप्त हो गया है, वैष्णव कॉलोनी सनावत से, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। और आपकी पसंद का कोई भी सदाबहार सुरीला गीत सुनवा दीजिए, बिल्कुल नेक्स्ट ट्रैक जो होगा ना वो स्पेशली आपको डेडिकेटेड होगा। गुड आफ्टरनून एफएम रेनबो, जावेद अख्तर जी ने मेल किया है हमें लिख करके, और बस गुड आफ्टरनून लिख के भेजा है, गुड आफ्टरनून विशेस आपको भी। ओके, नेक्स्ट मेल उदय भान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया हमें, किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए, रजौनी ज़िला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हम आपको मेल कर रहे हैं। जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और समस्त परिवार का नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की थी। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें एटा से मेल किया है, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल, अनम, यशफ, रसीद और ज़ुबैर मुबीन, सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, और लास्ट में लिखा है बहुत बहुत शुक्रिया। शीलू मौर्य जी, आपका भी शुक्रिया, फैजुल्लागंज लखनऊ से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। मैम, मेरी सिस्टर शिवांगी मौर्य, संदीप मौर्य और मेरे हस्बैंड शोभित मौर्य जी का नाम ले लीजिएगा, सबका नाम ले लिया हमने, और आपने एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की। अच्छा, इस फिल्म का सॉन्ग अभी थोड़ी देर पहले हम प्ले कर चुके हैं, वैसे हम कोशिश करेंगे कि ये सॉन्ग भी प्ले हो जाए, लेकिन फिर भी थैंक यू हमें मेल करने के लिए। जनवेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कोशिश कीजिएगा अपनी पसंद का गाना सुनवा दीजिए। भाई, हम अपनी पसंद का कोई गाना आज नहीं सुनवा रहे प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है आप सबको, जितने भी ट्रैक्स प्ले हो रहे हैं ना सब आपकी पसंद के, और हमें तो लामौला वो सब ट्रैक्स ऑटोमेटिकली पसंद आ जाते हैं। जनवेश कुमार जी ने ग्राम रसूलपुर पोस्ट सकरावा ज़िला कन्नौज से मेल किया है, थैंक यू मेल करने के लिए हमें, और लिखा है कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया जो आपको अच्छा लग रहा है कार्यक्रम की प्रस्तुति। संजय ढींगिया जी, बागपत उत्तर प्रदेश से आपने मेल किया है और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की है, बिल्कुल हम कोशिश पूरी करेंगे। हीरामणि वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, भाटापारा छत्तीसगढ़ से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है, कोई भी गीत सुनवा दीजिए। और आपने पारसमणि, पुष्पेंद्र, नोखेलाल वर्मा, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। मेहर अरोड़ा जी, आपका मेल हमें प्राप्त हो गया राजस्थान से, एक सॉन्ग आपने सुनने की रिक्वेस्ट की, हम पूरी कोशिश करेंगे आज वो सॉन्ग ज़रूर प्ले हो इस प्रोग्राम में। शोविंद कुमार जी, प्लीज़ मैम हमारा मेल शामिल कर लीजिए, गुड आफ्टरनून, मैं आज बहुत दुखी हूँ क्योंकि आज हमारे अच्छा कोई इनके बहुत ही करीबी हैं, वो इस दुनिया को रुखसत करके आज जा चुके हैं। ओके, बड़ा ही दुखद समाचार है ये, लेकिन उनकी आगे की जो मतलब

आगे इन्होंने लिखा है, मैं उनकी याद में एक सॉन्ग सुनना चाहता हूँ। ओके ओके ओके, आपने हमें डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से मेल किया है, थैंक यू मेल करने के लिए हमें। हम आपके साथ इस दुखद समय में खड़े हैं, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके घर वालों के लिए हमेशा एक हेल्पिंग हैंड बन के खड़े रहिएगा, अगर आपकी लाइफ में वो इतने इम्पॉर्टेंट थे तो। ओके संजू देवी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सीतापुर से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। एक सॉन्ग सुनने की आपने रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मैडम जी सुनवा दीजिए, मेरा गिफ्ट काफ़ी दिनों से प्ले नहीं हुआ है। ओके ऑलराइट मोहसिन रजा जी, आपका मेल प्राप्त हो गया हमें, खंडवा रोड सनावत से, शाहबाज अरबाज फरहाज फरदीन समीर डॉक्टर मोइन सबका नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। महेंद्र देपान जी, रूड़ा ज़िला नागौर राजस्थान से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। और सुरेश दौलत गुर्जर, रोशनी रावत, बबीता राव, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। ओके टाइगर खान खान खान, ये ईमेल एड्रेस है जिससे मेल आया हमारे पास, लिखा है माय नेम इज़ नरगिस, मैं आपको बिलाई तहसील संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई से मेल कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून मैम, मैं आपकी रेगुलर लिसनर हूँ, मेरी एक फरमाइश है, प्लीज़ हो सके तो इसे प्ले कर दीजिएगा। तैयबा शादाब सलमान, इनकी इनका नाम लेने की रिक्वेस्ट की है, बिल्कुल हो सकेगा हम ज़रूर प्ले करेंगे। फिलहाल आपका मेल हमने शामिल कर लिया। धर्मेंद्र कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मिर्कापुर पोस्ट दरियाबाद ज़िला बाराबंकी से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया है। और प्रजापति शुभम कुमार महक मीना, इन सब का नाम लेने की आपने रिक्वेस्ट की है, थैंक यू मैम जी। ओके ओके ओके ओके, सोमदत्त जी का भी मेल हमें प्राप्त हो गया है पटियाला पंजाब से, और एक सॉन्ग सुनने की आपने रिक्वेस्ट की है, ज्योति रानी गुरमंत कौर मनु, इन सब का नाम लेने की भी आपने रिक्वेस्ट की है। ओके ओके थैंक यू मेल करने के लिए हमें, ऑलराइट। ओके सुरेश नारंग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना कलरफुल इतना बेहतरीन मैसेज करने के लिए, सहारनपुर से आपने मेल किया हमें। और आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की है। ओके मोहसिन हाशमी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार भरा आदाब, आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मैं आपको मेल कर रहा हूँ, यासीन नाजमा बेगम और साथ में मोहम्मद तौसीफ मोहम्मद कलीम, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, थैंक यू। निसार अली जी, आपका भी मेल हमें प्राप्त हो गया है। और धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया आयान, बाबू प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मेल शामिल कर लीजिएगा, देखिए आपकी मेल शामिल हो गई है। ओके शिवराज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बाबू रिहा पोस्ट बरौली मालिक ज़िला बाराबंकी से आपने मेल किया है और लिखा है एक अच्छा सॉन्ग सुनवा दीजिए। ओके दुर्गराम साहू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें कबीर धाम छत्तीसगढ़ से मेल किया है, किशन मती कुमारी मती इंद्राणी माया, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की थी, कोई भी गीत सुनवा दीजिए, किसी भी गीत के साथ शामिल कर लीजिए। ओके हीरामणि वर्मा जी, आपका मेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। ओके ओके ओके, देखिए किसी का छूट तो नहीं रहा अभी तक। ओके मनोज बंसल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हरियाणा से आपने हमें मेल किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल राइट, तो फिलहाल ये गाना सुनने का जो रिक्वेस्टेड ट्रैक है ना, उसे सुनने का टाइम आ गया है, रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।

ऑलराइट, 2:55 का वक्त हो गया है. चलते चलते कुछ मेल्स हमारे पास और आ गए हैं. जगदीश जी ने मेल किया है मारिया. इन्होंने हमें कहाँ से मेल किया है, ज़िला रतलाम एमपी से मेल किया है आपने. श्रीमती रंजू बाई, युवराज सिंह, शिवांगी, इन सब का नाम लेने की रिक्वेस्ट की और लिखा है किसी भी गीत में बस हमारा मेल शामिल कर लीजिए. आपका मेल शामिल हो गया है. साई गायकवाड़ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. बारिश का मौसम चल रहा है, आपके पसंद को आपकी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए. महाराष्ट्र से आपने मेल किया है. नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार, साई गायकवाड़ जी ने इतने लोगों का नाम लेने की रिक्वेस्ट की, हमने नाम ले लिया. थैंक यू मेल करने के लिए हमें. शिव प्रकाश जी, मैम और सर नमस्ते, मैं शिव प्रकाश फतेहपुर से जो दिल्ली में काम करता हूँ. हमें काम करते करते शाम को ज़ोर से भूख लगती है और जब खाना खाने बैठते हैं तो खाना खाने का मन नहीं करता. क्या ये भी ओ ओ, ओ, ओ ये तो डॉक्टर साहब का सवाल.

आपने कर लिया। डिस्पोजिया के बारे में जो बात हो रही थी, फिलहाल आपने मेल किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। अशोक कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लखीमपुर खीरी से आपका मेल हमें प्राप्त हो गया, गुड आफ्टरनून। और मैंने कोशिश की है कि सभी का मेल शामिल हो जाए, अगर किसी का नहीं हुआ है। कौशिक वाधवान जी गुजरात से आपका मेल अभी अभी हमें मिल गया। केम छो असी मजामा छो, गुड आफ्टरनून विशेज लिख के भेजी हैं। और एक सॉन्ग सुनने की रिक्वेस्ट की, हम पूरी कोशिश करेंगे सॉन्ग प्ले हो, लेकिन फिलहाल इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है इस ट्रैक के साथ। ये भी किसी लिसनर की पसंद का ही सॉन्ग है, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार दो कार्यकाल तक सबसे लंबे अवधि में निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा राष्ट्रव्यापी अभियान चला रही है। इसके तहत आज पार्टी के कई नेता मंदिरों में विशेष पूजा कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की उपलब्धि उनके एक दशक से अधिक के नेतृत्व, जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण को दर्शाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने वाले जन नेता बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भारतीय लोकतंत्र का ये अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उत्तर प्रदेश आरक्षी, नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का आज आखिरी दिन है। प्रथम पाली की परीक्षा दोपहर 12 बजे समाप्त हो गई। द्वितीय पाली की परीक्षा 5 बजे तक चलेगी।

परीक्षा को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के डीजी SB शिरडकर ने बताया कि दोनों पालियों में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, CCTV पहचान सत्यापन और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। आर्थिक अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई को और अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन को आधुनिक तकनीक, सुदृढ़ जांच प्रणाली और प्रभावी अनुश्रवण तंत्र से सशक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में EOW की कार्य प्रणाली एवं प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा पुराने मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी के परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत ट्रांजिशन पूरी तरह सुचारू, श्रमिक केंद्रित और बिना किसी व्यवधान के होना चाहिए। यह एक योजना का परिवर्तन नहीं है, बल्कि करोड़ों मजदूरों के जीवन और आजीविका से जुड़ा विषय है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर,
3: 8700001424।

3:05 मिनट का वक्त हो गया है, प्रोग्राम सतरंगी दुनिया का आगाज़ हो चुका है। अच्छा, ये जो टाइम है ये ऑलरेडी, अगर अभी तक आपने किसी भी कंडीशन की वजह से दोपहर का खाना नहीं खाया, लंच नहीं खाया, तो ऑलरेडी आप काफ़ी टाइम गुजार चुके हैं। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालिए, प्रॉपर हैंड वॉश करिए, खाना खाइए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, उसके बाद वापस अपने काम पे लग जाइए। इसी नोट पर आगाज़ करेंगे इस प्रोग्राम का। और आज प्रोग्राम में क्या डिस्कशन हम करने चाह रहे हैं, वैसे तो मैं ये डिस्कशन करना चाह रही थी प्रीवियस प्रोग्राम्स में, लेकिन मौका नहीं मिल पाया, तो मैंने सोचा था कि अगर कभी मौका मिला तो इस प्रोग्राम में इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। आजकल लोग हेल्दी खाने और साफ़ सफाई पर काफ़ी ध्यान देने लगे हैं, लेकिन फिर भी किचन और खाने पीने से जुड़े कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिन्हें हम सच मानकर बैठे हैं। तो आज खाने से जुड़े ऐसे ही कुछ बड़े मिथ्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, और उनकी प्रैक्टिकलिटी क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सब जानने के लिए आपको रहना पड़ेगा कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की। फिलहाल ये बेहतरीन सा ट्रैक हम सब के लिए।

ऑलराइट, 3:11 का वक्त हो गया है और प्रोग्राम का जब हमने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग की थी, तो हमने आपसे बात की थी कि भाई आप अपना लंच प्रॉपर टाइम पे कर लिया करिए, बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, एक मिथ है और ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये एक्सपर्ट्स का मानना है, मेरा कुछ भी ऐसा इस बारे में मतलब मैं अपने एंड से कुछ भी आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ हम सब में एक मिथ फैला रहता है कि जो फूड पॉइजनिंग होती है ना वो आज जैसे सुबह में आपने

कुछ खाया और शाम तक आपको नहीं पचा तो फूड पॉइजनिंग हो गई। लेकिन हो सकती है, लेकिन कई बार हमें लगता है कि सुबह कुछ गलत खाया है और शाम को इसलिए पेट ख़राब हो गया, लेकिन फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखने में कुछ घंटों से लेकर कई हफ्ते तक का वक्त लग सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पेट में किस तरीके का बैक्टीरिया या वायरस रह गया है। तो ऑल इन ऑल, अगर फूड पॉइजनिंग का आप शिकार होते हैं, आपका पेट ख़राब है, आपको लगता है ये सब कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप विटनेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर से जाके तुरंत संपर्क करिए। और ये मत सोचिए कि भैया पता नहीं वो तो हमने सुबह से तो कोई ऐसी चीज़ खाई नहीं है, पता नहीं कैसे हो गया। मतलब अपने आप से कोई आंकलन ना लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा एक मिथ होता है कि अगर हमने हैंड सैनिटाइज़र लगा लिया है तो हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सैनिटाइज़र उस पॉइंट इन टाइम के लिए है जहाँ पर पानी की सुविधा ना उपलब्ध हो, लेकिन साबुन और पानी का ऑप्शन सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, चाहे वो हैंड वॉश हो, साबुन का कोई भी फॉर्म हो। खाना खाने या बनाने से पहले हाथों को साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह रगड़कर धोना ही सबसे सुरक्षित तरीका होता है, ये एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो इसी नोट पर मेरा दिल चाह गया कि ये वाला बेहतरीन ट्रैक हम मिल करके आपके साथ एंजॉय कर लें। आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ।

right, 3:17 का वक्त और हमें भी आपसे मिलना, आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है. तभी तो आज हमने सोचा प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में डिस्कशन आपसे कर ले कि भाई हेल्दी खाने और साफ सफाई पर काफ़ी ध्यान देने वाले जो लोग हैं ना, उनके मन में कुछ ऐसी बातें होती हैं और बहुत जेन्युइन सी बातें हैं वो. और आज ये टॉपिक हमने इसलिए सोचा कि ले लें भाई, क्योंकि भाई अभी 7 जून को ही हमने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. तो ये दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है. बेसिक जो इसका रीज़न होता है इसे सेलिब्रेट करने का, वो ये नहीं होता है कि भाई सरकारें और खाद्य व्यवसायियों तक ही सीमित रहिए, बल्कि एक उपभोक्ता के रूप में हमें भी अवेयर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. अब अगर इस प्रोग्राम को इसी टॉपिक से जुड़े अगर हम आगे बढ़ाएं, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कच्चे और पके हुए भोजन को हमें हमेशा अलग रखना चाहिए. कच्चे मांस, मछली, पोल्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें आप पके हुए भोजन से अलग रखिए, क्योंकि ऐसा करने से बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं. इसके अलावा भोजन को सुरक्षित तापमान पर पकाना, विशेषकर से जो हैवी फूड्स होते हैं और अगर आप उन्हें नहीं प्रॉपरली पकाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मांस, सूप या फिर अंडे, तो कई बार ऐसा होता है कि वो खाना आप खा तो लेते हैं लेकिन या तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज आपके पेट में चले जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. पके हुए भोजन को कमरे के तापमान पर ज़्यादा देर ना छोड़िए. ख़राब होने वाले खाद्य पदार्थों को तुरंत का तुरंत फ्रिज में रखिए. वैसे तो कोशिश हमें ये करना चाहिए कि जो भी खाना बचा है उसे रेफ्रिजरेट करके यूज़ ज़्यादा कोशिश करें कि ना करें. भाई देखिए, इस कॉन्सेप्ट पे तो हम ये भी बात कर सकते हैं ना कि जो खाना आपने एक टाइम पे खाया उसके बाद कुछ बच गया तो कोई ज़रूरतमंद है उस तक पहुँचा दीजिए. क्यों आपको रेफ्रिजरेट करके उसे खाना है? आप नेक्स्ट मील टाइम पर नया फ्रेश खाना खाइए और इन्जॉय करिए. तो बस इन्जॉय करने से याद आया कि एक और बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक है सिलसिला फिल्म का, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में. हम आपके साथ मिलकर इन्जॉय करेंगे. सो स्टे ट्यून एंड कीप इन्जॉय.

वहमो गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: बजकर 26 मिनट का वक्त हो गया है ऑलमोस्ट। आज इस प्रोग्राम को हम यही वाइंड अप करेंगे क्योंकि भाई कुछ ही देर में एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आप सबका इंतजार कर रहा है। लेकिन चलते चलते ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि इंसान की ज़िंदगी की आप कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो खाना है, भोजन है। पर भोजन तभी जीवनदायी बनता है जब वो सुरक्षित, स्वच्छ और पोषणायुक्त हो। अन्न सिर्फ शरीर की भूख मिटाने का साधन नहीं बल्कि स्वास्थ्य और मानव अस्तित्व का मूलाधार होता है, बेसिक्स होते ही है। तो बस इसी नोट पर वाइंड अप करेंगे इस प्रोग्राम को इस बेहतरीन से ट्रैक के साथ और उसके बाद हम सब एंजॉय करेंगे मिलकर के एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग 100.7 FM रेनबो।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमार राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
3: जी। विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चले एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
3: जी। बिल्कुल आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी

0: समारोह की
1: जी।
0: इसे इथोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
1: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथोपिया में ही हुई थी।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
1: जी।
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
1: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
0: तो क्या हुआ फिर?
1: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
0: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ।
1: जी,
0: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया।
1: जी,
0: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की।
1: जी,
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
1: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
1: जी।
0: हैं। फिर क्या होता है विमलेश?
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी।
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी।
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
1: जी।
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
1: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
1: जी।
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
1: जी। हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक

केरल प्रदेश में थेकड़ी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं।
1: ओह।
2: और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओह, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए

0: 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
1: अच्छा कमल जी,
0: जी
1: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
0: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
1: ओह,

0: ये जगह उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
3: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके,

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ तो सुनीता जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।

0: लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली
1: है। क्यों नहीं कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
0: अच्छा।
1: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है। मतलब ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
2: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
0: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
2: वांडी पेरियार?
0: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
2: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
2: जी,
0: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
2: अच्छा।
0: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
2: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
1: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
0: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
2: अच्छा।
0: और इडुक्की के बाद इसमें नीरियामंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
1: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
0: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलोर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

नमस्कार, 4 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र का यह कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में कहा कि नई व्यवस्था के तहत ट्रांजिशन पूरी तरह सुचारू, श्रमिक केंद्रित और बिना किसी व्यवधान के होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक योजना का परिवर्तन नहीं है, बल्कि करोड़ों मजदूरों के जीवन और आजीविका से जुड़ा विषय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन EOW की कार्यप्रणाली एवं प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा पुराने मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई को और अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन को आधुनिक तकनीक, सुदृढ़ जांच प्रणाली और प्रभावी अनुश्रवण तंत्र से सशक्त किया जाएगा। रक्षा खरीद और उत्कृष्टता के लिए नवाचार और लघु तथा मध्यम उद्यम MSME सहित स्टार्टअप्स के लिए परीक्षण प्रक्रियाओं पर एक कार्यशाला कल नई दिल्ली में

आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य रक्षा ढांचे में एमएसएमई और स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाना है। फेसबुक की कंपनी मेटा ने भारत में अपना पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने की आज घोषणा की। समझौते के अंतर्गत मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएंगी। ये सेंटर भारत के प्रति मेटा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो एआई क्षमताओं को सशक्त बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित होगा।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जी 4:08 का ये वक्त हो रहा है। स्वागत है आप सभी का 100.7 FM रेनबो पर। मैं आपका दोस्त देव आज हाजिर हूँ लेकर आपका ये पसंदीदा शो जिसका नाम है यूथ वेव। वेल यूथ वेव में हर दिन एक अलग सेगमेंट होता है और आज जो सेगमेंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी कि आज जो है वो अर्थ साइंस या फिर साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात होती है। तो आज ही कुछ ऐसा ही टॉपिक और कुछ एक ऐसा ही विषय लेकर आया हूँ आपके लिए, लेकिन वो विषय क्या है, वो टॉपिक क्या है जिस पर मैं आपके साथ थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए नॉनस्टॉप म्यूजिक, एंजॉय करते रहिए म्यूजिक और 100.7 FM के साथ। आज अपने दोस्त देव के साथ बने रहिए। हमारा और आपका ये सफर बहुत ही सुहाना और बहुत ही बढ़िया मजेदार होने वाला है।

आज यूथ वेव में यानी कि जो आज अर्थ साइंस का टॉपिक है वो है नेचुरल डिजास्टर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जी हाँ, नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। अब नेचुरल डिजास्टर्स या प्राकृतिक आपदाएं वो घटनाएं होती हैं जो प्रकृति के कारण अचानक या फिर धीरे धीरे उत्पन्न होती हैं और जनजीवन, संपत्ति, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। इनमें भूकंप, बाढ़, साइक्लोन्स, सूखा, लैंडस्लाइड्स, सुनामीज और फॉरेस्ट फायर्स शामिल हैं। भारत एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा देश है, इसलिए यहाँ कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं। नेचुरल डिजास्टर्स सिर्फ फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक ही नहीं नुकसान पहुंचाते, बल्कि लोगों की जान, स्वास्थ्य और जीविका पर भी गहरा असर डालते हैं। और नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में और भी थोड़ी बहुत चीज़ें और जानेंगे और कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे इस प्रोग्राम में। आके सुनते रहिए 7 FM देव के साथ।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: वेल, धड़कन लखनऊ की आप एंजॉय कर रहे हैं, सुन रहे हैं। 4:20 हो रहा है और 4:25 पर आप सुनेंगे समाचार। लेकिन उससे पहले जो ये टॉपिक है उससे जुड़ी कुछ एक खास बात आपको बताता हूँ कि ये जो आपदा या जो डिजास्टर्स होते हैं इनके कारण क्या होते हैं। वेल, इन आपदाओं के बहुत से कारण होते हैं। कुछ नेचुरल प्रोसेस के कारण होते हैं, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण भूकंप आता है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण साइक्लोन्स और फ्लड्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इन डिजास्टर्स की वजह से घर, सड़कें, पुल और दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो सब तबाह हो सकते हैं, और एग्रीकल्चर को भी नुकसान पहुंचता है, जिससे कि खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ता है। और इसके अलावा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं और कई बार बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स में जो है वो ह्यूमन जो होते हैं, यानी मनुष्य, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वो बहुत बुरी तरह से सफ़र कर सकती है।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक शासनाधीन राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए एनसीबी काडर उप प्रबंधक कुल पद 14, एनसीबी काडर पदधारी प्रबंधक कुल पद 8, एनसीबी काडर समूह प्रबंधक कुल पद 1, काडर कार्यालय सहायक कुल पद 1, एनसीबी काडर पदधारी हिंदी सहायक 1 पद और एनसीबी काडर पदधारी प्रशासन सहायक 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.ncbindia.com। ब्रिक ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान वरिष्ठ प्रबंधक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की विस्तृत शर्तों, आरक्षण आदि की जानकारी के लिए देख सकते हैं आप वेबसाइट www.thsti.res.in। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अल्पकालिक संविदा के आधार पर

0: सलाहकार आईटी की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन पत्र, नियुक्ति के लिए शर्तें और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया देखी जा सकती है इस वेबसाइट पर fci.gov.in। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार पत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर है। ये जानकारी 30 मई से 5 जून 2026 के रोजगार समाचार अंक पर आधारित है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन परियोजना का कार्यान्वयन कर रही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के पद के लिए योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विस्तृत विज्ञापन के लिए कृपया देखिए वेबसाइट www.indianrailways.gov.in। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निदेशक जल संभर विकास, निदेशक जल प्रबंधन, निदेशक वानिकी, एसटीए जल प्रबंधन, एसटीए वानिकी, एसटीए जल संभर विकास या सामाजिक विज्ञान अथवा अर्थशास्त्र, एसटीए कृषि एवं बागवानी तथा एसटीए पशुपालन एवं मत्स्य पालन। आवेदन भेजे जा सकते हैं इस पते पर अनुभाग अधिकारी राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण 8वीं मंजिल प्लांट अथॉरिटी भवन देव प्रकाश शास्त्री मार्ग पूसा नई दिल्ली 110012। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nraa.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: वेल फ्रेंड्स, आप ट्यून्ड हैं 100.7 एफएम पर। अभी आपने रोजगार समाचार सुना और मैं आपका दोस्त हूं देव, आज यूथ वेव में। और आज मैं बात कर रहा हूं नेचुरल डिजास्टर्स और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। वेल ये बात, ये चर्चा और ये शो अभी जारी रहेगा, लेकिन बस एक थोड़ा सा एक और म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। एक गाना बढ़िया मस्त सा प्यारा सा आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर लौट कर आता हूं। फिलहाल वक्त जो है वो ये कह रहा है कि अभी वक्त हो रहा है 4:30 और 49 सेकंड्स।

वेल, अब अगला स्टेप आता है इसके बाद कि कारण आपको पता चल गए, अब डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है उसका महत्व क्या है और इसका महत्व और मतलब क्या है। वेल, इसका मतलब होता है आपदाओं यानी कि डिजास्टर के प्रभाव को कम करने और उनसे निपटने के लिए जो एक योजनाबद्ध कदम होता है उसे उठाना। इसका मेन काम या मुख्य उद्देश्य जान और संपत्ति की रक्षा करना होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ डिजास्टर के बाद रिलीफ देने तक सीमित नहीं है बल्कि डिजास्टर पहले तैयारी करना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि डिजास्टर से पहले जो तैयारी की जाती है वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट से रेस्क्यू ऑपरेशंस तेजी से किए जा सकते हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सकता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो शुरू से शुरू हो जाती है, यानी कि जब डिजास्टर नहीं आ रहा है, जब कोई आपदा नहीं आ रही, उसी समय से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है, पहले से ही प्लान करके रखा जाता है।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
5: डिजास्टर मैनेजमेंट पर आज हम बात करें, डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट में, और कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। अब बात करते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसको मतलब जैसे मैनेजमेंट में

चार चरण होते हैं या फिर चार मुख्य जो है इसको डिवाइड किया गया है चार चरणों में, और वो क्या है? पहला है मिटिगेशन। इसमें डिजास्टर के जोखिम को कम करने के लिए कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाना। दूसरा आता है प्रिपेयर्डनेस, इसमें ट्रेनिंग, अवेयरनेस कैंपेन्स और इमरजेंसी प्लान्स बनाना शामिल है। लोगों को डिजास्टर के समय क्या करना है इसकी जानकारी दी जाती है। और तीसरा है रिस्पॉन्स, डिजास्टर के तुरंत बाद किया जाने वाला काम जिसमें रेस्क्यू, मेडिकल असिस्टेंस और रिलीफ सप्लाई शामिल होती है। और चौथा होता है रिकवरी, इसमें डिजास्टर के बाद किए जाने वाले काम है जिसमें कि रेस्क्यू, मेडिकल असिस्टेंस, रिलीफ सप्लाई और उसके बाद जो है लोगों को सही जगह पहुंचाना, उनकी मदद करना, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इस तरह से जो चार चरण हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट के होते हैं। फिलहाल वक्त हो गया 4:43, मैं हूँ देव आपके साथ।

वेल, डिजास्टर से बचाव कैसे कर सकते हैं? नेचुरल डिजास्टर को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। स्कूल्स और कम्युनिटीज में डिजास्टर प्रिपेयरनेस ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम का यूज करके लोगों को समय पर सूचित किया जा सकता है। पेड़ लगा सकते हैं। जल संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना आवश्यक है, और यही सब जो है प्रयास कर सकते हैं, और इससे जो है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है।

अगले प्रोग्राम में आपसे मिलता हूँ, सुनते रहे 100.7 FM देव के साथ आज फिलहाल 8 बजे तक, और अभी वक्त हो रहा 4:56 लेकर आ रहा हूँ अगला प्रोग्राम FM Top 10, एंजॉय कीजिए।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: वेल 4:55 हो रहे हैं और बस यहाँ से विदा लेने का, आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया, लेकिन नेचुरल डिज़ास्टर्स जो है वो, उसकी जानकारी तो आपके साथ पूरी शेयर ज़रूर करूँगा। वेल नेचुरल डिज़ास्टर्स मनुष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भाई सही प्लानिंग, अवेयरनेस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ज़रिए उनके जो हानिकारक प्रभाव हैं, जो इफ़ेक्ट्स रहते हैं, उनको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस और सेफ्टी मेजर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और ताकि किसी भी आपदा के समय या किसी भी डिजास्टर के समय जान और प्रॉपर्टी की रक्षा की जा सके। तो वेल यूथवेव से दीजिए इजाजत देव को, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा।

शाम के 5 बजे हैं, अब सुनिए समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की उपलब्धि पर चर्चा की गई। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी

मुर्मू ने श्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र का यह कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री के देश में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने पर पूरे प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। जौनपुर के श्री गौरी शंकर धाम मंदिर में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री डॉ धर्मवीर प्रजापति अयोध्या में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। देवरिया के सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा पाठ एवं हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कानपुर देहात में पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए तथा टीबी मरीजों को पोषण पोटली प्रदान की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली एवं प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा पुराने मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई को और अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन को आधुनिक तकनीक, सुदृढ़ जांच प्रणाली और प्रभावी अनुश्रवण तंत्र से सशक्त किया जाएगा। प्रदेश भर में खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच कृषि विभाग ने किसानों को मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए नई रणनीति अपनाने का आह्वान किया है। वाराणसी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस वर्ष श्री अन्न और तिलहन फसलों के रकबे को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी में परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में कहा कि यह सिर्फ एक योजना का परिवर्तन नहीं है बल्कि करोड़ों मजदूरों के जीवन और आजीविका से जुड़ा विषय है। इस बुलेटिन इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित होगा।

वेल फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। जैसे मैंने वादा किया था कि ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा और ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बस आपके पास हूँ, आपके करीब हूँ और जल्द वापस आऊंगा। और देखिए आ गया मैं। 5:03 और 53 सेकंड का ये वक्त हो रहा है और ये अगला प्रोग्राम जिसका नाम पता है ना आपको, जी हाँ, यूथ वेव के बाद ये अगला प्रोग्राम है जिसका नाम है FM Top 10। 5 बज चुके हैं और आज इसमें 10 सबसे जो गाने होते हैं, मतलब जो काउंटडाउन होता है, वो हम आप तक पहुंचाते हैं अलग अलग सालों के। तो आज जो साल मैंने चुना है वो 1992 यानी कि 1992, और इस साल में के जो 10 प्रभावी गीत थे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और सबसे पहले पहला गीत यानी कि पायदान नंबर 10 पर, और काउंटडाउन नंबर जो ये शुरू है 10 नंबर पर जो गीत है वो आप तक पहले पहुंचा रहा हूं। और ये गाना कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया है और गाने में शाहरुख खान और उर्मिला

जो साल मैंने चुना है वो 1992 यानी कि 1992, और इस साल में के जो 10 प्रभावी गीत थे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और सबसे पहले पहला गीत यानी कि पायदान नंबर 10 पर, और काउंटडाउन नंबर जो ये शुरू है 10 नंबर पर जो गीत है वो आप तक पहले पहुंचा रहा हूं। और ये गाना कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया है, और गाने में शाहरुख खान और उर्मिला मातोंडकर हैं। बोल है आनंद बख्शी के, कुछ कुछ अंदाज़ आपको ज़रूर लग रहा होगा। और मैं आपका दोस्त देव साथ दूंगा इस प्रोग्राम में 100.7 FM पर। बने रहिए और सुनते रहिए, इन्जॉय करते रहिए।

वेल, 10 नंबर के पायदान पर आपने ये गाना सुना, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब 9वें नंबर पर कौन सा गाना है, बिल्कुल बताएंगे आपको और आपको सुनवाएंगे भी। इसमें भी आवाजें हैं कुमार सानू की और साथ में हैं उनके पूर्णिमा। म्यूजिक कंपोज किया है आनंद मिलिंद ने और लिरिक्स हैं समीर के। 90s के दौर में समीर ऐसे गीतकार थे जिनकी लिरिक्स लगभग हर फिल्म में होते थे। गाने जो हैं वो मतलब काफ़ी सफल और काफ़ी अच्छे गाने उन्होंने लिखे। 90s के जितने भी गाने मोस्टली समीर के लिखे हुए, उनके गाने पसंद भी किए जाते थे। फिलहाल देर ना करते हुए आपको ये गाना सुनवा रहा हूँ। फिल्म है बोल राधा बोल, इसके मुख्य कलाकार ऋषि कपूर और जूही चावला।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
5: वेल, FM रेनबो FM टॉप 10 का ये सफर शुरू हो चुका है। नंबर 10 और नंबर 9 के गाने आपने सुन लिए। अब वक्त है नंबर 8 पे कौन सा गाना है ये आपको बताने का। और ये गाना भी काफ़ी हिट हुआ था अपने समय में, यानी कि 1992 में, उसके बाद भी और लोग आज भी पसंद करते हैं। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं विजू शाह। फिल्म में काफ़ी सारे कलाकार थे, यानी कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। और अब अंदाज़ा लगा होगा आपको या फिर नहीं लगा, तो मैं बता रहा हूँ, फिल्म है विश्वात्मा। और चलिए नंबर 8 पर विश्वात्मा से कौन सा गाना है ये वाला।

वेल, अगला गाना जो है यानी कि पायदान नंबर 7 पर और 10 9 8 के बाद अब वक्त है 7 का और ये जो गाना है जिस फिल्म से है ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी और इस फिल्म के गाने काफी सारे थे जो कि लोगों ने पसंद किए थे और इस फिल्म से एक एक्टर ने डेब्यू किया था उस एक्टर का नाम था पृथ्वी ये उनकी डेब्यू फिल्म थी हालांकि उसके बाद ये वो एक बहुत बड़ी संभावना देख रहे थे लोग उनमें लेकिन उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा सफल नहीं हो पाए और कुछ फिल्में की और उसके बाद फिर सीन से ये गायब हो गए। फिलहाल साथ में इनके इस फिल्म में थी दिव्या भारती, नवाब आरजू का लिखा और कुमार सानू का गाया ये गाना है और कंपोजिशन है नदीम श्रवण की।

वेल 10, 9, 8, 7 और उसके बाद वक्त आता है 6 का, यानी कि लगभग आधा सफर हम तय करने जा रहे हैं. और ये जो 6 नंबर के पायदान पर ये काउंटडाउन जो शुरू हुआ, अब हम पहुंचे हैं नंबर 6 पर. और 6 पर कौन सा गाना, ये जल्द आपको पता चलेगा. और इसे भी कंपोज किया है नदीम श्रवण ने, लेकिन इस फिल्म में रोनित रॉय और फरहीन है. जी, 90s में बहुत सारे एक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने फिल्में तो अच्छी की थी, गाने भी चले थे, लेकिन उसके बाद फिर शायद वो एक्टर्स आगे वो उस चीज़ को उतना कैरी नहीं कर पाए. और हालांकि अच्छे एक्टर्स थे, जैसे कि रोनित रॉय के बारे में माना जाता है. हालांकि वो अभी भी कुछ फिल्में कर रहे हैं, अब उनका कमबैक हुआ, लेकिन वैसा नहीं जैसा उन्होंने पहली फिल्म से अपना जो है वो डेब्यू किया था. फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए. ये है पायदान नंबर 6 का गाना, यानी आधा सफर हमने तय कर लिया है.

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: वेल, आधा सफर तय हो चुका है, 5:33 हो रहे हैं। मैं हूं देव आपके साथ लेकर FM टॉप 10 और पायदान नंबर 5 पर कौन

गाना वो जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो फिल्म है, मतलब जिस फिल्म से ये गाना है, ये मणि रत्नम की 1988 की तमिल फिल्म अग्नि नट चतिरम की रीमेक थी और समीर ने गाने लिखे थे और आनंद मिलिंद का संगीत था। हालांकि फिल्म भी ठीक ठाक चली थी और इसका ये गाना जो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि नंबर 5 पर है, ये काफ़ी पसंद किया गया था।

well, नंबर चार पर यानी कि पायदान नंबर चार पर जो गाना है वो जरूर आपको सुनाएंगे. और आपको बता दें कि इसमें म्यूजिक जतिन ललित का है और फिल्म है जो जीता वही सिकंदर. इसमें आमिर खान और आयशा जुल्का आपको नजर आएंगे. और बताएं आपको इसके फिल्म, ये जो फिल्म थी, इस फिल्म में अक्षय कुमार ने भी ऑडिशन दिया था लेकिन किसी वजह से उन्हें नहीं लिया गया. और दीपक तिजोरी वाला जो रोल है वो पहले मिलिंद सोमन कर रहे थे और उन्होंने लगभग 75% इस रोल की शूटिंग कर ली थी और उसके बाद उन्हें रिप्लेस किया गया दीपक तिजोरी से. फिलहाल इस गाने के लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी के हैं और गाना आपके सामने है.

वेल, अब बढ़ते हैं आगे। 5:44 का ये वक्त हो रहा है और अब देखते हैं कि हमारे नंबर 9 के काउंटडाउन पे कौन सा है जी। ये और ये जो फिल्म है नंबर 9, नंबर 3 जी हाँ, ये है फिल्म खिलाड़ी से और गाना बिल्कुल आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा और ये इसमें आवाज़ है अभिजीत की और अलका याग्निक की है। म्यूज़िक जतिन ललित का और फिल्म अब्बास मस्तान की एक एक्शन थ्रिलर थी।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: वेल, पायदान नंबर दो पर हम पहुंच गए हैं और इस पायदान पर कौन सा गाना है जरूर पता चलेगा आपको। और ये है फिल्म दीवाना से और ये एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी और इसमें आवाज विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की है। म्यूजिक नदीम श्रवण का है और लिरिक्स जी जैसे कि उस समय 90s में चलते थे समीर, उनका म्यूजिक, उनकी लिरिक्स।

well, 10 नंबर के पायदान से लेके हम 2 नंबर तक पहुंच गए और एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। 10 नंबर पर इस प्यार से फिल्म चमत्कार, 9 पे तू तू तू तू तारा, 8 पर सात समंदर पार और 7वें पर दिल जिगर नजर, 6ठे पर फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा जान तेरे नाम से और 5वें पायदान पर आके तेरी बाहों में और 4ठे पर पहला नशा, 3रे पर वादा रहा और 2रे पर ऐसी दीवानगी फिल्म दीवाना से जो इस वक्त आप सुन रहे हैं। और अब हम बढ़ते हैं नंबर 1 पर यानी कि पायदान पर। टॉप गीत, टॉप गाना कौन सा है उस साल का? और बता दें आपको कि 1992 के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से ये फिल्म थी और इसमें उदित नारायण और अनुराधा पौड़वाल की आवाज है, म्यूजिक आनंद मिलिंद का, और ये सेकेंड बेस्ट सेलिंग एल्बम थी उस साल की और उसी एल्बम से, उसी फिल्म से ये गाना। चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं, फिल्म है बेटा। वेल, म्यूजिक से आप समझ गए होंगे कि कौन सा गाना है, तो इस गाने को ये नंबर 1 पर एंजॉय कीजिए और दीजिए इजाजत देव को फिलहाल अभी इस प्रोग्राम से, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मेरा और आपका साथ 8 बजे तक बना हुआ है।

नमस्कार, 6 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यह बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में हो रही है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया है। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के देश में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने पर पूरे प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति अयोध्या में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कानपुर देहात में पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए तथा टीबी मरीजों को पोषण पोटली प्रदान की गई। प्रदेश में खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच कृषि विभाग ने किसानों को मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए नई रणनीति अपनाने का आह्वान किया है। वाराणसी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस वर्ष श्री अन्न और तिलहन फसलों के रकबे को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू की आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों तथा संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए 1183 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षार्थियों को सघन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल ने 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। वहीं राज्य परिवहन निगम रियायती दरों पर बसों की सुविधा प्रदान कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग ने कल और 12 जून के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बिजली कड़कने, आंधी के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। बाराबंकी के गोपालपुर गांव के पास आज एक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया गया है। आरोपी चालक की तलाश जारी है। इस बुलेटिन में इतना ही। 7 बजे सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज़।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: भले 6:08 का ये वक्त हो रहा है और शाम अवध में आप सभी का स्वागत है 100.7 FM पर और मैं हूँ एक बार फिर से आपका दोस्त वही पुराना जो पिछले 2 घंटे से है आपके साथ यानी कि देव। वेल एंजॉय कीजिए ये सफ़र एक और मेरे साथ इस घंटे का और उसके बाद फिर तो पता है आपको कि आपको हेलो बोलना है और आपकी फरमाइशें हम पूरी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सेगमेंट ज़रूरी है जिसका नाम है शाम अवध। वेल बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास, बहुत सी

हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, हमारे साथ बैठना पड़ेगा और इन्जॉय करना पड़ेगा म्यूज़िक। तो चलिए शुरू करते हैं इस कारवां को, और एक गीत तो आपने सुना, एक और आपको सुनवाते हैं, और फिर कुछ लखनऊ की, कुछ अवध की, कुछ ज़रूरी बातें आपसे ज़रूर करूँगा।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ, सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की 100.7। और ये शाम है और शामी अवध ये प्रोग्राम है, ये जो आप शो हैं सुन रहे हैं। और शाम होते होते अच्छी खबर ये आ गई है कि भैया जो है मौसम वैज्ञानिकों ने बता दिया कि अगले दो दिन में कुछ जो है आपको इस गर्मी से, इस चिलचिलाती धूप से, इस पिचपिचाती गर्मी से जो है वो राहत मिलने वाली है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा करवट लेने वाला है, थोड़ा सा बदलने वाला है और कहीं कहीं आंधी बौछार हो सकती है और पानी भी गिर सकता है, बरसात भी हो सकती है। उसे खैर अब पिछली बार जब हुआ था तो कुछ जगहों पे जानमाल का भी नुकसान हुआ था, तो ऐसा ना हो अगर हम तो यही चाहेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत अगर बारिश होती है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आंधी आती है, तो कम से कम जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और लोगों को, हम सभी को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी। फिलहाल आपको राहत मिलती है इस धूप से जब आप घर में रहते हैं और इन्जॉय करते रहते हैं 100.7।

7, क्योंकि ये म्यूजिक का डोज आपको मिलता है यहाँ पर लगातार, और साथ ही साथ आप एंजॉय करते रहें नॉन स्टॉप म्यूजिक, क्योंकि कहीं बाहर जाने की इस धूप में कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, किसके यहाँ जाएंगे, हर कोई तो अपने घर के अंदर है और बाहर निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो धूप की मार है वो तबीयत खराब कर सकती है ना। तो फिलहाल हमारा म्यूजिक जो है वो आपकी तबीयत अच्छी कर देगा।

वेल, ऐसा एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की पीएचडी पांच टाइम प्रवेश यानी कि 2025-26 के तहत बायोकेमिस्ट्री और एजुकेशन के विषयों से जो भी सिलेक्ट हुए हैं, जो भी अभ्यर्थी, जो भी एप्लीकेंट्स, उनके परिणाम रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं और जो भी चुने गए हैं, जो भी अभ्यर्थी, वो अपनी लॉगिन आईडी से जो है अपनी फीस जमा कर सकते हैं। और ये जो जमा करने की तिथि है, जो तारीख है, वो 12 जून है। तो इस बात का ध्यान रखें और अपनी फीस टाइम पर जमा कर दें।

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: वेल, आपको बताएं कि डाक अदालत जो है वो ऑर्गेनाइज होने वाली है 1 जुलाई को। पोस्टमास्टर जनरल मुख्यालय जो परिक्षेत्र कार्यालय में 1 जुलाई को 2:30 बजे से डाक अदालत लगाई जाएगी और डाक सेवा से संबंधित जो भी मामले हैं वो याचिका 19 जून तक प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब जिनकी भी कोई शिकायतें हैं, कोई प्रॉब्लम है और कोई भी मामला है अगर, तो वो 19 जून तक जो है वो अपनी समस्या जो है उसे संबंधित इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये जो है ऐसे मामलों पर विचार किया जाएगा जिन्हें पहले प्रवर डाक अधीक्षक या फिर डाक अधीक्षक स्तर पर होने वाली डाक अदालत में उठाया जा चुका है, यानी कि कोई भी नया मामला अगर आपका है तो वो इसमें डिस्कस नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें और अपनी अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप इस अदालत में जाकर उसका लाभ ले सकते हैं 1 जुलाई को। लेकिन हाँ, जो भी आपकी याचिका है वो 19 जून तक ज़रूर आप अपनी प्रस्तुत कर दें।

वेल, एक और एग्जाम अभी हुआ है काली है और इसका परिणाम जल्दी आने वाला है। कौन सा है वो एग्जाम जरूर आपको बताएंगे। और ये है संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद यानी कि JEE CUP द्वारा आयोजित तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा मंगलवार को समाप्त हो गई यानी कि कल। और काफ़ी लोगों ने इसमें एग्ज़ाम दिया और काफ़ी लोग ने जो है वो स्किप भी कर दिया। हालांकि एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो गया है और इसका रिजल्ट जल्द आने वाला है और ये 20 जून को जो है इसका रिजल्ट आने की संभावना है। और परिणाम यानी कि रिजल्ट आने के बाद ही काउंसलिंग की डेट भी डिसाइड कर ली जाएगी। तो भाई आप अपडेट रहिए और देखिए 20 जून के आसपास आपका जो रिजल्ट है उसमें आपने क्या स्कोर किया, उसके बाद आपकी काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: वेल 6:51 हो रहा है और जो भी टूरिस्ट अब आएंगे ना उनको भारतीय परंपराओं से अब परिचित कराया जाएगा। वो कैसे होगा बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश संस्कृति संग्रहालय म्यूजियम एंड रिचुअल सेंटर में जो भी टूरिस्ट होंगे उनको भारतीय संस्कृति परंपराओं और रीति रिवाजों से परिचित कराया जाएगा और लखनऊ में ये सेंटर डेवलप हो रहा है। इस सेंटर का क्यूरेशन का जो काम है उसकी मतलब डिज़ाइन जो वो आखिरी दौर में है और जल्दी ये शुरू हो जाएगा। बख्शी का तालाब क्षेत्र में बनाए जा रहे इस सेंटर में मतलब जन्म से लेकर मरने तक यानी कि मृत्यु तक भारतीय जीवन यात्रा और अर्थ धर्म काम और मोक्ष जैसे जो है इनको केंद्र में रखा जाएगा और आधुनिक तकनीकों टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जैसे 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, पैनोरामिक वीडियो वॉल से इन सारी जो है इनको दर्शाया जाएगा और सारी प्रस्तुतियां इनके द्वारा होंगी। तो चलिए एक अच्छा कार्य कि जो भी टूरिस्ट आएंगे उत्तर प्रदेश में उन सबको जो है भारतीय संस्कृति का ज्ञान और ज़्यादा मिलेगा और जो भी है मतलब जो भी हमारा धर्म है जो भी इससे करीब जाएंगे और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शायद बहुत लोगों को नहीं पता हैं उसका ज्ञान उसकी जानकारी सबको मिलेगी।

वेल, अब वक्त ये कह रहा है कि इजाजत लेनी होगी, क्योंकि बस अगले प्रोग्राम के इंतजार आप सभी को है, जिसमें आप डायल करते हैं नंबर हमारा और हम पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। तो बने रहिए और सुनते रहिए 107 FM। फिलहाल दीजिए देव को इजाजत, इस प्रोग्राम से मिलता हूँ अगले प्रोग्राम में।

नमस्कार, 7 बजे आप सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर आज प्रस्ताव किया पारित। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हो रही है एनडीए की बैठक। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं समेत भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल। प्रधानमंत्री ने किया बैठक को संबोधित। सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री के रूप में देश सेवा करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी प्रधानमंत्री को बधाई। कहा, देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है यह कीर्तिमान। प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय तक निर्वाचित पीएम के रूप में सेवा करने पर आज प्रदेश भर में हुआ विविध कार्यक्रमों का आयोजन। लखनऊ, अयोध्या, जौनपुर, वाराणसी में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न। कानपुर देहात में बांटे गए आयुष्मान कार्ड। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिली सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ से अधिक की धनराशि। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। सभी 75 जिलों में बनाए गए 1,183 परीक्षा केंद्रों पर रही सीसीटीवी की निगरानी। कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों को मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए नई रणनीति बनाने का किया आह्वान। वाराणसी में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने श्री अन्न और तिलहन फसलों के रकबे को बढ़ाने पर दिया विशेष जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा। सीएम ने आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीएम डैशबोर्ड पर संचालित विकास कार्यों की नवीनतम रैंकिंग की जारी। उत्कृष्ट कार्यों के लिए औरैया के डीएम ब्रिजेश कुमार को मिला पहला स्थान। दूसरे स्थान पर रहे जालौन के जिलाधिकारी राजेश पांडे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बिजली कड़कने और आंधी की चेतावनी की जारी। ओलावृष्टि की भी जताई आशंका। इस बुलेटिन में इतना ही। 7:20 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार।

जी हाँ, जिसे हर दिल गुनगुनाए, और अभी आपका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा होगा और बहुत ज़ोर से गुनगुना रहा होगा, क्योंकि अब वक्त है कि हो सकता है ये आपका नंबर लग जाए, आपकी लॉटरी लग जाए, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है हेलो एफएम, जिसमें आप डायल करते हैं हमारा नंबर और भाई आपसे होती है थोड़ी गुफ्तगू, थोड़ी बातचीत, और उसके बाद हम आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज किसका नंबर लगेगा और किसकी लॉटरी लगेगी और किसकी किस्मत चमकेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये ट्रैक आप तक भेज रहा हूँ और तब तक आप नंबर डायल करना हमारा शुरू कर दीजिए जल्द से जल्द, और मेरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो कॉलर्स हैं उन्हें लिया जाए और भले ही छोटी बातचीत हो, थोड़ी बातचीत हो, उनके पसंद के गाने बजा सकें और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम हमारे श्रोताओं को इंक्लूड कर सकें। तो चलिए हो जाइए।

0: हेलो।
1: हाँ भाई साहब,
0: जी जी नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं?
1: नमस्कार, हम श्री प्रकाश तिवारी उन्नाव से भाई साहब बोल रहे हैं।
0: अच्छा जी, बताइए।
1: बताया तो आपसे
0: नहीं
1: आपको
0: नहीं उन्नाव से? नहीं, वो तो ठीक है, आपने बताया, आपका गाना भी निकल गया है बिल्कुल, आप अभी आप सुनेंगे भी, लेकिन कुछ
1: हाँ
0: थोड़ी बातचीत तो करेंगे।
1: नहीं बिल्कुल कीजिए।
0: जी बताइए, उन्नाव से आप कहाँ से? उन्नाव में कहाँ?
1: उन्नाव से आप जैतीपुर हरौनी के पास में है भाई साहब, जैतीपुर
0: अच्छा, जातीपुर
1: वहीं
0: के
1: से बोल रहे
0: पास।
1: हैं। हाँ
0: अच्छा, इस वक्त कहाँ पे? अपने घर से हैं या फिर बाहर आपने फोन मिलाया बाहर
1: नहीं
0: से?
1: नहीं घर पे हैं भाई साहब।
0: ओके, तो कैसी मौसम, कैसे चल रहा है? वैसे अभी तो पता चला है कि एक दो दिन में कुछ थोड़ी राहत मिलने वाली है गर्मी से।
1: हाँ राहत मिलने वाली आज कुछ बदली टाइप की थी भाई साहब, पानी तो अभी गिरा नहीं। अरे
0: नहीं, अभी तो नहीं गिरा, वो मौसम वैज्ञानिक बता रहे कि एक दो दिन में हो सकती है कुछ बात।
1: तो भाई साहब आपके मुंह में घी शक्कर।
0: नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, मैं तो उनकी बात आप
1: अच्छा
0: तक पहुंचा रहा हूँ।
1: अच्छा भाई साहब,
0: तो चलिए, और अकेले हैं इस
1: हाँ
0: वक्त? आपके साथ
1: डेली,
0: भी मतलब दोस्त लोग हैं साथ में या परिवार के लोग हैं इस
1: हाँ तो
0: वक्त?
1: डेली डेली चेक कर रहे हैं भाई साहब।
0: हाँ जी बताइए।
1: सबसे पहले आपको, आपकी टीम को भाई साहब,
0: चलिए
1: और
0: शुक्रिया।
1: हमारे बाबू अंसारी भाई हैं, परवीन अंसारी हैं, नवनीत हैं, ओंकार हैं, संतोष है, सत्यम है, और रिंकी पिंकी हैं, और हरिकेश भाई, बस।
0: और आपने जो गाना चूज किया है 70s का है ना?
1: हाँ भाई साहब, हम
0: और
1: पुराने गाने ज्यादा सुनते हैं
0: जी,
1: भाई
0: काका
1: साहब।
0: पसंद है आपको, राजेश खन्ना?
1: हाँ बिल्कुल पसंद है। और भाई साहब आपका शुभ नाम नहीं पूछा हमने।
0: मैं देव बोल रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: तो चलिए एंजॉय कीजिए अपना गाना, ये सुनिए और अपने साथ अपने परिवार के साथ इसको एंजॉय कीजिए, ठीक है? फिर दोबारा
1: ठीक
0: आपसे होगी
1: ठीक
0: बात।
1: ठीक ठीक भाई साहब, नमस्ते।
0: ओके ओके।

0: और चलिए देखते हैं जल्दी से, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है और उसके बाद समाचारों को भी वक्त हो जाएगा, तो जल्दी से एक कॉलर और ले लेते हैं। हेलो।
1: इतना कोई चाहे तो बताना, पलकों पे कोई बिठाए तो बताना।
0: जी बिल्कुल बताइए।
1: इतना कोई चाहे तो बताना, पलकों पे कोई बिठाए तो बताना, मोहब्बत तो कर लेगा हर कोई, मोहब्बत तो कर लेगा हर कोई, पर मेरी तरह कोई निभाए तो बताना।
0: क्या बात
1: मेरी
0: है, क्या
1: तरह
0: बात
1: कोई
0: है?
1: निभाए तो बताना।
0: जी जी अब ये जो लाइनें। जी वालेकुम अस्सलाम।
1: और बताइए आप कैसे हैं?
0: अरे हम तो बढ़िया, लेकिन ये जो लाइनें जिन्होंने सुनाई है उनका शुभ नाम जान सकते हैं?
1: जिला सीतापुर पचानापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं सर।
0: क्या
1: और बताइए आप कैसे हैं?
0: भी हम बिल्कुल अच्छे हैं। और शमा जी, शमा परवीन अंसारी आपने पूरा नाम बताया, हम बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप भी एंजॉय कर रही होंगी अभी।
1: जी बिल्कुल, 4 बजे से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सर, बहुत धमाकेदार प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के सर। जल्दी आया करो, आप काफी दिनों के बाद आए हैं आप।
0: जी जी हो कोशिश रहती है, लेकिन कभी कभी कुछ बात होती है ना। वेल आगे चलिए आपकी बात ध्यान रखेंगे और कोशिश।
1: जल्दी आना सर, इंतजार इतना मत करवाना।
0: ठीक ठीक चलिए, आपकी बात जो है उसको हम ध्यान में रखेंगे। और ये बताइए कि इस वक्त क्या हो रहा था? गाना तो आप सुन रही थी, साथ ही साथ कुछ और काम वाम चल रहा था?
1: साथ ही साथ आपको याद कर रहे थे और फोन कर रहे थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलिए आपने याद कर लिया और आपका नंबर भी लग गया, हम भी आगे सारी चीजें एक साथ मिल गई और आपकी पसंद का गाना जो है वो भी हम प्ले करने वाले हैं।
1: जी
0: है ना?
1: और हम गाना डेडिकेट करना चाहते हैं।
0: जी बताइए।
1: सबसे पहले आपको
0: थैंक यू,
1: फिर मेरी छोटी बहन तरन्नुम अंसारी,
0: ओके,
1: और छोटी बहन मेरी एजल नूर अंसारी, और साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम और गुलाब साप्पी, और मोहम्मद फैज भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, वकील अहमद मजदूरी, और जो ये दादाजी हमारे अभी फोन किए थे, श्री प्रकाश दादाजी और मिंटू तिवारी अंकल, जावेद अख्तर भाई, जितने सुन रहे हैं सभी सुनने वालों को सुनवाना चाहते हैं सर।
0: चलिए चलिए, उन सभी को आपकी तरफ से गाना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बाय।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में भाजपा के शीर्ष नेता एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और 2047 तक देश को विकसित देश में बदलने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन और नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री मोदी को बधाई दी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई।
2: राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एवं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु उनके नेतृत्व की प्रशंसा करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का ये अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। इस क्रम में लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं अयोध्या समेत जौनपुर के श्री गौरी शंकर धाम मंदिर

0: देवरिया के सोमनाथ मंदिर और राज्य के अन्य मंदिरों में विशेष पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया गया। कानपुर देहात में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रसाद वितरण, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अनेक नई उपलब्धियां हासिल की हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: आकाशवाणी समाचार। सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 2,300,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी जीराम जी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों के लिए इंटरिम अवलोकेशन में उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक 9,721 करोड़ 48,00,000 रुपए धनराशि की व्यवस्था है। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन EOW की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने EOW की आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच, विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए 1,183 परीक्षा केंद्रों पर CCTV की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री

0: योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और अब सुनिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 की डेली अपडेट्स।
2: England goalkeeper Craig Gordon, he's been describing how it feels to realise his World Cup dream at the age of 43.
3: Magnificent to be here after all the years of trying, not only personally but as a country to get here. So yeah, delighted to be here. It feels like it's getting real now. The first few weeks have been preparation, everything's been going really well. And now we're finally here. We're the last few days away from getting into the games for real now.
2: Mexico, along with the USA and Canada, is one of the host nations for the World Cup. Well, the former Mexico international Joaquin Beltran has told the BBC they're really excited for the tournament to start on Thursday.
4: We have 3 stadiums, Monterrey, Guadalajara and Mexico City, ready to receive the people of Colombia, Uzbekistan, Korea, South Africa. Everyone is talking about the 13 games we will host, so it's a very special time for us.
2: And for more World Cup news from the BBC, go to bbc.com/football.
5: World Football Update from the BBC.
1: अभी आप सुन रहे थे फीफा वर्ल्ड कप की डेली अपडेट्स। और आइए अब देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर है, चलिए देखते हैं, बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो
6: हेलो हेलो
1: हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी।
6: जी सर, आ रही है आपकी?
1: जी बिल्कुल आ रही है, बताइए अपना नाम बताइए सबसे पहले। जी वालेकुम अस्सलाम।
6: साहिबा अंसारी, मैं वगंगिरा लखीमपुर खीरी से बोल रही
1: हूँ। लखीमपुर से इस वक्त साहिबा जी बोल रही हैं। साहिबा जी क्या कर रही थी अभी आप?
6: सर बाहर बच्चे हवा खा रहे थे, वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी।
1: और थोड़ा ज्यादा आपको होल्ड करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा है ना?
6: जी सर कोई बात नहीं।
1: अच्छा ये बताइए कि इंतजार कितना मन, जब नंबर लग जाए तो कैसा लगता है, कि जल्दी जल्दी आ जाए कि या फिर इंतजार जितना
6: अच्छा लगता है?
1: नहीं, इंतजार करना उसके बाद अच्छा नहीं लगता, या फिर चलिए जितना अगर ज्यादा इंतजार करना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं?
6: सर कोई दिक्कत नहीं, बस फोन उठ जाए, फोन कटे ना
1: बात हो जाए और अपनी पसंद का गाना बज जाए तो फिर उसके बाद तो मतलब बढ़िया ही।
6: गाना भी ना बजे सर कोई बात नहीं,
1: मतलब बस बात हो जाए है ना?
6: जी सर बस बात हो जाए।
1: तो साहिबा जी अभी इस वक्त तो आप घर पे ही हैं और आपका वहाँ मौसम भी तो गर्म हुआ, लेकिन अभी पता है आपको कि अभी एक दो दिन में जो है वो थोड़ी जो है
6: हमारे वहाँ अभी से मौसम ठंडा हो गया है।
1: अभी से हो गया मतलब
6: वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है,
1: मतलब बस बात निकली है कि अगले एक दो दिन में जो है मौसम थोड़ा बदलेगा। और शाम से देखिए बदलने लगा आपके यहाँ।
6: हमारे वहाँ बहुत मौसम ठंडा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है।
1: कहाँ पे इस वक्त, मतलब घर के बाहर आंगन में है, खेत में है या फिर छत पे है?
6: घर के आंगन में है।
1: ओके, और साथ में
6: मम्मी है, छोटी बहन है हमारी।
1: क्या बात है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हो, आपकी पसंद का ये जो गाना है वो हम प्ले करते हैं ताकि आपका गाना जो है वो आप पूरा सुन सके।
6: करना है सर हमें।
1: जी हाँ डेडिकेट।
6: जी सर
1: जी बिल्कुल डेडिकेट कीजिए, किसको करना है?
6: सबसे पहले आप है।
1: चलिए थैंक यू सो मच।
6: मोहम्मद आसिफ भाई है, मोहम्मद तेज भाई है, अकेले अहमद मंसूरी भाई है, समापी है, गुलाब साफी है, महक अंसारी है, आदिया अंसारी है, रिंकी पिंकी है, रोशनी भी है, प्रीति
1: जी जी,
6: सत्यम कुमार, राशिद अंसारी भाई।
1: चलिए इन सभी को
6: सबको सर।
1: जी बिल्कुल। और ये जो गाना आपने चूज किया, आपने कहा था कि गाना पता है लेकिन फिल्म नहीं पता, तो मैं आपको फिल्म बता देता हूँ, आपकी जानकारी थोड़ी बढ़ जाएगी। जी के है ना?
6: जी सर बताइए।
1: ये गाना जो है फिल्म प्यासा सावन से है, ठीक है, यही वाला है ना?

0: वेल अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं किसी को भी, क्योंकि नंबर किसी का भी लग सकता है। और देखिए जल्दी से हमारे पास इस वक्त एक कॉलर आ गई हैं और उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं गई और उन्होंने ट्राई करते रहीं और आखिर में उनका नंबर लग गया। हेलो,
1: गुड इवनिंग सर।
0: जी गुड इवनिंग,
1: मैं रोहिणी ग्राम हरदोई से बोल रही हूँ।
0: हरदोई से रोहिणी बोल रही हैं, राइट। तो रोहिणी क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ाई करती
0: हूँ। गुड, कौन सी क्लास में हैं आप? 11th में।
1: हाँ।
0: यानी अगले साल बोर्ड्स हैं आपके, है ना?
1: हाँ
0: सर। अच्छा, तो कैसा लगता है बोर्ड का एग्जाम? तो आप टेंथ वाला तो दिया होगा आपने, पास किया, तो अब एक बार और आने वाला है, तो कैसा लगता है जब बोर्ड का एग्जाम आता है? तो
1: बिल्कुल भी डर नहीं लगता, अच्छा लगता है।
0: डर नहीं लगता?
1: नहीं।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, 11th में तो अभी इस बार जो है, मतलब ये साल तो बोर्ड नहीं है, तो थोड़ी राहत लग रही होगी आपको कि हल्का लग रहा है? पिछले साल बोर्ड दिया था, इस साल रहा थे, थोड़ा तैयारी करें और अगले साल फिर देना है। तो क्या करना चाहती हैं 12th के बाद?
1: मैं जॉब करना चाहती हूँ।
0: नहीं, जॉब तो करना चाहती है, मतलब जॉब तो करेंगी ही, लेकिन किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, किस पढ़ाई में, किस स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहती हैं?
1: टीचर बनना चाहते हैं।
0: टीचर, गुड। क्यों, आपके घर में कोई टीचर है? हेलो, आपके घर में कोई टीचर है कि आप पहली टीचर बनेंगी?
1: पहली टीचर बनेंगे, हमारे घर से कोई नहीं।
0: कोई टीचर नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं और विश करते हैं आपको कि आप भी पढ़ाई कीजिए और आपका ये जो सपना टीचर बनना आप चाहती हैं, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जिसमें आप बच्चों को सिखाते हैं, टीचर्स लोग होते हैं, तो आप भी बनना चाहती हैं। तो अच्छा, टीचर की कौन सी क्वालिटी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? नहीं, सभी टीचर्स तो अच्छे लगते हैं, क्वालिटी कौन सी अच्छी लगती है? बहुत से टीचर्स होते हैं जैसे, आप उनसे जितने भी सवाल कीजिए, जितने भी क्वेश्चन कीजिए, वो इरिटेट नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, समझाते हैं बार बार, आपको गाइड करते हैं। और कुछ टीचर्स हो सकता है शायद थोड़ा डांटते हो। तो आपको कैसे टीचर पसंद है और कैसा बनना है आपको? तो अच्छा, बच्चे अगर आपको डिस्टर्ब करें, आपको परेशान करें बार बार, तो आप गुस्सा नहीं करेंगी? सही बात है। और बच्चों में जिज्ञासा रहती है ना, तो वो बार बार, एक बार अगर पॉइंट क्लियर नहीं होता तो बार बार पूछते हैं, तो टीचर को जो है, मतलब जब आप टीचर बनेंगी जैसा आप बता रही हैं, तो आप बार बार उनका जो क्वेश्चन है, मिसकंसेप्शन है, कुछ भी है, तो उसको दूर करेंगी, है ना? हेलो, जी जी जी तो चलिए आपका गाना जो है वो हम प्ले करते हैं, और किसी को डेडिकेट करना है आपको। कौन है आपके साथ इस वक्त जो सुनेगा आपका ये गाना? अच्छा, जल्दी से।
1: हेलो सर, गुड इवनिंग।
0: हाँ गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका?
1: मोहिनी नाम है सर।
0: अच्छा, रोहिणी और मोहिनी, क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता नाम है। क्या करती हैं आप मोहिनी? आप भी पढ़ाई करती होंगी छोटी, कौन सी क्लास में आप?
1: बीए कर रही
0: हूँ। बीए? अच्छा, आप बड़ी हैं?
1: जी सर, हाँ बड़ी।
0: ओके, तो चलिए आपकी बहन तो टीचर बनना चाहती हैं, आप क्या बनना चाहती हैं? क्या बात है, अरे बाप रे, तब तो आपसे डर के बात करना पड़ेगा। तो चलिए रोहिणी और मोहिनी जी, आपकी ये, मतलब फिलहाल ये जो पसंद है ये रोहिणी की है, और क्या ये पसंद मोहिनी की भी है?
1: ये सर, दोनों लोग
0: कहीं कहीं सुनते हैं। चलिए, मुझे लगता है थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा लाइन में, ये रोहिणी की पसंद का ये ट्रैक हम बजा रहे हैं फिल्म बाजीगर से, एंजॉय कीजिए और जल्द होती है आपसे फिर बात, और फिर यहीं पर यानी कि फोन के जरिए मुलाकात। सुनते रहिए 100.7 FM। मैं हूं देव आपके साथ, 7:44 का ये वक्त हो गया। अगर जल्दी से आप फोन करना चाहते हैं, अपनी पसंद सुनना चाहते हैं, तो डायल कीजिए हमें

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हेलो,
2: सर जी नमस्ते।
1: जी जी नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
2: संतोष कुमार चौरसिया।
1: जी सर, कहाँ से?
2: गुड़गांव हरियाणा से।
1: गुड़गांव से। तो संतोष जी, सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप, आपको कैसा लग रहा है?
2: बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मेरा कॉल लगा सर।
1: पहली बार लगा है? चलिए, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा।
2: बहुत खुश हूँ सर।
1: अच्छा, प्रयास कब से कर रहे हैं?
2: कम से कम 1 साल हो गया सर।
1: क्या बात है, 1 साल से कंटिन्यूस प्रयास कर रहे हैं और देखिए आखिरकार आप सफल हो गए। तो अच्छा,
2: मेरा होम टाउन यूपी बलिया बेलथरा का रहने वाला हूँ सर।
1: अच्छा, वहाँ पर? अच्छा, कब से जॉब कर रहे हैं, कितने समय से बाहर हैं वहाँ पे आप?
2: सर 6 साल हो गया।
1: 6 साल से बाहर हैं, तो गुड़गांव में ही हैं या फिर इधर उधर भी और रहे?
2: गुड़गांव में सर, गुड़गांव में।
1: इधर उधर और भी? अच्छा, वहीं पे गुड़गांव में ही मेन?
2: गुड़गांव में जॉब करते हैं।
1: अच्छा, आते कब, आना कब होता है आपका बलिया?
2: अगर छुट्टी पे आते हैं।
1: ओके, तो इस वक्त आप अपने मतलब क्या कैसे रह रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं पीजी में, कैसे?
2: रूम लेके रहते हैं सर।
1: अच्छा, खुद ही बनाते खाते हैं?
2: नहीं सर, मेरी पत्नी है पूजा भारद्वाज।
1: ओके ओके, अच्छा मतलब फैमिली है आपकी वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आते हैं जब तो अच्छा लगता होगा आपको अपने घर पे?
2: बहुत अच्छा।
1: अच्छा, ये तो अभी 1 साल से ट्राई कर रहे हैं और वैसे हमारे साथ आपका

0: हमारा साथ कब से है, कितने सालों से?
1: सुनता
0: उसे पहले नहीं
1: हूँ,
0: सुनते थे?
1: उससे पहले सर रेडियो 2015 में सुनते थे, फिर बीच में नहीं सुन पाए, फिर उसके बाद मैं मोबाइल ऐप पे डाउनलोड करके रेडियो उसके बाद एफएम रेनबो सुनने लगा सर, लगाने
0: चलिए
1: लगा।
0: चलिए चलिए, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा हमें भी कि
1: मेरी
0: आप।
1: पत्नी को गाना डेडिकेट है और सभी सुनने वालों को सर।
0: चलिए बिल्कुल, और गाना भी बिल्कुल आपने सही चुना है, इसको सुनिए, एंजॉय कीजिए दोनों लोग आप लोग, ठीक है?
1: थैंक यू सर।
0: ओके ओके, थैंक यू सो मच।

0: भले क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, कोशिश हमारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर ले लें, और एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं, आइए जल्दी से उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते सर जी।
0: जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
1: जी मोहम्मद ताली अंसारी, राजा कटरा, बाराबंकी से। सर जी एक हफ्ते या दस दिन के बाद मेरी कॉल लगी है।
0: तो चलिए, मतलब बहुत ज्यादा तो गैप नहीं हुआ, अभी लोग तो साल भर इंतजार करने के बाद फोन लगता है उनका।
1: जी
0: है ना, तो
1: प्रिपरेशन भी चल रही थी सर जी।
0: अच्छा है,
1: हो गया तो आप सर जी
0: किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे एग्जाम की?
1: जॉब की प्रिपरेशन

0: परसों मेरा एग्जाम हुआ है, बैराज सेंटर गया था।
1: ओके, तो कैसा हुआ?
0: एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ सर जी।
1: चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा।
0: जी सर जी, दुआ करिए सर जी, वर्दी मिल जाए सर जी।
1: जी जी बिल्कुल, वर्दी मिल जाएगी। मतलब वर्दी मिल जाएगी तो मतलब रौब तो नहीं झाड़ेंगे फिर उसके बाद, गर्मी तो नहीं आएगी?
0: नहीं नहीं सर जी, नहीं।
1: चलिए चलिए, अच्छे है। हमारी मतलब हम दुआ करते हैं कि आपको जिस चीज़ के लिए आपने एग्जाम दिया है और जिस जॉब के लिए दिया वो आपको मिल जाए।
0: सर जी आप कैसे हैं सर जी?
1: हम तो बढ़िया हैं, मस्त हैं, और जब प्रोग्राम करते हैं तो और भी अच्छे हो जाते हैं। आप लोगों से, अलग अलग लोगों से बात करने का मौका मिलता है।
0: हम भी सर जी सोच रहे थे जल्दी से सब एग्जाम जब क्लियर हो सर जी, तो हम भी रेनबो सुने और कनेक्ट हो रेनबो से।
1: तो चलिए, फ्री हो के अब आप बिल्कुल सुकून से सुन रहे हैं
0: जी? आप सुकून से सुन रहे हैं
1: तो चलिए बिल्कुल, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, अगर डेडिकेट करना है तो जल्दी से कर दीजिए।
0: आसिफ भाई तेलंगाना हैदराबाद से, और सभी सुनने वालों को।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो चलिए, ये गाना जो है आपने हिमेश रेशमिया का चुना है, फिल्म अक्सर से।
0: जी अक्सर मूवी का।
1: तो चलिए, थैंक यू सो मच तालिब जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: बाय बाय।
1: और जब अगर लग जाए आपकी जॉब, मतलब आप एग्जाम क्लियर कर लें, तो तभी हमें जरूर बताइएगा।
0: जी जरूर बताएंगे सर जी।
1: चलिए ओके ओके, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर जी।
1: और दोस्तों, इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। मेरी होगी आपसे जल्द मुलाकात। सुनते रहिए 107 FM।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के मुख्यमंत्रियों और नेताओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की यात्रा राष्ट्रीय हित और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति

जहां प्रतिबद्धता से प्रेरित रही है। एनडीए सरकार के 12 वर्ष और प्रधानमंत्री के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष में एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने इस उपलब्धि को सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साझा किया है। उन्होंने कहा कि जनता ईश्वर का रूप है, जिन्होंने अपना भरोसा एनडीए सरकार को सौंपा है। जनता आज स्थिर सरकार का काम देख रही है। ये सफलता देश को हर एक व्यक्ति को प्रेरित करती है। एक दिन हर किसी के सपने पूरे होंगे। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्हें शुभकामनाएं दी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के शिक्षा क्षेत्र में सबसे क्रांतिकारी सुधारों और मोदी सरकार के 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। नई दिल्ली में आयोजित साप्ताहिक शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इस नीति ने विद्यार्थियों को निर्धारित शैक्षिक योग्यता और आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन यानी ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू की आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग ने कल और 12 जून के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बिजली कड़कने, आंधी के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए 1183 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षार्थियों को सघन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल ने 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। वाराणसी में भूटान सरकार को बौद्ध मंदिर एवं गेस्ट हाउस निर्माण के लिए 2 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात की उपस्थिति में पर्यटन विभाग और रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लीज समझौता 30 वर्षों के लिए किया गया है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि बौद्ध मंदिर एवं गेस्ट हाउस का निर्माण हो जाने से बौद्ध श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर
0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
3: इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन रहेगा संग संग.
4: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
0: जब जाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
4: धड़कन लखनऊ की।
5: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर।
6: पुरानी जींस और गिटार।
5: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये

0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
1: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
4: शाम होने को है।
3: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। चुपके से कोई कहता है शायर नहीं हूं मैं, क्यों असल में हूं वो बजाहिर नहीं हूं मैं। भटका हुआ सा फिरता है दिल किस ख्याल में, क्या ज्यादा ए वफा का मुसाफिर नहीं हूं मैं। आबशार में आज मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो के साथ। कबूल कीजिए जमशेद का प्यार भरा सलाम।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज है। सुनते रहिए आप शार 100.7 FM रेनबो पर।

कल चौदह की रात थी, शब भर रहा, चर्चा दे रहा, सारी दुनिया से अकेले जूझ लेता हूं कभी, और कभी अपने ही साये से डर जाता हूं मैं। जिंदगी जब मुझसे मजबूती की रखती है उम्मीद, फैसले की उस घड़ी में क्यों बिखर जाता हूं मैं। जिंदगी ना जाने कब किस मोड़ पर क्या फैसला लेगी, इसका एहसास हम कभी नहीं कर पाते, बस उस ओर चलते चले जाते हैं जिस तरफ जिंदगी हमें ले जाती है। और यकीन जानिए, उस वक्त जिंदगी के हर फैसले पर यकीन करना पड़ता है, और क्यों ना हो यकीन, क्योंकि जिंदगी हमारी है, हमारे साथ वही चलते हैं जो शायद हमें समझ पाते हैं, वरना जिंदगी जिंदगी क्या है ये तो आप भी समझ सकते हैं। कुछ हाथ कुछ साथ जिंदगी में हमेशा बरकरार रहते हैं, और कुछ चंद राहों में चंद लम्हों में साथ चलते हैं। जमशेद हूं आपके साथ, आबशार में 100.7 FM रेनबो के साथ।

बसाना मुश्किल है, अपनों से जताना मुश्किल है, गैरों से छिपाना मुश्किल है। जो रूठ गए वो अपने क्या, जो टूट गए वो सपने क्या। इन रूठे टूटे सपनों का हंस के मिल जाना मुश्किल है। मैंने कहा ना, वो खाली जगह भर जाना बड़ा मुश्किल है। कुछ ना कुछ तो कमी हो जाती है किसी की जिंदगी में ना होने से। और क्या कमी होगी सोचिएगा।

तू जो नहीं है कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवा है हंसी है। कुछ खाली जगह होती हैं, शायद जिंदगी में कभी भर नहीं पाती है, लाख कोशिश कर ली जाए। ख्वाबों की सुहानी दुनिया को आंखों में

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आप शार 100.7 FM रेनबो पर।

कभी यूं भी तो हो ख्वाबों की सुहानी दुनिया को आंखों में बसाना मुश्किल है। कभी यूं भी तो हो, और शायद जिंदगी का यही फलसफा है कि चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन शायद हर चीज जिंदगी में कभी मयस्सर नहीं होती। कभी कुछ मिलता है तो कभी कुछ खो जाता है, फिर वहां पर अपनी मर्जी कहां चलती है भला। कैसे भी हो, कुछ भी हो, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं।

0: और चलते चलते
1: हसरत जयपुर की गजल के चंद अशआर आपकी नजर कर रहा हूं कि प्यार सच्चा हो तो राहें भी निकल आती हैं, बिजलियां अर्श से खुद रास्ता दिखलाती हैं। तू भी बिजली की तरह गम के अंधेरों से निकल चल, अपने मिलने पे जहां कोई भी उंगली ना उठे, अपनी चाहत पे जहां कोई दुश्मन ना हंसे, छेड़ दे प्यार से साज तू ए मोहब्बत चल, छेड़ दे प्यार से तू साज ए मोहब्बत गजल चल। इसी के साथ मुझे यानी जमशेद को दी इजाजत, प्रोग्राम आबशार से होती है मुलाकात समाचार संध्या के बाद आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम पॉप टाइम के साथ। आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि NDA राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, NDA सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और NDA शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया

0: जनता भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर
0: Only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: Entertainment और information रहेगा संग संग.
3: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए.
0: जब छाएगा 100.7 FM Rainbow का सतरंगी रंग.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: Stay tuned. 100.7 FM Rainbow.
4: धड़कन लखनऊ की।
5: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर। शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर। फिर रात को फुर्सत के वो पल।
6: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
5: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
8: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे ये ही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।
9: ये

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
3: चौदहवीं का चांद हो।
4: बिल्कुल रात 10 बजे मैं रहूंगा आपके साथ प्रोग्राम रजनीगंधा में भी, लेकिन फिलहाल वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम पॉप टाइम का, और उसके लिए मैं कहूंगा ये बस ऐसा ही धमाकेदार आगाज होगा आज। नमस्कार, 4 मिनट साथ में कुछ सेकंड्स और वादे के मुताबिक मैं यानी जमशेद जुड़ चुका हूं एक बार फिर आपके साथ प्रोग्राम पॉप टाइम।

तो ये हो चुका है आगाज पॉप टाइम का, और उसके बाद एक के बाद एक खूबसूरत से गीत पहुंचेंगे आपके पास, जैसे कि ये दूसरा गीत। और इस पर भी यही कोशिश रहेगी कि आपके पैरों के थिरकन रहे बरकरार, क्योंकि आज मैं हूं जमशेद आपके साथ।

और अब इस गीत के बाद पायल का जो जलवा है वो रहेगा बरकरार, यानी यो यो हनी सिंह की आवाज के साथ पायल भी कुछ कहना चाह रही है।

0: और बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें, और सारी रात इसी तरह से डांस का मौका दस्तूर तो होगा ही। लेकिन हाँ, इस बीच में एक घंटे के बाद यानी रात 10 बजे से मैं रहूंगा रजनीगंधा में। लेकिन हाँ, ये जो डांस का मूड है वो इसी तरह से रहेगा बरकरार प्रोग्राम पॉप टाइम में।
1: Dance, dance,

और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती जाएगी। 9:17 साथ में कुछ सेकंड्स और करण औजला की आवाज में कुछ ये भी है।

और कोई भी हो भाई, उसको तारीफ तो अच्छी लगती है, और अगर हुस्न की तारीफ हो तो दिल जो है कुछ ऐसा करता है जैसा इस गीत में है, तो दिल डिंग डोंग तोलता है और डिंग डोंग बोलता है।

लेकिन शरारत कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी का कोई हो नुकसान। फिलहाल ये गीत आप तक पहुंच रहा है जसवीर जस्सी की आवाज में, और उसके बाद कुछ मेल मैं शामिल करने वाला हूँ। आपके ढेर सारे मेल आ गए हैं और शुरुआत करता हूँ रजनीश पासवान जी के मेल से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आपने हमें मेल किया है सीतापुर से, सही ना? और आप प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, लव फ्रॉम डांसिंग ग्रुप रजनीश। और इस तरह से अगला मेल आता है रणवीर गुप्ता जी का। नमस्कार, और संगम विहार ओखला दिल्ली से आपने किया है मेल। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, ये है रेगुलर लिसनर। और गाने बड़े बेहतरीन लग रहे हैं इनको, प्रस्तुति भी अच्छी लग रही है, और साथ साथ वकील अहमद साहब का भी मेल आ चुका है और कह रहे हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और टॉप ऑफ टाइम बहुत अच्छा लगता है और गर्मी बहुत तेज़ हो रही है और हवा चलने से मौसम अच्छा हो गया है। और भाई आप एंजॉय कर रहे हैं, ढेर सारे गीत जो आप तक पहुंच रहे हैं। जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरूही नामदेव, सौम्या नामदेव, ग्राम अपोस घनौली, घनौधी जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आप मेल कर रहे हैं। जबरदस्त कार्यक्रम, बेमिसाल लाजवाब, आपने लिख के मेरा दिल खुश किया। और इंद्रपाल जी का भी मेल आ चुका है मोहली सीतापुर से। कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और गाने बहुत ही पसंद आ रहे हैं। सभी ग्रामीण एक साथ मिलकर सुनते हैं आपको और बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुलफशा सिद्दीकी जी, आपका भी मेल आ चुका है हमारे पास और आपने हमें किया है संडीला से मेल और पूरी तरह से प्रोग्राम को कर रहे हैं जो है, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया कहूँगा। तालिब अंसारी जी का भी मेल आ चुका है राजा कटा बाराबंकी से। फाइनली आई एम कम बैक बिकॉज रीजन इज एग्जाम प्रिपरेशन। चले, लेकिन आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं, गीत एंजॉय कर रहे हैं। इंद्रपाल जी कैसे हैं? इंद्रपाल यादव जी ललहुआ लखीमपुर खीरी से मेल कर रहे हैं। पॉप टाइम

जमशेद भाई के साथ इन्होंने लिख दिया है और लिखते हैं, सुलगती धूप हो या सर्द रातों का समा, रेडियो ऑन होते ही बदल जाता है जहां, वो फरमाइशें, वो गाने, वो हवाओं का सफर, एक छोटे से डिब्बे में सिमटा है सारा आसमान। और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आबशार की गजलें भी आपको बहुत अच्छी लगी। और साथ साथ मोहम्मद आसिफ का भी मेल आ चुका है हमारे पास, हैदराबाद तेलंगाना से आप प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं आसिफ अंसारी साहब, और सारे गाने आपको पसंद आ रहे हैं। शनूर अंसारी का भी मेल आ चुका है हमारे पास मटकली ज़िला बरेली से, और साथ साथ मेल आ चुका है रामराज का, रामराज जी ने भी हमें कर दिया है मेल, रायबरेली पहाड़ीपुर से, और सारे लोग सुन रहे हैं, नाम पढ़ देता हूँ, रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधुबनी, मधु, बजरंगी काका, और हमको आपने आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है, बस यही आशीर्वाद चाहिए, यही चीज़ें हैं जो आपको हमारे करीब और हमें आपके करीब ले आते हैं। और इस गाने को आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, दिल ले गई कुड़ी गुजरात की।

और इस गीत के बाद दलेर मेहंदी का ये गीत लगाएगा खूबसूरत सा तड़का। 9:38 साथ में कुछ सेकंड्स से प्रोग्राम पॉप टाइम में आज मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ।

और अभी ढेर सारे मेल बाकी रह गए थे। ज्ञान प्रकाश आर्या जी का मेल आ चुका है हमारे पास बनारस से। वैसे गर्मी तो बहुत पड़ रही है, लेकिन उस पर आपका गाना चार चांद लगा रहा है। आगे भी अच्छे अच्छे गाने सुनाते रहिए, प्रोग्राम हिट है। ये है ज्ञान प्रकाश आर्या जी का कहना। साथ साथ जावेद अख्तर का भी मेल आ चुका है, आपने हमें भेजा है आजमगढ़ से मेल, और प्रोग्राम को कर रहे हैं एंजॉय। अनुज जी का भी मेल आ चुका है, गुड इवनिंग, मैं बहुत अच्छा हूँ, प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है और सारे गाने आपको बेहतरीन लग रहे हैं, आपने हमें लखीमपुर खीरी से किया है मेल। शैलेश कुमार जी का भी मेल आ चुका है हमारे पास, टाइगर शर्मा रूपपुर चंदेला से, रोशनी बबीता सारा पीहू स्नेहा सोनी दुलाब दीदी जी को मेरा नमस्कार बोल दिया, बोल दिया मैंने। और ये अगला मेल किसका है, ये है रजनीश जी का, बिल्कुल रजनीगंधा में मैं आ रहा हूँ, इंतज़ार कीजिए। और एक और मेल मेरे पास आ चुका है, यह है एमके राज लखीमपुर खीरी से, रेनबो पॉप रेडियो पर आ रहा है, यानी पॉप टाइम रेनबो सुन रहे हैं हम और पूरी तरह से कर रहे हैं एंजॉय। सारे गाने एक से बढ़कर एक, संगीत मस्ती गपशप और लखनऊ की धड़कन, सब एक जगह, रेडियो ऑन करो, वॉल्यूम बढ़ाओ और झूमो।

और कोशिश यही रही कि कहीं पर भी आपके पैरों के थिरकन टूटने ना पाए। क्यों ऐसा हुआ ना, और ये अगला गीत भी कुछ ऐसे ही करने वाला है जी, मेरे महबूब मेरे सनम, यानी पुराना गाना नए क्लेवर में आपके लिए आपके रेडियो सेट पर मेरे यानी जमशेद के साथ प्रोग्राम पॉप टाइम में।

और भाई जिंदगी है तो दिल भी कोई लेके जरूर जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ से जाऊंगा और ये कहूंगा कि होती है मुलाकात कुछ देर के बाद आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रजनीगंधा के साथ। और ये भी कहूंगा कि अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो गई तो सॉरी बोलता हूँ। और अगला गीत भी कह रहा है सॉरी बोल। फिलहाल मैं कहूंगा कि आप रहिए हमारे साथ, यानी 100.7 FM रेनबो के साथ, जमशेद के साथ।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने में प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस ने कहा है कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि बधाई देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड बनाने पर अयोध्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक खुशियां मनाई। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना और वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन कर देश की निरंतर प्रगति की कामना की गई। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, आजमगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर

बब्लर और दुधुआ टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र मानसून सीजन के कारण 15 जून के स्थान पर 30 जून को बंद होगा। माना जा रहा है कि इस बार बरसात न होने के कारण पर्यटन सीजन को 15 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा में बिग क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के खिलाड़ी खेलने के लिए पहुंचे। इसके साथ युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। आज पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह लीग में खेलने के लिए पहुंचे। इस दौरान युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए हरभजन सिंह ने बिग क्रिकेट लीग खेलने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का.
0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन रहेगा संग संग.
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
4: धड़कन लखनऊ की।
5: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर।
6: पुरानी जींस और गिटार।
5: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर। फिर रात को फुर्सत के वो पल।
7: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा।
5: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
8: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
9: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे ये ही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

जो बात इस जगह पर है कहीं पर नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हम आपके साथ, और ये 18 घंटों का जो सिलसिला है वो लगातार कायम रहता है, यानी सुबह से लेकर रात 12 बजे तक। तो बस इस वादे को पूरा करते हुए मैं एक बार फिर यानी जमशेद जुड़ा हूं आपके साथ प्रोग्राम रजनीगंधा में, और मैं ये कहूंगा कि इतनी मुद्दत बाद मिले हो, कुछ तो दिल का हाल कहो। कैसे बीते हम बिन प्यारे इतने माहो साल कहो। हालांकि बहुत छोटा सा वक्फा होता है, बहुत छोटा सा वक्त होता है जब हमारी और आपकी मुलाकात नहीं होती, लेकिन ना जाने क्यों ये जो छोटा सा वक्त है ये बहुत बड़ा लगने लगता है कभी कभी। और ये आम जिंदगी में अगर हम बात करें तो शायद कोई खास शख्स काफी देर तक अगर आपके सामने नहीं होता तो वो लम्हा काफी लंबा लगने लगता है। ऐसा होता है ना, क्योंकि उसने अपने दिल को आपको सौंप दिया होता है। उसकी एक एक बात आपके दिल और दिमाग पर छा चुकी होती है, और उसके बिना जिंदगी शायद बेहतर नहीं लगती। ये अल्फाज सही होगा ना? चलिए, जब एक बार दिल लग गया है, जब एक बार नजरों ने उन्हें अपना मान ही लिया है, तो फिर शिकवे और शिकायत की गुंजाइश शायद जिंदगी में नहीं रह जाती है। 10:13, 7:01, रजनीगंधा आज मेरे यानी जमशेद के साथ 100.7 FM रेनबो के साथ।

दर्द दिल दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। और ये जो दिल का दर्द या मोहब्बत का दर्द होता है, ये बहुत अलग होता है। कभी तो लोग कहते हैं कि प्यार का दर्द मीठा होता है, बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोगों को ये दर्द बेहतर नहीं लगता। लेकिन मैं तो कहूंगा कि जो अल्फाज रूह को छूते, उन अल्फाजों से की है मोहब्बतें। तो जो पास नहीं हो मेरे, तेरे ख्यालों से की है मोहब्बतें। जब भी तुमने मुझे याद किया, उन प्यारे लम्हों से की है मोहब्बतें। तो ख्वाब है या धड़कती सांस, धड़की जो जोरों से, उनसे की है मोहब्बतें। और ये लाइनें इसकी बानगी हैं कि शायद मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती, हमेशा नहीं होती। और जो मोहब्बत का लम्हा अपने दिल में उस वक्त उतार लेते हैं, शायद उन्हें ही मिलती है मोहब्बत। इसीलिए कहा है कि अगर मोहब्बत वक्त के साथ मिल रही है, तो हर उस लम्हे को समेट लेना चाहिए।

और न बाद में। फिर कहते हैं कि मैं अगर ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, या वैसा करता तो वैसा हो जाता, यानी वक्त निकल चुका होता है, इसीलिए हर उस लम्हे को संजो लेना चाहिए, सजा लेना चाहिए जिंदगी में।

मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, और इसीलिए कहा कि अगर वो मोहब्बत मिल रही है तो उसको दिल में उतार लेना चाहिए। हैरत इश्क मेरी हुस्न का आईना है, देखने वाले कहां से कहां तक पहुंचे। खुल गया आज निगाहें हैं, निगाहें अपनी जलवे ही जलवे नजर आए जहां तक पहुंचे।

कहती हो। अगर तुमसे ना मिलता तो शायद ये राज राज ही रह जाता। क्या आखिर मोहब्बत कैसी होती है, मोहब्बत किसको कहते हैं।

0: दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। एक हल्का सा आस था कभी आंखों में, जो ख्वाब की मानिंद था। ऐसा लगता था कि कभी वो ख्वाब पूरा नहीं होगा, लेकिन वो ख्वाब पूरा हुआ। और मैं कहूंगा कि जो रहते हैं दिलों में वो जुदा नहीं होते, जो रहते हैं दिलों में वो जुदा नहीं होते। कुछ ऐसे भी एहसास होते हैं जो लफ्जों से बयां नहीं होते।
1: हाँ, बहुत तुम या

तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। कभी सुर्ख कभी स्याह है एक कतरा तेरी मोहब्बत का, कभी जरा सा कभी बेपनाह है एक कतरा तेरी मोहब्बत का।

अब हमें चमन से क्या लेना, अब हमें गगन से क्या लेना। ऐसा ही होता है जब एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसके लिए लोग ना जाने क्या क्या कर जाते हैं। मोहब्बत के लिए इंसान वो सब भी कर जाता है जिसकी कभी उसने कल्पना नहीं की होती है। कई बार पता लग जाता है कि जिसे वो पाने की चाह कर रहा है उसे पा नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो किसी चीज की परवाह नहीं करता। इसको ही तो मोहब्बत कहते हैं।

ऐसे रिश्ते का भरम रखना कोई खेल नहीं, ऐसे रिश्ते का भरम रखना कोई खेल नहीं, तेरा होना भी नहीं तेरा कहलाना भी है। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं और मोहब्बत की कहानी भी ऐसी होती है। कहां कैसे कब शुरू होती है बिल्कुल पता नहीं चलता, और कहां कब और कैसे खत्म होती है इसका भी पता किसी को नहीं चलता। 10:54 साथ में कुछ सेकंड्स, अभी और ढेर सारी बातें करनी है आपके साथ, और उसके लिए बस छोटा सा करना होगा इंतजार, यानी एक छोटा सा न्यूज ब्रेक, और उसके बाद फिर मेरी यानी जमशेद की होती है मुलाकात। प्रोग्राम रजनीगंधा के आगे के सफर में आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ, जमशेद के साथ।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी, नागरिक, पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को प्रदेश के 75 जनपदों के 1183 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुव्यवस्थित वातावरण में सफलतापूर्वक सम्पन्न कराई गई। परीक्षा के दौरान अत्याधुनिक तकनीकी निगरानी, EKYC सत्यापन, बायोमेट्रिक मिलान और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए भर्ती बोर्ड ने नकल, प्रतिरूप और अफवाह फैलाने के प्रयासों पर प्रभावी अंकुश लगाया। भर्ती बोर्ड के अनुसार 3 दिवसीय परीक्षा में कुल 21,92,236 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जो कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों का 75.94% है। भारत और भूटान के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंधों को ऊंचाई देने की दिशा में प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के तहत वाराणसी में बौद्ध मंदिर और गेस्ट हाउस निर्माण के लिए भूटान सरकार को 2 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। यह पहल बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ दोनों देशों के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुदृढ़ करेगी। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत आज से हुई। सुपर एल नीनो वर्ष 2026 में धान की सीधी बुआई एवं वैकल्पिक फसलें विषयक कार्यशाला में सुपर एल नीनो, जलवायु परिवर्तन तथा जल संकट को लेकर कृषि क्षेत्र के समक्ष उभरती चुनौतियों का समाधान, वैज्ञानिक तकनीकों, प्रत्यक्ष बुआई धान और वैकल्पिक फसल प्रणालियों पर मंथन हुआ। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने धान की सीधी बुआई तकनीक को भविष्य की आवश्यकता बताया। बिजनौर की सभी ग्राम पंचायतों में मेरा गांव सिंगल यूज पॉलिथीन मुक्त अभियान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को प्रभावी ढंग

लागू करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान आगामी 15 जून तक जारी रहेगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: Entertainment और information रहेगा संग संग.
3: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए.
0: जब छाएगा 100.7 FM Rainbow का सतरंगी रंग.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
4: धड़कन लखनऊ की।
5: सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
6: Love you जिंदगी। Love you जिंदगी।
5: सुकून से भरा दोपहर।
7: पुरानी जींस और गिटार।
5: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर।
8: ठहरते आश की जगह।
5: फिर रात को फुर्सत के वो पल।
9: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा।
5: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
10: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
11: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे ये ही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का, बांध लूं तुम्हें ये तमन्ना नहीं मगर, बांध लूं तुम्हें ये तमन्ना नहीं मगर, बन जाऊं तुमसे ये आरजू जरूर है। 11:11 7 में कुछ सेकेंड्स। वादे के मुताबिक प्रोग्राम रजनीगंधा में एक बार फिर मैं यानी जमशेद जुड़ चुका हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो के साथ।

तेरे साथ होने पर ही महसूस होती है जिंदगी, तेरे साथ होने पर ही महसूस होती है जिंदगी, न तेरे आने से पहले न तेरे जाने के बाद।

तेरे इश्क का हिसाब कर दूं मैं, आ तेरे इश्क का हिसाब कर दूं मैं, दूं इतनी मोहब्बत तुम्हें बेहिसाब कर दूं मैं।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तरारे हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: प्यार है,
1: अरे बाबा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है?
2: यानी कहीं ना कहीं इनकार में भी इकरार छुपा होता है और मोहब्बत का एक अंदाज ये भी होता है। मसला ये नहीं कि जीना हमें आया नहीं, बस एक तुझ पर मर मिटना मुकम्मल लगा मुझे।

से प्यार कर लूंगा, नजरें उतार कर लूंगा, कभी आंखें भी पढ़ो हमारी, मुझसे ज्यादा खुद को ही पाओगे। हसरत यही है दिल की हर एक लम्हे में, बस बस तुम मेरे रूबरू रहो।

उठने पर भी जो ना रूठे वो बात हो तुम, छूटने पर भी ना छूटे वो साथ हो तुम। यूं तो संजोई है यादें मैंने दिलों में कही, लेकिन लेकिन जो भोले से भी ना बुलाई जा सके वो याद हो तुम। और यादों के दरीचे में जो नाम एक बार शामिल हो जाता है वो शायद कभी जिंदगी में भुलाए नहीं भूलता। 11:40 7:01 प्रोग्राम रजनीगंधा में आज मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो के साथ। सुन, सुन।

0: तेरे बारे में क्या लिखूं, तुझे सोचूं तो ख्वाब बन जाते हो, तुझे देखूं तुझे छू लूं तो ख्वाहिश बन जाते हो, तुझे मांगूं तो मन्नत, तुझसे बात करूं तो आदत बन जाते हो, तुझे पालूं तो जन्नत, और तेरे बारे में लिखूं तुझे जी लूं तो जिंदगी बन जाते हो। क्या लिखूं?
1: जैसे

कभी मौका मिला तो। 11:53 साथ में है कुछ सेकंड्स, और घड़ी ये इशारा कर रही है कि जमशेद आज प्रोग्राम रजनीगंधा का सफर बस यहीं तक। और चलते चलते मैं ये कहूंगा, ये जो रिश्ते होते ना, ये हमारे जीवन की, हमारी जिंदगी की वो फसलें हैं जिन्हें जिस तरीके से सींचा जाता है वो उसी तरह की पैदावार देती हैं। ये जरूर है कि उनमें गम और खुशी के मौसमों की मार भी पड़ती रहती है, लेकिन ये जरूरी है कि इसके बावजूद उसकी हिफाजत की जाए। इन्हीं रिश्तों पर निदा फाजली ने भी क्या खूब लिखा है, दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, और अगर रिश्ता मोहब्बत का हो तो हमेशा कोशिश यही रहनी चाहिए कि वो रिश्ता हमेशा हमेशा मजबूती के साथ जुड़ा रहे, कामयाबी के साथ खड़ा रहे, गलती से भी कोई ऐसी बात ना निकले कि मोहब्बत का वो रिश्ता टूट जाए। इस बात का खासा ख्याल रखना चाहिए दोनों को। तो बस अब मैं आपसे लूंगा इजाजत इस वायदे के साथ कि फिर किस रोज किसी प्रोग्राम में मुलाकात जरूर होगी आपसे। तब तक खुदा हाफिज, शब खैर। और हां, चलते चलते एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। खुदा हाफिज़।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित 12 वर्षों के सफलतम कार्यकाल के पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्र लिखकर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें अनंत शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री को प्रेषित पत्र में मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया है कि उनके यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आस्था और अर्थव्यवस्था का अद्भुत संगम बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री के प्रेरक नेतृत्व एवं सतत मार्गदर्शन में विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा और राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वोत्तम योगदान देता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन यानी ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू की आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और ठोस दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बहराइच जिले के जरवल क्षेत्र में दो कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में दो व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थानाध्यक्ष जरवल ने बताया कि मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में एक तेज रफ्तार कार दूसरी कार से टकरा गई। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और इसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 2 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा और यह सामान्य से लगभग 2 डिग्री अधिक था। सूर्योदय 5:12 पर, सूर्यास्त 7 होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन प्रातः 7 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा समाप्त होती है। प्रातः 5:55

सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बहराइच जिले के जरवलक क्षेत्र में दो कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में दो व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि छह लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थानाध्यक्ष जरवल ने बताया कि मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में एक तेज रफ्तार कार दूसरी कार से टकरा गई। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और इसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 2 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा और यह सामान्य से लगभग 2 डिग्री अधिक था। सूर्योदय 5:12 पर, सूर्यास्त 7 बजे होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन प्रातः 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा समाप्त होती है। प्रातः 5:55